您正在听广播电台，听众朋友们，我们现在报告拉宾德拉创造的拉宾德拉歌曲，请收听。

0: लेना बेहद जरूरी है। राजा राम मोहन राय ने विदेशी उत्पादों के उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का समर्थन किया था, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल सके। उनके विचारों ने सिर्फ भारतीय समाज को जागरूक ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस से अयोध्या कांड का भाग 5।

श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकने के बाद राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से इस अवसर की शिक्षा विशेष देने के लिए श्री राम के महल में जाने का अनुरोध किया। मुनिवर को अपने महल में आया देखकर श्री राम ने विनीत भाव से उनके चरण छुए और कहा, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल कार्य है, तथापि उचित तो ये था कि गुरुदेव ने दास को ही अपने पास बुला लिया होता। श्री राम के गुण, शील तथा स्वभाव से पुलकित होकर मुनिराज ने उन्हें शुभ संवाद सुनाया कि अवध नरेश ने उनके राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुलगुरु ने उन्हें इस अवसर विशेष के विधि विधान तथा नियम संयम बताए, लेकिन श्री राम के मन में खेद इस बात का हुआ कि सभी भाई एक साथ जन्मे, खाया खेला, सबके यज्ञोपवीत, विवाह आदि एक साथ संपन्न हुए, किंतु अब अन्य भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक ज्येष्ठ पुत्र यानी केवल उनका हो रहा है। इधर सभी अयोध्यावासी अपने ननिहाल से भरत के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि अग्रज के राज्याभिषेक के उत्सव में वो भी भाग ले सकें। उधर कुचक्री देवता इस शुभ कार्य में विघ्न डालने की योजनाएं बना रहे हैं। सरस्वती से देवताओं ने विनती की कि वे कुछ ऐसा करें जिससे श्री राम राज त्याग कर वन को चले जाएं।

0: रामचरितमानस का अयोध्या कांड का भाग 5 अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:55 होने को है। थोड़ी देर में सुनिए संस्कृत में समाचार, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में।
1: इयम् आकाशवाणी।

अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्यान्तर्जालीय माध्यमेन विकसित भारत संकल्पा

किन्नौर, हिमाचल प्रदेश, सतेला संपा तरहेंती सलामा सकितार एनाम ताहुन मंतेरी पर्दा पातान हिमाचल प्रदेश जगत सिंह नेगी हरी इनी मरस्मिकान छुपान ट्रेड मार दी नम गया सबुआ पंचायत परबाता संदी विलाया एडमिनिस्ट्रेटिव पुह डिस्ट्रिक्ट किन्नौर दान मलेपास कबरांगातान तुजु बिलास पारागांग उन्तुक ममुलाई कग्यातान परदागागान निंतास बातास अक्टिवितास परदागागान इनी संपाद दी तांगुह कान सजाग ताहुन दुआ पुलु अकिबात वाहाब वाबा पांदेवी कोविड संबिलान बेलास प्रतिमुन दौरात यूई इमिग्रासी यूनी यूरोपा अकान मंगादा कान पंबिचारा आन दौरात पाडा हरी सलासा उन्तुक मंबाहास क्राइसिस मिग्रासी दी चेउता मन्यूसुल परसेली सीहान अंतारा स्पानियोल दान बबरापा नगारा अंगोता लाइनिया दुआपुलु दुआ नगारा उई मनियेरु कान रिस्पोन तर को ओरदेनासी दान पंगावासान पर बातासान लुआर यांगले भी केतात सतेला सकितार इनम सकितार नाम पुलु रिबु माइग्रान मामासु की विलाया कांतोंग स्पानियोल तरसबुत दारी मरोको स्पानियोल मंग्रितिक अपायंग दी सबुतनिया सबगाई रेस्पों यंग मम्मेचा बेला दारी बबरापा पमेरिंता एरोपा सतेला इतालिया मंगु मनांगु कान आतुरान सेंचेन यूई दांगोल स्पानियोल सबुआ लंका यंग दीदुकुंग ओले फिनलैंडिया दान डेनमार्क पारा पजाबात मनियाता कान बाबा हम्पिर समुआ माइग्रान यंग ममासुकी चेउता पारा तिगा पुलु जूली तेला कंबाली समंतारा सत्ती दाकनिया एनम पुलु तुजु ओरांग मनिंगाल दुनिया सलामा लोंजा कान आरुस पनियमेरांगान तरसबूत नगारा नगारा उई मंपर इंकात कान बाहवा मिग्रासी यंग तिडा तरकंडाली दपात मंगी किस कपरचायान तरहडाप कबीजाकान मिग्रासी बरसामा ब्लॉक तरसबूत प्रधानमंत्री स्पानियोल पेद्रो सांचेस मनियाता कान बाबा पमरिंता अन्य तेला ममूली कान कंडाली अतास परबाता सांदान मंचेगा परगेरा कान तांपा इजिन मनुजु दारातान इरोपा कुंजुंगान मनलू उज्बेकिस्तान का इंडिया मंत्री लुआर नगेरी उज्बेकिस्तान साइदो बख्तियोर ओदिलो अकान मलाकुकान कुंजुंगान रश्मि का इंडिया मुलाई हारी इनी हिंगा तंगाल लिमा बुलान इनी मनरुत कमंत्रियान लुआर नगेरी इंडिया सलामा कुंजुंगान या ओदियोलोविच दी जादवाल कान उन्तुक बर्तेमु दंगान प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू दी राष्ट्रपति भवन सरता बर्तेमु दंगान मंत्री नुवार नगेरी डॉक्टर एस जयशंकर दी अजुगा दी जादवाल कान मंगा हैदरी सबुआ फोरम बिजनेस दी दली दीपेरू सबुआ पेशावत विसाता कचिल जातु दी दिक्कत कोटा नाचका दान मनेवास कान सलरु तिगा बिलास ओरांग दी दलामनिया मनरुत कतरांगान पिहाक बरवेनांग बसावत यांग मम्बावा सबेलास पनुमपांग दान दुआ पेलत तरसबूत सेडांग तरवांग दी अतास नाचका अलायंस सात मंगलामी कचेला कान पाडा हरी साप्तु पनियबाप करचेला कान सरता इदिनतितास पारा पनुमपांग बुलुम दिकाताहु सचारा पास्ती पनिय दिली कान आतास इंसिडेंट इनी सरांग बर्नांगसुंग पसावत तरसबूत दी ओपरासी कान ओले पर उसाहान पेरू एरोड पेशावत तरसबूत लपास तांदास दारी बंदारा पिस को ओतोरितास सत्यमपात मलापोर कान बाहवा पेशावत इतु क हिलांगान कोंताक दंगान मनारा पंगावास बबरापा मेनित सतेला लिपास लांडास लोकासी कचेला कान बर अदा सकितार एनम किलोमीटर दारी कोता नास्का दान दुआ बिलास किलोमीटर दारी सीतुस नास्का लाइन्स मरूपा कान ऑब्जेक्ट विसाता पॉपुलर सकालिगुस सीतुस वारिसान दुनिया यूनेस्को दी पेरू सलातान यंग तर कनाल दंगान गंबार कुनो यंग तर तरुकीर दी पासिर गुरुन जुमला कुरबान जीवा अकीबात लोंजाकान बेसार माइग्रान दी विलाया कांतोंग स्पानियोल दी अफ्रीका उतारा चेउता मनिंकात मंजा दी एनम
Puluh tujuh orang pada hari Sabtu menyusul insiden tenggelam dan aksi saling berdesakan di perbatasan. Hal ini

टी पेंटिंग निया मनीलाई ट्राजेक्टोरी रिफॉर्मासी इंडिया दलम कॉन्टेक्स्ट दाया सियांग ग्लोबल दान प्रदागन इंटरनेशनल कमिश्नी और पमिलीहान नेगारा बागियान दारी विलाया पर सातुवान लद्दाख दान मानतान स्क्रातरिस पमेरिंता इंडिया श्री सुधांशु पांडे मनियम पाइकान पिदातो उतामा हाल इनी दिकुती ओले प्रजेंतासी तमुआन तमुआन उतामा लापोरन तरसबुत ओले कतुआ दान प्रेसिडेंट कॉम्पिटिटे फाउंडेशन फॉर ट्रेड एंड कॉम्पिटिशन पॉलिसी बापा शंकर सिंघम लापोरन तरसबुत जुगा मणिकानकान पेंटिंग निया ममपर ताहनकान पंडेकातान बरवासिस बुक्ति दान बर ओरियंतासी पाडा दंपक तरहडाप कबीजाकान परसाइंगान मनिंजो पंबातासान इन्वेस्टासी सेक्टोराल तरतेंतु बरदासारकान हासिल कस जतराहान कंजुमेन दान मंपर कुआत कर्जा सामा देंगान मित्रा मित्रा दागांग यांग बर पिकिरान सरूपा उन्तुक मंगातासी हमबातान रेगुलासी दीपासार पसार इंटरनेशनल सबुआ डिस्कुसी पैनल मंपर तमुकान पारा आहली दारी कम्युनिटास हुकुम इंडस्ट्री अकादमिक दान कबीजा कान उन्तुक बर मुसियावारा मंगेनाई पंगलामान रिफॉर्मासी इंडिया कबीजा कान पर साइंगान इक्लिम इन्वेस्टासी डिस्टोरेसी पसार दान तंतांगान यंग मुंचुल दलाम पर्दागान इंटरनेशनल अचारा दी तुतुप देंगान से सी तानिया जवाब यंग इंटर एक्टिव अचारा तर सबूत मम पर तमुकान परवाकिलान दारी कम्युनिटास हुकुम अकेडमिक इंडस्ट्री दान कबीजा कान उन्तुक मंदिस कुसी कान लेंका लेंका कबीजा कान देंगान मंपर कुआ दाया साइंग प्रोडक्टिविटास दान इंट्रेगासी इंडिया देंगान पर इकोनोमियान ग्लोबल सकियान Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya ikutilah lagu rakyat Punjabi dari daerah Punjab.

हड़ा पंडा तेला मनिकमाती लागू लागू ताड़ी दंगान दिमिकियान सलासाइला अचारा कामी उन्तुक पागी हारी इनी अचारा कामी उन्तुक बेसोक अडाला सबागाय बड़ी कुछ सतेला वार्ता बड़ी ता लागू इंस्ट्रूमेंटाल या कमेंटार लागू राख्या स्पोटलाइट दान सप्रति यंग व्यासा कामी मंगाखिरी अचारा दंगान सारी अचारा ऐसो खारिन्या सोडारा सरारा पंडंगार सबलुम कामी मंगुरकर दीरीदारी उडारा कामी उचापकान तेरमा कासी बानियाक दान संपय बजुम्पा कंबाली बेसोक पाडा वक्तु दान गेलोम बांग यंग sama. Anda dapat mengirimkan salam ke sandan saran saran kepada kami melalui email ID email di airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान

0: न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर। मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
1: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग,

0: स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से

0: गए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में दो दो मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में एक एक मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जोयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल रिकॉर्ड। शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कॉकरो जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइया ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डिब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी AI की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई AI से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट PG 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across 6 districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to 4th position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will launch the nationwide

0: मुक्केबाजों ने रिकॉर्ड सोने के 7 तमगे जीते हैं, जिससे तमगों की तादाद बढ़कर 39 हो गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का आगाज करेंगे। इसके साथ ही मनुष्यात के इस्तेमाल के खिलाफ 100 हफ्तों पर मुश्तमिल मुल्क गिर जन भागीदारी मुहिम शुरू हो जाएगी। इस प्रोग्राम में मुल्क भर के 10,000 से ज़्यादा मकामात से नौजवान हिस्सा लेंगे। इसके अलावा माई भारत के रजाकार, नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकार, नौजवानों के क्लब, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, गैर सरकारी तंजीमें, सनती अंजुमनों के नौजवानों के शोबे और 125 से ज़्यादा शराकत दार रूहानी तंजीमें भी वर्चुअल तौर पर इस प्रोग्राम में शामिल होंगी। इस मुहिम के तहत मुल्क भर में हर इतवार को मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा, ताकि अवाम में मनुष्यात के नुकसानात से मुतालिक आगही पैदा की जा सके और मनुष्यात से पाक मुआशरा बनाने के लिए अवामी शिरकत को फ़रोग दिया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नौजवानों की सलाहियत सिर्फ इसी सूरत में एक मुतहर्रिक क़ुव्वत बनती है जब उन्हें सही मौके और सही सिमत मिल जाए, ताकि वो पूरे एतमाद के साथ बड़े ख्वाब देख सकें और उनकी ताबीर तलाश कर सकें। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक के इफ्तिताह के बाद उन्होंने खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि आज भारत में नौजवान दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप निज़ाम आत्मनिर्भर भारत मिशन और मेक इन इंडिया स्कीम को आगे लेकर चल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के नौजवानों की सलाहियतों ने भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन मार्केट में तब्दील कर दिया है और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, नीज इख्तिराआत में और प्राइवेट सेक्टर खलाई मिशन में नई नई कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने नौजवानों को अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने और दुनिया भर में तमगे जीतने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट नीट PG 2026 की तैयारियों का जायज़ा लिया, ताकि इम्तिहानात को बिला रुकावट, पूरी तरह महफूज, शफाफ और टेक्नोलॉजी पर मबनी सूरत में मुनक़िद किए जाने को यकीनी बनाया जा सके। ये इम्तिहान इस माह की 30 तारीख को मुनक़िद किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मीटिंग के दौरान वज़ीर मौसूफ ने मेडिकल साइंसेज में इम्तिहानात के कौमी बोर्ड, टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्टनरों और इम्तिहान मुनक़िद किए जाने में शामिल दीगर तरफ़ैन के साथ तैयारियों का जायज़ा लिया। इम्तिहान से मुतालिक लॉजिस्टिक्स, उम्मीदवारों के लिए सहूलत के इकदामात, सिक्योरिटी के निज़ाम और नीट PG 2026 के लिए मुतारिफ़ कराई गई टेक्नोलॉजी पर मबनी मुदाखलतों के मुतालिक वज़ीर मौसूफ को तफसीलात बताई गईं। जनाब नड्डा ने जोर देकर कहा कि एक मुनसिफाना, शफाफ और उम्मीदवार दोस्त इम्तिहान मुनक़िद किए जाने को यकीनी बनाने की गरज से तमाम कोशिशें की जानी चाहिए। साथ ही सालमियत और सलामती के आला तरीन मेयार को भी बरकरार रखना चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से जोर देकर कहा कि ये भी कहा कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और मेडिकल साइंसेज में इम्तिहानात के कौमी बोर्ड और वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी बाज़ाब्ता ऐलानात पर ही एतबार करें। उन्होंने ये भी कहा कि फ़ाइनल सवालनामा एक इंतहाई महफूज, इनक्रिप्टेड और पाबंदी वक्त पर मबनी एक अमल के ज़रिए इम्तिहान शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही मुंतखब किया जाएगा और इसके साथ कई सतहों पर मबनी तकनीकी और कार्रवाई जाती तहफ़ुज़ात का ख्याल रखा जाएगा, ताकि इम्तिहान के शुरू होने के तयशुदा वक्त तक उसकी राजदारी को यकीनी बनाया जा सके। जनाब नड्डा ने तमाम मुतालिका एजेंसियों को करीबी तालमेल बरकरार रखने की हिदायत दी, ताकि इस बात को यकीन

0: सिर से पैर तक साहित्यकार हैं जिनका ओढ़ना बिछौना साहित्य ही था। सच मानिए तो उनके जीवन का एक एक सांस साहित्य के रंग में रंगा हुआ है, एक एक क्षण सृजन के आलोक से आलोकित है। प्रेमचंद के बाद जिन साहित्यकारों ने पूर्णकालिक लेखक होने की चुनौती को स्वीकार किया और लेखन से मिलने वाले अल्प पारिश्रमिक या आकाशवृत्ति के सहारे अपना जीवन गुजारने का संकल्प लिया और उसे पूरा करके भी दिखाया, ऐसे ही साहित्यकार विष्णु प्रभाकर हैं। हालांकि साहित्य को ओढ़ना बिछौना बनाने वाले इसी विष्णु प्रभाकर ने किस तरह हंसते हंसते रोजमर्रा के जीवन में आने वाले अभाव और तमाम मुश्किलों को झेला, बड़ी से बड़ी समस्याओं को लगातार दो चार होते रहे, लेकिन फिर भी कबीर की हमन मस्ताना वाली मस्ती के साथ जीवन को गुजारा। इस जीवन गुजारने में उनके परिवार का क्या हुआ या उनकी लेखनी में परिवार का क्या योगदान था, जैसी बहुत सारी अनछुए पहलुओं को जानने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, एक सफल साहित्यकार को समझने के लिए हमारे साथ हैं आज यशस्वी साहित्यकार के सुपुत्र अतुल प्रभाकर जी। आपका स्वागत है
1: जी। नमस्कार।
0: विष्णु प्रभाकर जी लिखते हैं कि मेरे उस ओर आग है, मेरे इस ओर आग है, मेरे भीतर आग है, मेरे बाहर आग है। इस आग का अर्थ जानते हो, क्या तपन, क्या दहन, क्या ज्योति, क्या जलन, क्या जठाग्नि, क्या कामाग्नि। नहीं नहीं, यह अर्थ है कोश का, कोशकारों के जीवन के पाठशाला के नहीं। जैसे जीवन वैसे ही आग का अर्थ है संघर्ष। विष्णु प्रभाकर जी के संघर्ष को अच्छी तरह देखा है आपने, तो आप मुझे ये बताइए कि उनका जीवन कैसे संघर्षमय रहा।
1: जब वो छोटे थे जी, करीब 12 साल के, उससे पहले उनका परिवार बहुत संपन्न परिवार था, व्यापार था परिवार में
0: जी जी।
1: लेकिन 1912 में प्लेग और दूसरी महामारी जो हुई
0: जी,
1: तो उसमें जो परिवार के कमाने वाले सदस्य थे
0: जी,
1: उनकी मृत्यु हो गई
0: जी,
1: और उससे परिवार का जो व्यापार था वो भी बंद हो गया, ख़त्म हो गया। तो एक तरह से परिवार की आमदनी जो भी थी वो बिल्कुल बंद हो गई। तो अब उन लोगों की समस्या ये थी कि जीवन यापन करें, खान पीन करें, बच्चों को पढ़ाएं कैसे। तो उनकी माता जी ने ये निश्चय किया कि इनको मैं भेज देती हूँ अपने भाई के पास
0: जी,
1: और वहाँ रह के ये पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे, तो उसके बाद फिर अपना जीवन आगे बनाएंगे
0: जी।
1: तो वो एक ऐसा समय बना कि अपने घर से, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से दूर जाके रहना
0: जी,
1: क्योंकि उनको अपने माँ से बहुत प्यार था।
0: अच्छा।
1: और माँ ही उनके परिवार में पहली पढ़ी लिखी महिला थी
0: जी।
1: तो उनके साथ रह के जो उन्होंने देखा कि दहेज में एक बक्सा लाई थी जिसमें किताबें थी, तो उस समय से उनको किताबों से प्यार,
0: मतलब किताबों का संस्कार उनको परिवार से पहले ही,
1: किताबों का संस्कार तब वहाँ से मिला
0: जी जी जी।
1: और उससे पहले जब पिता की और दादा की जो दुकान थी
0: जी,
1: उसमें वो जाते थे तो कभी कभी वहाँ पुड़िया बांधनी होती थी, तो पुड़िया जिन कागजों में बांधते थे
0: जी,
1: वो पत्रिकाओं की कागज होते थे, उसमें बहुत कुछ लिखा होता था, वो पढ़ लेते थे। तो उससे शुरू से ही उनके मन में एक साहित्य के प्रति और इस तरह के लेखन के प्रति उनके मन में एक जागरूकता बन गई थी।
0: उनकी प्रसिद्ध कविता है निकटता। निकटता में वे लिखते हैं कि त्रास देता है जो वह हंसता है, त्रास देता है जो वह हंसता है, त्रसित है वह रोता है, कितनी निकटता है रोने और हंसने में। और खुद विष्णु प्रभाकर जी लिखते हैं कि मेरे साहित्य का जन्म मेरे जीवन की त्रासदियों से हुआ है। तो इस कथन के आलोक में आप उनकी संपूर्ण रचना संसार को कैसे देखते हैं, जो कि आपसे अच्छा कोई और नहीं बता सकता।
1: तो वो जो शुरू से बचपन से जो उनके मन में रहा
0: जी,
1: और परिवार से दूर जाके रहना पड़ा
0: जी,
1: तो जो मन में वेदना रही और वहाँ जो संघर्ष करना पड़ा, ठीक है मामा उनके जो थे उनको प्यार करते थे लेकिन बाकी परिवार में थोड़ी समस्याएं रहती थी, तो वो सब संघर्ष करना पड़ा। 14-15 साल की उम्र में ही उनको नौकरी करनी पड़ी क्योंकि आमदनी का कोई और जरिया नहीं था
0: जी।
1: और उसी संघर्ष से उन्होंने नौकरी करते हुए पढ़ाई करी। वो चाहते थे कि गांधी जी के साथ जाके स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें, लेकिन सरकारी नौकरी करते थे, सरकारी
0: गांधी
1: नौकरी
0: जी का प्रभाव बहुत पड़ा था विष्णु प्रभाकर जी।

0: और जहां तक मैंने सुना है, पढ़ा है कि उन्होंने खादी भी गांधी जी के कारण ही पहनना शुरू किया। कितनी सच्चाई है इसमें?
1: प्रभाव तो गांधी जी का था, लेकिन खादी पहनना जो शुरू किया वो उसका एक और कारण है।
0: जी।
1: जब वो छोटे थे तो गांव में कोई मीटिंग हो रही थी, तो उसमें एक 5 साल का बच्चा था, वो मंच पे आया
0: जी
1: और मंच पे आके उसने कहा कि मैं 5 साल का बच्चा हूँ,
0: जी
1: मैं खादी पहनता हूँ,
0: जी
1: आप भी खादी पहनो। उसने दो वाक्य बोले और वो मंच से उतर गया। उस समय विष्णु प्रभाकर जी और अपने चाचा के साथ वो वहाँ उस सम्मेलन में उपस्थित थे। तो जब उनके चाचा ने कहा कि देख, एक ये और एक तू है,
0: जी
1: ये खादी पहनता और तू मलबल पहनता है,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: उसी समय उन्होंने प्रण कर लिया कि नहीं, मैं मलबल छोड़ के मैं खादी पहनूंगा, और जाके अपने पिता से कहा कि
0: जी
1: मुझे खादी दिलवाओ। और पिता ने उनको एक थप्पड़ मारा कि एक मलबल पहनने वाला खादी पहनेगा,
0: जी
1: तुरे बस का कहाँ खादी पहनना। लेकिन फिर भी उनके चाचा ने कहा कि नहीं, जब ये बच्चा कह रहा है तो उसको
0: जी
1: खादी दिलवाओ। खादी
0: जी
1: उस समय जो पहननी शुरू करी, उसके बाद से वो पूरे जीवन खादी चलती रही। और फिर तो गांधी जी का जुड़ाव और सबका जुड़ाव, फिर वो खादी पूरी तरह से अंतिम समय तक खादी चलती रही।
0: और विष्णु प्रभाकर जी ने सभी विधाओं पे लिखा है। 1974 में उनकी प्रमुख रचना आवारा मसीहा का प्रकाशन हुआ था। 1959 में उन्होंने लिखने की शुरुआत की। 1973, 14 वर्ष का समय उन्होंने, जैसे राम जी ने 14 साल का वनवास किया था, लगभग वैसा ही वनवास, 14 साल का वनवास इस पुस्तक को लिखने में लगा, जबकि 50 साल पूरे हो गए प्रकाशन वर्ष के बाद। और माना जाता है कि शरद जी को यदि हिंदी पट्टी में किसी ने स्थापित किया तो विष्णु प्रभाकर जी थे। यदि आवारा मसीहा नहीं आता तो शायद शरद जी इतने स्थापित नहीं होते। आप उस समय बच्चे होंगे, तो जो 14 साल बार बार घूमते रहते थे, उस आवारा मसीहा के कारण आपको अपने पिता का, अपने पूरे परिवार का उतना प्यार नहीं मिल पाया।
1: क्या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं इसका थोड़ा सा पीछे से लेके
0: जी जी
1: चलता
0: बिल्कुल
1: हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इस पर विस्तार से आप बात करें।
1: हाँ, ये 1957 में
0: जी
1: बम्बई के एक प्रकाशक हैं, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर,
0: जी जी
1: तो नाथुराम प्रेमी जी उसके संस्थापक थे। उन्होंने प्रभाकर जी से एक प्रस्ताव रखा कि हमने शरद का साहित्य हिंदी में छापा है,
0: जी
1: पूरा साहित्य छापा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी एक जीवनी अगर इसमें जुड़ जाए तो ये एक संपूर्ण
0: शायद
1: ग्रंथ बन जाएगा।
0: जी
1: तो उन्होंने प्रभाकर जी से कहा कि आप एक उनकी जीवनी लिख दीजिए। प्रभाकर जी ने मना कर दिया, लेकिन जीवनी लिखना मेरा कोई विधा नहीं है, मैं तो कहानीकार हूँ और थोड़े बहुत नाटक लिखता हूँ,
0: जी
1: तो जीवनी मैंने कभी लिखी नहीं, मैंने लिख सकता। 1957 के बाद 1 साल 1.5 साल गुजर गया। 1959 में उन्होंने फिर कहा कि नहीं, आप लिखिए। तब उन्होंने कहा ठीक है, शरद मेरा प्रिय लेखक है,
0: जी
1: मैंने उसको पढ़ा है अच्छी तरह से, और उसके पात्र क्या हैं उनको मैं भी जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि वो पात्र कैसे थे, कहाँ से आए और उनके पीछे क्या राज है। तो मैं कोशिश करता हूँ और लिखने का प्रयास करता हूँ। तो इस कड़ी में उन्होंने जुलाई 1959 में
0: जी
1: सबसे पहली यात्रा की मुजफ्फरपुर के।
0: जी जी जी
1: मुजफ्फरपुर गए और वहाँ जितना भी जो उनके उस समय के लोग थे
0: जी
1: उनसे मिलने की प्रयास किया, उनसे जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की,
0: जी
1: लेकिन वहाँ सब लोगों ने उनको निरुत्साहित ही किया। कहने लगे कि एक आवारा और बदचलन व्यक्ति के पीछे जो इधर उधर घूमता फिरता था,
0: जी
1: उसके पीछे तुम क्यों पड़े हो, क्यों अपना समय उसके पीछे बर्बाद कर रहे हो, कोई अच्छा काम करो।
0: जी
1: लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो चाहे आवारा था कैसा था, लेकिन इतना बढ़िया साहित्य लिखा
0: जी
1: तो कुछ तो उसके पीछे होगा, इसलिए मैं खोज करता हूँ। और वो लगे रहे। उसके बाद अगस्त में वो भागलपुर गए,
0: जी
1: 1959 के अगस्त में।
0: जी
1: भागलपुर में उनका बचपन बीता था, शरद बचपन में अपने मामा के पास भागलपुर रहे थे,
0: जी
1: वहीं उनकी शिक्षा हुई, वहीं उन्होंने सारा अपना जीवन शुरू किया और 25 वर्ष वो भागलपुर रहे। वहाँ जाके फिर उन्होंने खोजबीन शुरू करी और मामा के परिवार से और जो उस समय के लोग थे, मित्र थे, उन सबसे जानकारी इकट्ठी करनी शुरू करी। और ये भी देखा कि शरद के जो पात्र थे वो
0: जी
1: भागलपुर में कहाँ कहाँ थे। और शुरू में जब बचपन में शरद थे वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और उनको गल्प सुनाते थे। गल्प मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ, वो बचपन से ही करते थे। तो उस जगह को भी देखा, सब जगह वो गए और जाके समझा

0: और समझने के बाद फिर प्रयास किया आगे। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि शरत एक बहुत लंबे समय रंगून में रहे
1: जी,
0: तो फिर 1960 में वो रंगून गए
1: जी।
0: तो ये यात्राओं का सिलसिला चलता रहा। 1960 में रंगून जब गए तो आसपास की भी कई जगह घूमाए, तो 3-4 महीने उस यात्रा में रहे
1: जी।
0: वहाँ सब यात्राएं कर करके जहाँ भी जितनी भी सामग्री शरत वहाँ रहे, उनका परिवार था, उनकी पत्नी

0: भी सारी जानकारियों की प्रामाणिकता नहीं मिल पाई
1: जी।
0: और प्रामाणिकता एकत्र करने के लिए उसके बाद भी वो घूमते रहे और बहुत से लोगों से पत्राचार करते हैं। उसके बाद दो बार कलकत्ता गए, जहाँ से भी जिससे भी सूचना मिल सकती थी, जिससे भी वो प्रामाणिकता उनको सिद्ध हो सकती थी, उन सबसे मिले और लगातार पत्राचार करते रहे। तो तब जाके 6-7 वर्ष में वो एक सामग्री इकट्ठा कर पाए
1: जी।
0: और 7वें वर्ष के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। जब उसका लेखन शुरू हुआ कि एक पांडुलिपि बनी
1: जी,
0: फिर उसके बाद दूसरी पांडुलिपि बनी, उसके बाद तीसरी पांडुलिपि बनी और तब तक नई नई सामग्रियां मिलती रही, प्रामाणिकता बदलती रही
1: जी।
0: जो तथ्य उनको पहले मिले थे वो बदलते रहे, तो उन सबको बदलते बदलते फिर 4थी पांडुलिपि बनी। 4 पांडुलिपि बनने के बाद वो ग्रंथ तैयार हुआ। लेकिन फिर उनके मन में आया कि ये तो मैंने एक जीवनी की तरह से लिख दिया
1: जी,
0: लेकिन शरत तो अपने आप में एक अलग पात्र हैं
1: जी,
0: वो तो एक रोमांटिक पात्र हैं
1: जी,
0: और रोमांचक पात्र हैं, तो क्यों ना इसको बदल के मैं एक उपन्यास के रूप में
1: जी।
0: उसको उन्होंने फिर से लिखा। जो 5वीं पांडुलिपि तैयार हुई
1: जी,
0: वो एक उपन्यास के रूप में जो एक रोचक तरीके से वो लिखी गई
1: जी, जी।
0: फिर 6ठी पांडुलिपि फाइनल तैयार हुई, अंतिम पांडुलिपि 6ठी तैयार हुई। 6 पांडुलिपियां जो मेरे पास अभी भी रखी हुई है
1: जी,
0: वो तैयार हुई, तब ये ग्रंथ तैयार हुआ।
1: 6 पांडुलिपियां 435 पृष्ठ की यह किताब है, जिसको मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था कि आवारा मसीहा में कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो कल्पित है, जिसको विष्णु प्रभाकर जी ने कल्पना से लिया,
0: बिल्कुल
1: जो भी लिया है किसी न किसी स्रोत से लिया है, और इससे ज्यादा प्रामाणिक कोई रचना हो नहीं सकती। और उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा भी, जैसा कि आपने बताया, दिशाहारा जिसके 18 उपशीर्षक दिए, दिशा की खोज, फिर इसमें भी उन्होंने 18 उपशीर्षक दिए, और दिशांत जिसके 30 उपशीर्षक हैं। दिशाहारा में 75 पृष्ठ, दिशा की खोज में 91 पृष्ठ, दिशांत में 271 पृष्ठ। लेकिन जो आपसे मेरा सवाल है, सबसे पहले दिशाहारा को लेकर, क्योंकि इसमें उन्होंने शरद के बाल जीवन को दर्शाया है, तो कहीं उसमें आपका बाल जीवन भी तो नहीं था? क्योंकि एक बाप जब कुछ लिखता है तो अपने बच्चे को जहन में भी जरूर रखता है, क्या आपको कुछ ऐसा लगा?
0: नहीं, वो बिल्कुल नहीं था, बल्कि उनका अपना
1: नहीं, उनकी शरारतें, जैसे आप पढ़ते हैं दिशाहारा में तो उनकी शरारतें को वर्णन करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि शरारतें तो उन्होंने देखी नहीं होगी, शरारतें तो उन्होंने सुनी होगी और आपकी शरारतों को उन्होंने देखा होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ सामंजस्य बैठता है क्या?
0: जो उन्होंने अपने आप ही कहा, उन्होंने बताया
1: जी
0: कि जो इस तरह की जो घटनाएं थी
1: जी
0: उसमें मैंने कुछ कल्पना जोड़ी है
1: जी जी जी,
0: तथ्यों को बिल्कुल नहीं बदला
1: जी,
0: लेकिन उनको एक नाटकीय रूप देने के लिए उसमें कुछ कल्पना मैंने जोड़ी और काल्पनिक उसको दृश्य बना के
1: जी
0: और उसको एक इस तरह का रोचक रूप दिया। तो उसमें अवश्य ही कहीं ना कहीं से जो परिवार के सब लोगों के बच्चों के भी उसमें प्रसंग जुड़ जाते थे
1: जी।
0: लेकिन इसके बाद आज जो हम देखते हैं, अगर मैं किसी से भी मिलता हूँ, कहीं भी बात करता हूँ, नए लोगों से परिचय होता है, उनको ये पता लगता है कि विष्णु प्रभाकर जी के पुत्र हैं, तो सबसे पहले कहते हैं अच्छा आवारा मसीहा वाले विष्णु प्रभाकर जी।
1: जी जी जी,
0: और एक तरह से उनके नाम के साथ आवारा मसीहा बिल्कुल इस तरह से जुड़ गया कि जैसे वो दोनों एक ही हैं।
1: जी जी जी,
0: और कोई कहता है कि मैंने आवारा मसीहा 10 बार पढ़ी, कोई कहता है कि मेरी प्रिय पुस्तक है, कोई किसी तरह से बताता है कि हमने तो आवारा मसीहा दिन रात बैठ के एक साथ पढ़ी, एक बार पढ़नी शुरू करी थी, 24 घंटे पढ़ते रहे।
1: जी जी,
0: तरह तरह की लोग बात करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि अगर हमारा मसीहा ही एक वो पुस्तक उन्होंने लिखी होती
1: जी,
0: तो वही उनके लिए जीवन के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती
1: जी।
0: और ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। लेकिन इसके पीछे कुछ और चीज़ें भी आई, जैसे हमारा मसीहा शीर्षक जो है
1: जी जी,
0: अब शीर्षक के पीछे भी कुछ लोगों ने कहा कि ये शीर्षक तो बहुत ख़राब है, बहुत भद्दा है। एक दो लोगों ने कहा कि इनकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे लेखक को आवारा कह दिया
1: जी,
0: और ये देखिए एक दूसरी भाषा का आदमी और हमारे बंगाली के लेखक को आवारा कह रहा है, ये कैसे उसने कर दिया, कैसे उसकी हिम्मत हुई, लेकिन ये नाम कैसे बना
1: जी,
0: इसके पीछे भी एक कहानी
1: जी,
0: है।
1: जी बता दीजिए।
0: इसके पीछे ये कहानी है कि जब शरद अंतिम समय में बीमार थे
1: जी,
0: तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने एक मित्र को उनके पास भेजा
1: जी
0: और उनसे बातचीत करी और उनसे कहा कि शरद तुम अपनी जीवनी लिखो, अपने आत्म संस्करण लिखो। तो शरद ने बोला कि अगर मुझे पता होता

0: कि मैं इतना प्रसिद्ध हो जाऊंगा तो मैं एक किसी और तरह का जीवन जीता, आवारा तरह का जीवन नहीं जीता। मैंने बचपन
1: क्या
0: से
1: बात,
0: आवारागर्दी करी, अब आप देख रहे हैं कि मैं क्या हूँ।
1: वहीं से आवारा शब्द।
0: वहां से आवारा बना,
1: जी,
0: और उसी समय जो वहां की महिला मंडल था
1: जी,
0: उन्होंने एक सम्मान पत्र उनको दिया, और उसमें उन्होंने लिखा कि आपने महिलाओं के लिए जितना काम किया है, आपके साहित्य में महिलाओं को जितना स्थान मिला है, इसलिए आप हमारे लिए मसीहा हैं।
1: जी जी जी
0: तो
1: जी जी
0: ये आवारा और मसीहा जुड़ के आवारा मसीह बन गया।
1: अमृतलाल नागर ने मानस का हंस लिखकर तुलसी की छवि को निखारा। अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखकर और ऐसा लिखा जिससे लोग प्रेमचंद को निकट से जान सकें। लेकिन शरद चंद के साथ तो कोई न्याय नहीं हुआ, उनके ऊपर लिखने वाला कोई नहीं हुआ, न कुल परिवार में न कोई साहित्य प्रेमी ही। यह बात मुझे बेचैन करती रही, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ही काम करना होगा, और इस प्रकार महान कालजयी आवारा मसीहा की रचना हुई। भूमिका में लिखते हैं। फिर मेरा सवाल, जैसा कि आपने कहा कि वो गए थे मुजफ्फरपुर, वहां पे कहा रत्नाकर ने, उसी से प्रेरणा थी या यदि वे नहीं होते तब भी ये लिखते रचन पे?
0: अगर नाथुराम प्रेमी जी इतना
1: आग्रह नहीं करते।
0: आग्रह नहीं करते तो शायद ना लिखी जाती, क्योंकि उनके मन में तो शरद के साहित्य से प्रेम था,
1: जी,
0: लेकिन जीवनी लिखने का उनके मन में कभी भी वो कोई विचार नहीं था। प्रेमी जी ने उनसे बार बार आग्रह किया,
1: जी
0: और एक बार मना करने के बाद भी दोबारा तिबारा उनसे आग्रह किया, तो उनके मन में इच्छा जागी और उन्होंने लिखना शुरू किया।
1: लेकिन उन्होंने एक दूसरी जीवनी भी लिखी, अमर शहीद भगत सिंह,
0: हाँ
1: उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी चर्चा आवारा मसीहा की हुई, उतनी शहीद भगत सिंह की नहीं हुई, जबकि शहीद भगत सिंह देश के एक नए आयाम देने की कोशिश की उन्होंने। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लेखनी में विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद्र जी को ज्यादा महत्व दिया?
0: बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। देखिए, जितना शरद के लिए उन्होंने परिश्रम किया,
1: जी
0: जितना भ्रमण शरद के लिए किया, उतना परिश्रम और उतने ही भ्रमण उन्होंने भगत सिंह के लिए नहीं किए।
1: जी
0: उसका तो उन्होंने जो कुछ लोगों से पत्राचार करके, कुछ इधर से उधर से सामग्री इकट्ठी करके, और उस समय भगत सिंह के साथी जो जयदेव थे, उनके भाई, उन लोगों से मिलके इतनी सामग्री इकट्ठी करते थे, उससे उन्होंने वो पुस्तक लिखी। लेकिन
1: जी
0: अगर उनके पैतृक गांव जाते या उनके परिवार से मिलते और बातचीत करते तो वो उसमें एक नया रूप दे सकते थे। शरद के लिए जो जितना उन्होंने परिश्रम किया, उनके मन में उनसे लगाव जो था, एक जुड़ाव था शरद से, तो उस जुड़ाव के नाते जो उन्होंने परिश्रम किया और इतनी जगह घूमे, वो सब कुछ जो किया, अगर उतना ही भगत सिंह के साथ करते तो शायद वो जीवनी कुछ और तरह की होती। तो वो तो अंतर है उसमें।
1: अच्छा, आवारा मसीहा की एक पंक्ति है, उसके बारे में आपसे मैं जानना चाहता हूँ। वे लिखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नारी मात्र को स्नेह दिया पर सहानुभूति दी शरद चंद्र को। तो आवारा मसीहा के इस कथन के आलोक में विष्णु जी की स्त्री दृष्टि या कुछ स्त्री पात्रों पर प्रकाश डालिए, क्योंकि तो एक मनुष्य को मनुष्य बनाने में, एक पुरुष को पुरुष बनाने में, एक रचनाकार को रचनाकार बनाने में सबसे ज्यादा हाथ स्त्री का होता है, पत्नी का होता है। तो उनको इतने बड़े रचनाकार बनाने में आपकी माँ की क्या भूमिका रही या स्त्री दृष्टि क्या रही?
0: वो तो उन्होंने अपने संस्मरण में भी लिखा है और बताते भी थे कि
1: जी
0: जो मेरे जीवन की प्रेरणा है,
1: जी
0: सबसे पहली प्रेरणा मेरी माँ है,
1: जी
0: उससे मैंने बहुत कुछ सीखा
1: जी
0: और उसने जो मुझे सिखाया वो मेरे अंदर हमेशा चलता रहा।
1: जी
0: दूसरी प्रेरणा मेरा भाई,
1: जी
0: बड़े भाई थे, और तीसरी प्रेरणा मेरी पत्नी। तो ये दो जो स्त्रियाँ, माँ और पत्नी, इन दोनों स्त्रियों ने जो उनके मन में जो उनके स्त्री पात्र हैं, इनमें ये दोनों झलकते हैं। बहुत सारे पात्रों में ये दोनों स्त्रियां उपस्थित हैं। और उसके साथ साथ फिर शरद को जो उन्होंने पढ़ा,
1: जी
0: उसमें जो स्त्री पात्र को उन्होंने उनकी संवेदनाएं जो व्यक्त की हैं, तो वो सारी संवेदनाएं उनके उसमें आई हैं। और यही संवेदनाएं इस आवारा मसीहा में भी हैं, क्योंकि तो लोगों ने ये भी कहा कि इसमें संवेदना बहुत दिखाई देती है, झलकती है। कुछ लोगों ने ये कहा कि देखिए, अगर शरद के जीवनी में संवेदना ना होती तो फिर क्या होता।
1: बिल्कुल। और आप विष्णु प्रभाकर जी की सभी रचनाओं को देख लीजिए, सब में मनुष्य और संवेदना प्रमुख है। खुद विष्णु प्रभाकर जी लिखते हैं कि यश ही मिलता और उसको लेकर किसी के मन में कोई विरोध ना होता

0: उस यश का गौरव न रहता। तुम्हारी प्रतिष्ठा जितनी बढ़ेगी उतना ही दुख बढ़ेगा। इसके लिए मन को पक्का करके रखो। तो ये यश अपयश, और वो लिखते भी हैं एक जगह कि समा जाता है श्वास में श्वास, शेष रहता है फिर कुछ नहीं इस अनंत आकाश। और वहां पे एक लाइन है, शब्द ब्रह्म ढूंढता पर ब्रह्म को। तो कहीं ना कहीं विष्णु प्रभाकर जी के पूरे जीवन की जो तलाश है, जिसे हम आवारा मसीहा में देखते भी हैं, दिशा की खोज, तो उनके दिशा की खोज क्या रही?
1: उनका दिशा की खोज में ये था कि एक तो शुरू से ही अरविंदो की तरफ उनका झुकाव था
0: जी।
1: उससे पहले जब वो हिसार रहते थे तो आर्य समाज से उनका जुड़ाव था। आर्य समाज की सभाओं में जाते थे वो और वहाँ भाषण देते थे। जो भाषण की कला उनकी जो निखरी, वो वहाँ उन्होंने जो भाषण दिए उसी से निखरी। क्योंकि उनका सम्मान वहाँ इसलिए होता था ज़्यादा, उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी
0: जी,
1: उच्चारण बहुत अच्छा था। और हिसार जैसी जगह में उच्चारण लोगों का वहाँ इतना अच्छा सुंदर नहीं था
0: जी।
1: तो वो जो वहाँ भाषण देते थे उस उच्चारण से लोग बहुत प्रभावित होते थे। तो जो उन्होंने आर्य समाज को अपनाया
0: जी
1: शुरू में, तो एक तो दिशा उससे मिली
0: जी।
1: और उसके बाद श्री अरविंद की तरफ उनका झुकाव रहा
0: जी।
1: 15 अगस्त को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय वो अरविंद आश्रम में ही थे। तो वो जो दोनों चीज़ें उनके जीवन में रही
0: जी,
1: अंतिम समय तक वो उसी से जुड़े हैं। और जो आप देखते हैं कविताओं में, जो आपने जो अभी बहुत सारी कविताएं सुनाई
0: जी,
1: तो उसमें जो उनका एक झलकता है कि वो आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव हमेशा बना रहता है
0: जी जी वे लिखते हैं कि मैं मानव धर्म को सती धर्म के बहुत ऊपर स्थान देता हूँ। सतीत्व और नारीत्व, यह दोनों आदर्श समान नहीं है। नारी हृदय की मंगलमयी करुणा, उसकी जन्मजात मातृ वेदना, उसके सतीत्व से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो ये बाल्य प्रेम है, या यूं कहें कि जो वात्सल्य प्रेम है, वैसा वात्सल्य प्रेम, आपको पूरा वात्सल्य प्रेम अपने पिता से मिला या नहीं? क्योंकि साहित्यकार जो होता है वह अपने घर को जितना समय देना चाहिए उतना नहीं दे पाता।
1: बिल्कुल ठीक बात है। वो तो ये मानते हैं कि ये तो मेरा एक जैविक परिवार है, छोटा सा परिवार है
0: जी जी,
1: लेकिन
0: जी।
1: मेरा साहित्यिक परिवार तो पूरा है। तो यही कहा करते थे कि पूरे देश में मेरे कितने घर हैं, मैं कहीं भी जाके रह सकता हूँ, कितने समय भी रह सकता हूँ, पूरा देश मेरा घर है
0: जी।
1: तो हमारे एक छोटे से परिवार को वो इतने बड़े परिवार में से थोड़ा सा समय भी देते
0: जी,
1: तो वो भी बहुत।
0: आपके मन में कभी रहा
1: बिल्कुल
0: द्वेष मलाल रहा कि जो आपको समय मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया?
1: बिल्कुल बचपन में, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि हमारा संयुक्त परिवार था
0: जी,
1: संयुक्त परिवार में हमारे चाचा ताऊ सब रहते थे
0: जी।
1: तो वो लोग एक सीमित समय में अपने नौकरी पे गए और आ गए और वो अपने बच्चों के साथ भी समय बिताते थे। लेकिन इनको हम देखते थे कि ये तो सुबह से गए और शाम को आए, शाम को भी आए तो इनके साथ इनके मित्र आए हुए हैं, ये उनके साथ अपने काम में लगे हुए हैं, हम लोगों के लिए तो समय है ही नहीं इनके पास। और कभी समय मिलता भी था तो सुबह के समय जब शहर को जाते थे, हमें साथ ले जाते थे, बस उस समय उनको हमारे लिए थोड़ा समय होता था, बाकी समय नहीं हम लोगों के लिए होता था। तो ये हम लोगों को लगता था कि हमारे लिए तो इनके पास समय है ही नहीं।
0: एक अंतिम सवाल, उनकी पहली कहानी दिवाली की रात 1931 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाला समाचार मिलाप में छपती है। 1931 से लेकर अंतिम दिन तक, जीवन के अंतिम दिन तक लगभग लिखते रहे किसी न किसी रूप से, आपको उनकी सबसे अच्छी रचना कौन सी लगी?
1: अगर सबसे अच्छी रचना कहें तो यही रचना है
0: हमारा
1: मसीहा
0: जी।
1: लेकिन इसके अलावा उनकी कहानियां बहुत हैं
0: जी जी,
1: जिंदगी शरीर से परे और धरती अब भी घूम रही है, और इसके अलावा नाटक हैं कई सारे, ये बहुत अच्छी रचनाएं हैं। और इसके अतिरिक्त भी जो उन्होंने एक समाज और संस्कृति करके लेख लिखे हैं
0: जी,
1: वो भी बहुत सुंदर लेख है,
0: जी।
1: वो भी बहुत प्रभावित करते हैं। इस तरह से जो यात्रा संस्मरण लिखे हैं
0: जी,
1: यात्रा संस्मरण भी बहुत अच्छे हैं, रोचक है, रोचक ढंग से लिखे गए हैं। हालांकि वो अब आज उतने प्रासंगिक नहीं हैं
0: जी,
1: लेकिन फिर भी जो उस समय के लिखे गए थे तो उसमें जो रोचक संस्मरण है
0: जी,
1: वो सब प्रभावित करते हैं, वो सभी अच्छे लगते हैं
0: जी जी विष्णु जी लिखते हैं कि मन कहता है कि छोड़ इस झगड़े को, कौन पूछता है तुझे और तेरी ईमानदारी को, पर दिमाग बोल उठता है जिस रास्ते को तू ठीक समझता है उसे केवल चंद दुनियावी मुश्किलों की वजह से छोड़ना बुजदिली है। और यदि हम पूरे उनकी रचना संसार को देखें तो वो बुजदिली कहीं नहीं दिखाते, अपने हर काम को ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि जैसा

0: जीवन, वैसे ही आग का अर्थ है संघर्ष। और न केवल अपने जीवन में संघर्ष करते रहे, लेकिन जो ईमानदारी की बात उन्होंने की थी, उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरा देह दान कर दिया जाए। ये आप किस रूप में देखते हैं?
1: मेरी जो माता जी थी उनको कैंसर था
0: जी,
1: और जब वो जीवित थी तभी उन्होंने, ये दोनों ने संकल्प किया था कि हम लोग अपनी देह दान करेंगे। ये कहाँ से उनको प्रेरणा मिली ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन उनके मन में दोनों में था कि हमको देह दान करनी है। और ये पहले शायद मेरी माता जी की तरफ से ये प्रस्ताव था
0: जी
1: कि मेरे अंदर इतनी बीमारियां हैं, मेरे शरीर में कैंसर है, क्यों ना मेरी देह को आप अस्पताल में दान कर दें ताकि जो विद्यार्थी हैं वो कैंसर की बीमारी को समझ सके। तो ये उनके मन में इच्छा थी, लेकिन उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई
0: जी
1: कि वो उनकी देह इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वो उसको दान नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसी समय उन्होंने प्रण लिया कि वो तो मैं नहीं कर पाया लेकिन मेरी देह मैं दान करूँगा।
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: उसके लिए उन्होंने उसके कुछ वर्ष बाद ही एक पत्र बना के और वहाँ
0: यही एक सच्चे साहित्यकार
1: एम्स में ये उन्होंने पत्र दे दिया
0: जी, जी।
1: और उसमें मेरे हस्ताक्षर उन्होंने विटनेस के तौर पर कराए।
0: बहुत बढ़िया, यही एक सच्चे साहित्यकार की देन है कि न केवल अपनी लेखनी का दान किया, अपने विचारों का दान किया, अपने विचारों सोच समझ का दान किया, बल्कि जाते जाते समाज के लिए अपने शरीर का दान कर दिया,
1: जो कुछ भी काम आ सके, जितना कुछ भी काम
0: जितना
1: आ सके,
0: काम आ सके
1: वो समाज के लिए।
0: बिल्कुल, संघर्ष अधिकारों की शक्तियों से, संघर्ष अपने स्वयं के अहम से, संघर्ष जहां हम नहीं है वहां बार बार दिखने से कर सकोगे क्या संघर्ष। तो जो संघर्ष करने की प्रवृत्ति विष्णु प्रभाकर जी ने अपने जीवन में दी, आज हमें उस साहित्यिक संघर्ष को जानना और समझना होगा, तभी हम वास्तव में विष्णु प्रभाकर जी को याद कर पाएंगे। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विष्णु प्रभाकर, अपना जीवन पराई कहानी, अभी आप इस विषय पर श्री विष्णु प्रभाकर के सुपुत्र श्री अतुल प्रभाकर से ये भेंट वार्ता सुन रही थी। आपसे भेंट कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और प्राध्यापक डॉक्टर आलोक रंजन पांडे। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि।
4: हमारे अतिथि क्रम में आइए सुनते हैं जाने माने साहित्यकार श्री दिविक रमेश से एक भेंट वार्ता। इनसे भेंट कर रही हैं काजल सूरी।
5: नमस्कार श्रोताओं, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं काजल आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं जाने माने साहित्यकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर दिविक रमेश जी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद।
5: तो सर, सबसे पहले मैं आपसे, मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपका जो सफर है वो कैसे शुरू हुआ लेखन के क्षेत्र में? आप एक शिक्षाविद भी रहे हैं, तो क्या कहेंगे किस तरह से आपका सफर शुरू हुआ?
6: देखिए, लगभग 13-14 साल का रहा होऊंगा
5: जी,
6: तो मैंने लिखना शुरू किया था
5: जी।
6: अब वो लिखा हुआ कितना महत्वपूर्ण है ये अलग बात है, हालांकि मेरी फाइल में, मेरी कॉपी में वो सुरक्षित है। और उसका कारण मैं समझता हूँ, बिछो भी कह सकते हैं, नई दुनिया में आना भी कह सकते हैं। मैं दिल्ली के देहात में, जो गांव है हरियाणा की सीमा पर, तो हरियाणी यानी समझिए हरियाणवी संस्कृति या बोली में पला बढ़ा हूँ मैं, मेरा बचपन हुआ है
5: जी।
6: तो वहां से मुझे आगे की पढ़ने के लिए, रहने सहने के लिए मेरे ननियाल भेज दिया गया, जो कि दिल्ली के करोलबाग में वो क्षेत्र पड़ता था, देवनगर
5: जी।
6: स्पष्ट है कि मैं 5वीं क्लास पास करके वहां आया तो मुझे अपनी माँ भी याद आती थी, मेरे पिता भी याद आते थे, पिता को हम चाचा कहते थे
5: जी।
6: और मुझसे जो दो छोटी बहनें उस समय थी, बड़ी बहन तो शादीशुदा थी, तो वो छोटी बहनों से बड़ा लगाव होता ही है, वो याद आते थे, एक तो ये कारण। और दूसरा ये कि मैं जब यहाँ आया तो मैं वहाँ गांव का जैसे बच्चा होता है वैसा ही था, वही बोली थी, वही तरीका था
5: जी।
6: तो दिल्ली के जो आसपास के, मेरे घर के आसपास के जो बच्चे थे,

0: वो मुझे स्वीकार ही नहीं करते थे। यानी एक बड़ा समय लगा उनका हिस्सा बनने में। लेकिन इसमें ये एक था, साहित्यिक अभिरुचि के थे मेरे नाना जी, उनके पास पुस्तकालय भी था, कुछ साहित्यकार भी आते थे, तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि शायद वो कारण रहे होंगे कि मैंने जो है अपने गांव को दिमाग में रख करके, अपने आसपास को दिमाग में रख करके लिखा। जहां तक मुझे याद है, लिखी तो पहले कहानी गई थी
1: जी।
0: लेकिन फिर छोटी छोटी कविताएं लिखी, जिसने मुझे मेरे गांव में मेरी अपनी गाय है वही दिमाग में ही लिख दी, छोटा बाद में छोटा भाई है तो उसकी उसको लेकर के लिख दिया, कुछ इस तरह की चीजें लिखी गई। कहने को उनको वो कविताएं लिखी गई, लेकिन वो कविता थी या नहीं थी अलग बात है
1: जी।
0: लेकिन उसी समय मुझे बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला अपने नाना जी से, जिन्होंने मुझे मेरे लेखन को सराहाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो यहाँ से शुरू हुआ था। तो स्कूल में भी थोड़ा मुझे ये हुआ कि मेरे अध्यापकों ने भी मेरी तरफ ध्यान दिया और मेरे जो लिखा था उस लिखे को एक तरह से उन्होंने पहचाना। ये अलग बात है कि मैं बहुत अधिक नहीं बढ़ पाया कि कुछ कारणों से, उस सेटबैक भी पहुंचा कि मुझे कहा गया कि अपनी कविता सुनाओ एक समारोह में, वो सुना नहीं पाया मैं, यानी मुझे बुलाया नहीं गया मंच पे। लेकिन उस वक्त भी मेरे नाना जी ने मेरा साथ दिया और कहा कि ये तो सब बाधाएं आती रहती हैं। और उस आसपास भी वातावरण कुछ ऐसा था, हमारे घर में तो आते ही थे कुछ साहित्यकार, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र आदि का मेरे को नाम याद है, और चौराहों पर जो ना कुछ कवि सम्मेलन जैसे हुआ करते थे, उनको भी सुनने के मुझे छूट थी। आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: क्या बात।
0: उस समय बाल साहित्य यानी बाल बच्चों के प्रोग्राम जो है रेगुलरली नियमित रूप से मैं सुनता था। छोटा सा रेडियो होता था वो, उन दिनों टेलीविजन तो था नहीं। और अखबारों का बड़ा योगदान है, बाल साहित्य छपता था, पढ़ने का मुझे शौक हो गया। तो इसके बाद जो है बस आगे बढ़ते चले गए और यूँ समझिए कि बीए में भी मुझे जो ना एक दो अध्यापक ऐसे मिले जिन्होंने मुझे मेरे साहित्यकार रूप को प्रोत्साहित किया। और मैं गीत नुमा कुछ लिखा करता था
1: जी।
0: गंगा प्रसाद विमल मेरे एक अध्यापक थे जिन्होंने मुझे
1: जी,
0: फ्री वर्स या मुख छंद की और वो लेके आए
1: जी।
0: और करते कराते शायद 1900 जहाँ तक मुझे याद है, एक पत्रिका होती थी मणि में
1: जी,
0: जो कलकत्ता से निकली थी, और उसमें एक कविता छपी थी मेरी एक सूत्र, जो कि ठीक की थी विमल जी ने ही
1: जी।
0: मतलब उस समय के अध्यापक ऐसे होते थे कि वो आपको प्रोत्साहित भी करते थे, आपकी चीजों को अपने तरीके से
1: बताते
0: जिसको सलाह उर्दू में तो ये काफी है चीज, लेकिन हिंदी में भी इस तरह के अध्यापक होते थे। तो जो एक सूत्र है मणिमय के मई 1970 में छपी थी और ये पत्रिका कोलकाता से निकलती थी, मतलब उस समय कलकत्ता ही बोलेंगे, अब कोलकाता कहेंगे। तो यहाँ से फिर शुरू हुई। और फिर मैं काजल जी, हमारा वो जो समय था, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में था, दिल्ली विश्वविद्यालय से मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा हुई है, मैं उसको आज भी आज तक का स्वर्णिम काल कहता हूँ। यानी इतने हमारे आसपास अध्यापक भी और नए लोग भी थे
1: जी, जी।
0: जो कि साहित्य में और कलाओं में रुचि रखते थे
1: जी।
0: वो तरह एक तरह का विस्फोट था उस समय। आप ये सोचिए कि मेरा जो नाम दिविक रमेश है, ये दिविक वैसे ही वातावरण से आया था। हमारा एक सामूहिक संग्रह छपा था जिसका नाम दिविक था
1: जी।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय कविता, अब तक मैं रमेश शर्मा के नाम से लिखता था, और उसके बाद जो है दूसरा दिविक निकला था जिसका मैं संपादक भी हो गया था, उसमें मैं दिविक रमेश हो गया था। उन्हीं दिनों मुठियों बंद आकार, वो तो साहित्य जो सभा होती है यानी विभाग की, हिंदी विभाग की, उसी से निकला था वो संग्रह। और संपादक मंडल में एक मैं भी था रमेश शर्मा के नाम से, रामदास मिश्र जी थे और एक दो लोग थे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि वो ऐसा वातावरण था, कॉलेजों में कविता प्रतियोगिताएं होना, कहानी प्रतियोगिताएं होना, ऐसे संकलन निकलना, उन्होंने भी बहुत मदद की होगी कि हमारा जो रचनाकार रूप है वो आगे बढ़ता चला जाए। ये है संक्षेप में मैंने बताया आपको।
1: तो बाल, अब जिस तरह से आपने कहा, आपने कहा अपना पूरा सफर बताया, लेकिन जो बाल साहित्य की जिस तरह से आपने बात की कि आप आकाशवाणी के बच्चों के प्रोग्राम सुना करते थे, उसे आपको बहुत सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो बाल साहित्य लिखने की प्रेरणा आपको कैसे, आपने बाल साहित्य ही क्यों चुना जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, क्या कहेंगे?
0: देखिए, मैं तो बड़ों के लिए लिखता था पहले।

0: जी
1: से ना, और मेरा
0: जी
1: पहला जो संग्रह था वो रास्ते के बीच आया था, जिसके लिए कविताओं का चयन जो है वो शमशेर बहादुर सिंह जी ने किया था। और इस संग्रह के आने के पीछे भी आकाशवाणी का बहुत योगदान है।
0: अरे वाह,
1: वो यूं कि आप जब देखिए उस समय शायद गिरिजाकुमार माथुर जी थे आकाशवाणी
0: जी
1: में
0: जी
1: और वो प्रयोग करते थे, कम से कम दो कार्यक्रम तो मुझे याद आ रहे हैं। यूं समझिए कि मावलंकर हॉल में, इतना बड़ा हॉल,
0: पहले वहीं हुआ करते थे प्रोग्राम,
1: उसके सामने मतलब सबके दर्शकों के सामने जो है रिकॉर्डिंग होती थी।
0: जी
1: ऐसे ही शायद किसी एक आध जगह और ऐसे ही हुआ था।
0: जी
1: तो मैं तो बहुत युवा था, जुड़ा तो था मैं यहाँ युवाणी प्रोग्राम से, बराबर आता था लेकिन बहुत युवा था। तो पता नहीं कैसे मेरी कविताएं भी चुनी गई थीं वहाँ मावलंकर हॉल में सबके सामने सुनाने के लिए और वहीं रिकॉर्ड भी होनी थी। जब वो प्रोग्राम समाप्त हो गया तो जिन्होंने चुनी थी, जिनको ये दायित्व तो दिया गया था, उनमें एक अजित कुमार थे, एक शमशेर बहादुर सिंह जी थे।
0: जी
1: तो मुझे तब तक पता ही था कि शमशेर जी जिस दिल्ली के जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहीं वो भी रहते हैं। तो ऐसे ही मैंने उनको प्रणाम किया और जब कहा तो उन्होंने कहा, अरे भाई मुझे अच्छी लगी थी आपकी कविताएं, मैं देखता रहता हूँ छोटी पत्रिकाओं में काफ़ी छपती हैं, तो आप एक साथ सब कविताएं मुझे पढ़वाइए। और मैंने हाथ से लिखा करते थे हम, प्रतियां भी हाथ से ही बनाई जाती थी, दो दो तीन तीन बार, ऐसा कोई और तो था ही नहीं, ना कंप्यूटर था ना कुछ था। तो उनको मैंने दे दी, उन्होंने जब मैंने दी तो उन्होंने चयन किया, मुझे बहुत सारी चीजें समझाई भी और वो संकलन बना था रास्ते के बीच। और रास्ते के बीच पहला ही संकलन था जिसपे सोविट लैंड नेहरू अवार्ड मिला था मुझे।
0: अरे वाह, क्या बात, क्या बात,
1: आप ये देखिए। तो वो तब तक मैं बड़ों के पत्रिकाओं में भी खूब छपने लगा था, ये धर्मयुग वगैरह में, साप्ताहिक हिंदुस्तान, आपको ध्यान होगा, कादंबरी वगैरह।
0: बिल्कुल,
1: तो छोटी पत्रिकाओं से आया मैं लेकिन बड़ी पत्रिकाओं में भी मेरी पहुंच हो चुकी थी। और रास्ते के बीच निकलने के बाद तो एकदम से
0: बिल्कुल हो
1: गया, ऐसा हुआ कि मैं क्या कहूँ, बहुत हाथों हाथ लिया गया।
0: क्या बात,
1: आप यानी केदारनाथ अग्रवाल जैसे कवि ने उस समय की जो बहुत बड़ी मैगजीन थी अजमेर की, लहर से आती लहर, उसमें लगभग 15-20 पृष्ठ का लेख लिखा था
0: उस
1: एक संग्रह पर,
0: आपके संग्रह पर, क्या बात, वाह,
1: केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा।
0: जी,
1: और वो उनकी पुस्तक है विवेक विवेचन, उसमें आज भी आप पढ़ सकते हैं। तो कहने मतलब ये कि ऐसा वातावरण था। ऐसे में जो है, जो मैंने पहले लिखा था बचपन में वो तो एक तरफ हो गया,
0: एक तरफ हो गया, जी बिल्कुल,
1: तो मैं तो इधर ही बढ़ रहा था। तो ऐसे में जो है ना, एक सज्जन मुझे मिले, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है। वो लंदन से जुड़े हुए थे, देवेंद्र कुमार
0: जी,
1: उनको भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है और बड़े अच्छे कथाकार और कवि रहे हैं। उन्होंने एक तरह से मुझे चुनौती दी, उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए लिखिए, नंदन के लिए लिखिए और हम आपको बहुत और भी अधिक प्रसिद्ध करेंगे
0: जी।
1: और मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया। लेकिन मैं जो सोचता था बड़ा आसान है बाल साहित्य लिखना, मुझे पसीने छोड़ गए।
0: अरे
1: 6 महीने तक मैं ठीक ठाक नहीं लिख पाया। मैं सोचता था बड़ा आसान है, जब मर्जी लिख लो, लेकिन जो मुझे भी संतोष दे सके और मेरे पाठक को भी, ऐसा लिखने में मुझे बहुत बाधाएं आई। खैर 6 महीने बाद जो है कुछ कविताएं लिखी गई जो मैंने धर्मयुग में छपता ही था वहाँ ही भेजी, लंदन में भी 6 भेजी। और धर्मयुग में मेरी कविता जो है मुन्ना बन बैठा दादा जब, 12 फरवरी 1978 के अंक में छप गई, यानी वो छपने वाली पहली कविता थी।
0: पहली कविता थी आप।
1: और मेरी पहली कविता जो है पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में ले ली गई।
0: वाह, क्या बात,
1: वहीं से,
0: वाह वाह।
1: तो एक तो ये समझिए कि मुझे बचपन में जो प्रोत्साहन मिला नाना जी से,
0: बिल्कुल
1: एक इस तरह के जो प्रोत्साहन मिले,
0: वाकई वाकई,
1: चौकीदार जी ने दिया हो, चाहे शमशेर जी ने दिया हो,
0: अपने आप में पुरस्कार है, प्रोत्साहन तो है ही, पुरस्कार है।

अभी आप सुन रहे थे हमारे अतिथि कार्यक्रम में डॉक्टर दिविक रमेश, साहित्यकार और साहित्य अकादमी से सम्मानित, से भेंट वार्ता भेंट करता थी प्रस्तुत भेंट करता और प्रस्तुति काजल सूरी की थी। ये पहली कड़ी थी और ये आपने कार्यक्रम जो है हमारे अतिथि सुना आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को है। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम मिट्टी दी में है।

جنجونون راهشی راز برایم تو دوره هی کله نازنین ده بلوره

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना ही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत हर रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे, साथ ही विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति कल कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। मंगलवार को वे दक्षिण ओडिशा में तप्त पानी के पास मां कांधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर केरलम में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग

0: विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर के साथ ही अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल लेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of the Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Mr. Modi said that weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country are participating in the event. The participants include My Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. President Draupadi Murmu flagged off a run PBG Soldier-a-thon at a ceremony held at the forecourt of the Rashtrapati Bhavan this morning. Governor of Mizoram General V.K. Singh, who is the patron of the initiative, was also present on the occasion. In a social media post, the president said that the Soldier-a-thon serves as a unique platform to strengthen the bond between civilians and the armed forces, guided by the vision of Run for Soldiers, Run with Soldiers. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has reviewed the preparedness for the National Eligibility Cum Entrance Test for the postgraduate 2026 to ensure a smooth, secure, transparent and technology-enabled conduct of the examination. The exam is scheduled to be held on the 30th of this month. Union Minister of Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandviya today participated in the 84th edition of the Sundays on Cycle in New Delhi. The event was organized at the Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi, bringing together students, fitness enthusiasts, cyclists, families and young NCC cadets in support of the Nasha Mukt Bharat initiative. In a social media post, Dr. Mandviya said that the event was dedicated to the upcoming 79th Independence Day and with the resolve for a drug-free India. Indian Ambassador to the US Vinay Mohan Quatra has stressed that Pakistan must first dismantle the terror infrastructure that it has built if it wants India's cooperation on bilateral issues. Pakistan had recently convened a conference in Islamabad to protect India's decision to hold the Indus Waters Treaty in abeyance. In an article, Mr. Quad

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी बहनों को
1: राम राम और साथ ही साथ नमस्कार
0: नमस्कार। और यमुना, क्या आज खास लेकर आई हो कार्यक्रम में? क्योंकि जब भी हम आएंगे तो हमारी बहनों को एक आस बनती है कि भाई देखें ये आज हमारे लिए क्या खास लाई हैं।
1: बिल्कुल कमलेश, एकदम सही कह रही हो। कार्यक्रम आपका है और आपके लिए है। आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और साथ ही अपने परिवार की बगिया को इस सावन में, सावन मास में भक्ति भाव के साथ, प्रेम मनुहार के साथ हरा भरा बनाए रखें, बस यही कामना है हमारी।
0: बिल्कुल, और ये कामना तो देखो हर बहन करती है, क्योंकि जैसे ही सावन सुन भी लेते हैं और एकदम ही लगता है भी कल से सावन का त्यौहार शुरू होने वाला है, तो अलग ही उत्साह, अलग ही उमंग हमारे हृदय में, हमारे मतलब ये सोचो कि पूरे वातावरण में गूंज सी जाती है। सबसे पहले छोटे बच्चे भी होते हैं, वो भी कहते हैं हम भी जाएंगे शिव पर जल चढ़ाने, और माएँ भी कहेंगी कि हाँ भाई तुम भी जरूर जाना, क्योंकि जब तुम अब सीखोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि सावन के महीने का क्या महत्व है।
1: और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये माह होता है ना, बहुत लोगों की कुछ चाहत होती है, वो कुंवारी कन्याओं की अगर वर की चाहत हो या किसी को अपने करियर में राह बनाने की, आसान करने की बात हो, तो कहते हैं शिव होली की महिमा बहुत अपार है, उनकी पूजा करने से, उनके सामने नतमस्तक होने से वो बहुत ही हमारा भला करते हैं। और ख़ास करके एक बात और है, सुहागिने सावन मास में अपने सुहाग को अमर बनाने के लिए, हमेशा अच्छा सुख समृद्धि से भरपूर रखने के लिए भी शिव के महिमा का गुणगान करती हैं।
0: बिल्कुल, और मैंने तो ये भी देखा है कि ये सावन के पहले दिन से ही बहनों ने जो है अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली हैं, कुछ ने लाल, हरी और पीली, इन तीनों का जो है ना कॉम्बो बनाकर वो पहना हुआ है, तो उसमें खनकती हुई चूड़ियाँ सच में बड़ी अच्छी लगती है। जब सुबह जल अर्पित करने के लिए जाओ और जब ऐसे मतलब सज धज कर बहने जाते हैं तो सच में वो नज़ारा ना बहुत ही अच्छा होता है। और सबसे बढ़िया बात ये कि इस बहाने हमें वार त्योहारों का पता चलता है, हमारे जो सांस्कृतिक महत्व है उसके बारे में पता चलता है, और साथ ही साथ जो आस पड़ोस में एक अपना परंपराएं कैसी हैं। मान लीजिए कि हमारे घर में हमें पता है कि सावन का क्या महत्व है, लेकिन आपको नहीं पता, देखा देखी फिर वो भी हमसे पूछ

0: कि भाई आप इतना सब कुछ कह रहे हैं तो इसका महत्व क्या है?
1: महत्व की भी बात कर लेते हैं। तो जो हमारा धार्मिक और जो पौराणिक महत्व है उसकी हम बात करें तो पुराणों के अनुसार सावन मास का महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि इसी माह पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी।
0: अच्छा, तभी जो आपने बोला कि जो कुंवारी कन्याएं हैं या जिनके शादी हो चुकी है वो शिव के उपासना जो वो इसीलिए करती हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक प्रसंग मुझे भी पता है, वो जो समुद्र मंथन का प्रसंग था, क्योंकि सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और जिसमें निकला था हलाहल विष, तो शिव जी ने अपने कंठ में उनको धारण किया था, इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। और उनकी पूजा का जो ताप है वो शांत करने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया जाता है और दूध भी चढ़ाया जाता है। और हमारे गांव में कुछ जगह ये भी परंपरा है कि इस सावन के महीने में वो जो दूध है ना वो नहीं पीते हैं। वो कहते हैं कि जो हरा चारा होता है उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कोई विषैले पदार्थ चले गए हों और वो गाय भैंस के अंदर आ जाएंगे, फिर वो दूध के अंदर आएंगे, जो उस दूध को पिएगा तो बीमार हो जाएगा। तो कुछ बहनें इस पूरे महीने जो है दूध का त्याग कर देती हैं।
1: तो ऐसी कुछ पौराणिक मान्यताएं और कुछ हमारी किंवदंतियां और कुछ हमारी बड़ों बुजुर्गों के द्वारा बनाई गई कुछ बातें, वो सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं हमारे इस सम्मिलित रहती हैं हमारे जो बातचीत का विषय होता है। और ख़ास करके अगर कहें तो हमारी जीवन की जो दिनचर्या है उसमें हम सारी चीज़ों को समाहित करके लेकर के हम चलते हैं। तो भक्ति भाव में डूबने की बात है कमलेश, और शिव की महिमा की बात है। सावन का मास चल रहा है तो भक्ति भाव में अपनी श्रोताओं को भी हम थोड़ा सा सराबोर करते हैं।
0: ठीक है।

0: माँ की ममता, माँ का प्यार, शिशु का पहला सच्चा उपहार।
1: बिल्कुल, और माँ का दूध अमृत समान, इनसे खिलता हर नन्हा प्राण। तो माँ की ममता की बात करें और उनके दुग्ध की बात करें, तो माँ के दूध के बिना बच्चा तो अधूरा होता है।
0: बिल्कुल, और ये बात आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाएगा विश्व स्तनपान सप्ताह। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम पोषण है, सबको मालूम है, और बार बार हम भी बताते हैं और जो हमारे बुज़ुर्ग बहने हैं वो भी समय समय पर बेटियों को समझाते हैं कि भाई जो माँ का दूध है वो हमारे बच्चे के लिए कितना ज़रूरी होता है।
1: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कमलेश की, आज की जनरेशन की हम बात करें तो थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बनी होती है कि अपना दूध हम क्यों पिलाएं। और सच कहें तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो माँ के दूध पीने से बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और बच्चे में आप ये समझ लो संपूर्ण विकास होता है। बहुत जल्दी बच्चा ग्रोथ करता है, बहुत जल्दी उसके शारीरिक विकास होते हैं, मानसिक विकास होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो हमारा ये माँ का और बच्चे का जो संबंध है, वो खास करके दूध पिलाने से लेकर के है, तो ये बहुत ही आत्मीयता का, बहुत ही मतलब एक सुकून पहुँचाने वाला पल होता है, इसे समझना होगा।
0: ये देखो ना कि जब एक माँ अपने शिशु को अपने छाती से लगा कर रखती
1: हाँ
0: है तो उसमें कितना उसको बल मिलता है, और जो उसका संक्रमण होता है वो भी कम होता है। और जब हम बात करें माँ के बारे में, तो माँ भी जब बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको रिकवरी में भी उसको भी आसानी होती है, और उसके भी कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो जब बच्चा दूध पीता है तो उसकी वजह से उसकी वो बीमारियाँ कम हो जाती हैं और उसके स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे जो है वो सुधार आता चला जाता है।
1: मतलब कुल मिला के माँ की बीमारियों का जो अगर देखा जाए तो जोखिम वो भी कम हो जाता है, स्वास्थ्य में सुधार भी होता है, खास करके बच्चे के विकास को लेके बहुत ही लाभदायक होता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो अपने जीवन में लाना है, बहुत ज़रूरी है। जो सोचते हैं कि नहीं ऐसा करने से हमारा क्या कहते हैं कि यौवन अवस्था
0: हमारा
1: रट जाएगा,
0: फिगर नहीं, हमारा
1: फिगर
0: फिगर
1: फिगर खराब हो जाएगा,
0: फिगर
1: सही
0: खराब हो
1: शब्दों में
0: जाएगा।
1: कहें तो। इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहें और समझें इस चीज़ को कि माँ के दूध के द्वारा बच्चे का विकास कैसे हो
0: पर
1: सकता
0: ये
1: है।
0: देखो ना, जब आजकल भी या पहले भी जब कोई भी बच्चा एक दूसरे से लड़ता था तो कहते हैं अच्छा तूने माँ का दूध पिया है तो आ जा रहा मैदान में। तो जो ये मुहावरे भी बने हैं तो ऐसे
1: हाँ
0: थोड़ी बन गई हम
1: बिल्कुल
0: ना कुछ तो इनके पीछे कारण रहा होगा ना, और
1: नहीं,
0: भी
1: ये
0: उन्होंने
1: तो
0: भी तो दूध पिया है
1: अरे
0: ना।
1: सबसे बड़ी बात ये कमलेश, आप देखो ना अपने आसपास में देखो कि जो बच्चा, आप कभी किसी जानवर के बच्चे को लेके देख लो,
0: बिल्कुल
1: अगर कहीं कोई पड़ा है उसे आप ला करके आप उसे बोतल से दूध पिला के बड़ा कर रहे हैं, उसके स्वास्थ्य को देख लो। और जो माँ का दूध पाया है, जो माँ के तन से लग करके दूध को पिया है, आप उसकी ताकत को देख लो। तो दोनों के विकास में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। तो ऐसे में देखा जाए तो सच कहें तो माँ का दूध बहुत ही लाभदायक है। आप उनसे उनको वंचित ना करें, और जितना हो सके 6 महीने, साल भर, 2 साल, पहले तो लोग 3-3 साल तक बच्चों को पिलाते थे, स्कूल पढ़ने जाते तब भी पी
0: पांच
1: देते थे,
0: पांच
1: पांच पांच साल
0: साल
1: तक पढ़ाते थे।
0: तक और
1: तो
0: कहते
1: ये
0: बड़ा
1: चीज,
0: मुश्किल होता था। और कई
1: हाँ
0: बार जो है हमारे जो बुजुर्ग बहनें बताती हैं अरे इसकी इसकी बात छोड़ ये बस्ता फेंक के, और ये बोलता था कि मुझे पहले दूध पीना
1: पिला
0: है।
1: दो।
0: और ऐसे ऐसे जब हम बातें सुनते तब लगता है कि तभी हम देखो हमारे समय में और आपके समय में ये सब चीज़ें चलती आ रही है, लेकिन अब जब हम युवा पीढ़ी को देखते हैं हो सकता है कुछ बहनों को बुरा भी लग रहा हो कि भाई हम यहाँ पर बैठ कर और उनको ये चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन हम सही तो बता रहे हैं। ये देखो ना कि जो ईश्वर ने इतने अच्छा गुणवत्ता वाला आपको दूध दिया हुआ है और उसको जब शिशु को पिलाना है तो उसको वंचित क्यों कर रही हो।
1: एक एक कारण और है उसमें, एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी माओं को शिकायत भी होती है कि हमें दूध आता ही नहीं, उतरता ही नहीं, उसके पीछे कारण है। कहते हैं ना कि जैसे सतावर है और जो मेवे होते हैं, पीपल होता है, इन सारी चीज़ों का जब मसाला बना करके मतलब जब बच्चा जन्म दे देता है और बना के जब पिलाया जाता है, तो अपने

0: ना बहुत सारे दूध आ जाते हैं, सतावर वगैरह जो है वो दूध का काम करता है, जड़ी होती है हमारी। तो पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने लोग खाते पीते थे, अगर वो देखा जाए आज की जनरेशन में भी है, आप उसे यूज करिए, आप में भी स्तनपान कराने की पूरी क्षमता डेवलप होगी और
1: बिल्कुल
0: आप मतलब स्वस्थ रहेंगी। सबसे बड़ी बात है आप हल्का महसूस करेंगी अपने स्वास्थ्य से, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो ये थोड़ी सी समझने की बात है, थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, समझना चाहिए, और किसी बातों को बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं है कमलेश।
1: बिल्कुल। और जो इस बार की थीम रखी गई है वो रखी है जीवन की सतत शुरुआत के लिए स्तनपान जो प्रभावी है उसे और मजबूत बनाएं।
0: बिल्कुल मजबूत बनाएंगे। और माँ का दूध जब कोई पीता है, और माँ जब कुछ कहती है तो कुछ इस तरीके से कहती है,

0: कमलेश, सावन का मास जब आता है तो इसमें बहुत से लोग पर्व हैं, झूला पड़ते हैं, कजरी गाई जाती है, वर्षा के गीत गाए जाते हैं, और ग्रामीण महिलाओं की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो भी उभर कर सामने आती हैं।
1: ये तो है ही। और जब आप ये वाली बात कह रही हो तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना अपनी बहनों को एक वार्ता ही सुनवा दूं। और वार्ता है सावन की लोक पर्व और ग्रामीण महिलाओं के सांस्कृतिक परंपराएं। और इसके वार्ताकार हैं सुमन वर्मा, जो शिक्षिका हैं। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।

रे आया सावन झूम के। चारों तरफ की हरियाली और रिमझिम बरसती बूंदे संकेत दे रही है कि सावन आ गया है। सबको मस्ती से भरने, सब में भक्ति रमाने, भागा भागा सावन आ चुका है और अपने साथ लाया है ढेरों त्योहार, ढेरों खुशियाँ। कोई सोलह सिंगार कर रहा है, कोई भक्ति रस में डूबकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने कंधे पर गंगा जल भर अपने प्यारे शिव को जल अर्पित कर रहा है। चारों तरफ मस्ती और भक्ति को फैलाने वाला सावन का महीना साढ़ महीने का अंत होता है। लोग भीषण गर्मी से व्याकुल थे और जैसे ही सावन की झड़ी लगी और चारों तरफ हरियाली फैली तो लोग भी मस्ती से भर गए और गाने लगे सावन।

मोर। श्रोताओं, भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ जहाँ खान पान, बोली, पोशाक में विभिन्नताएं देखने को मिलती है, वहीं यहाँ त्योहारों में भी विभिन्नताओं के दर्शन होते हैं। कभी फसल बोते समय त्योहार, कभी फसल काटते समय त्योहार, कभी गर्मी समाप्त होने पर त्योहार, कभी सर्दी शुरू होने पर त्योहार, किसी के आने की खुशी में त्योहार। ऐसा ही हमारे देसी महीनों में एक महीना आता है, सावन का महीना, जब साढ़ मास की भीषण गर्मी से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है। इंद्र देवता धरती पर अपनी मेहरबानियां करते हुए दिखते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। लोग चित्त से प्रसन्न झूम झूम कर सावन के महीने में पूरी मस्ती करते हैं, क्योंकि एक तो इंद्र देवता ने धरती की प्यास बुझा दी है और चारों तरफ हरियाली बिखेर दी है। ऐसे मस्त माहौल में लोगों का मन खुशियों से भरा हुआ है। ऐसे में वे कभी कावड़ लाकर शिवजी पर जल चढ़ाकर भगवान का धन्यवाद करते हैं, कभी बहन बेटियों का मान सम्मान करने के लिए मिठाइयाँ, फल, वस्त्र भेंट स्वरूप देते हैं, ताकि बहन बेटियों का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहे और घर में बरकत होती रहे। वैसे तो भारत में प्रत्येक माह में मनाए जाने वाले प्रत्येक पर्व का अपना महत्व होता है, लेकिन सावन माह में आने वाले विभिन्न पर्वों का स्त्रियों के लिए, चाहे वह पत्नी हो, बहन हो या बेटी हो, का अपना अलग ही महत्व होता है। सावन के महीने में सबसे ज्यादा स्त्रियों में मस्ती देखी जाती है। चारों तरफ भक्ति और मस्ती का माहौल होता है। लोग गंगा जल से भगवान शिव को नहला रहे होते हैं। कई कई मील पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं और शिव को स्नान कराते हैं। स्त्रियां सावन के महीने में खूब सज धज कर, पूरी मस्त होकर, हरी हरी चूड़िया पहनकर इस त्योहार को कभी झूला झूलकर, कभी गीत गाकर मनाती है। सावन के महीने को त्योहारों का महीना कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस महीने का महिलाओं का जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, वह है हरियाली तीज। हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन और प्रकृति के स्वागत का पावन पर्व है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कई जन्मों तक कठोर तपस्या की। सावन की इस तृतीया तिथि पर शिवजी ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से यह त्योहार कुंवारी और सुहागन स्त्रियां बड़ी धूमधाम से मनाती है। इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके माता पार्वती की पूजा करती है और माता से प्रार्थना करती है कि उनका सुहाग अमर हो, उन्हें भी अपने पति का प्यार वैसे ही प्राप्त हो जैसे भगवान शिव माता पार्वती को करते हैं। कुंवारी लड़कियों की इच्छा यही होती है कि माता पार्वती उन्हें भी शिवजी जैसा वर प्राप्त होने का आशीर्वाद दे। सुहावने समय सभी स्त्रियां एकत्र होकर झूला झूलती है और सावन के गीत गाती है। तीज के पहले दिन सिंधारे होते हैं, जिसमें घर के बड़े बुजुर्ग

घर की बहू बेटियों को उपहार मिठाइयाँ देते हैं, उनके लाड़ लड़ाते हैं। सावन महीने में तो त्योहारों की लड़ी सी लगी होती है। सावन का एक प्रमुख त्योहार है नाग पंचमी। जैसा कि विदित है कि सावन के महीने में झमाझम बरसात होती है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है, लेकिन इसके साथ ही धरती के गर्भ में रहने वाले जीवों के बिल में पानी भर जाता है। अब वे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। साथ ही साथ चारों तरफ घास बड़ी बड़ी होती है। लोगों में भी भय होता है कि कहीं नाग देवता उन्हें या उनके परिवार को हानि ना पहुंचा दे। अतः वे पूरी लगन वे मन से नाग देवता की पूजा करते हैं, उन्हें दूध का भोग लगाते हैं और उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि नाग देवता उन पर व उनके परिवार पर कृपा बनाए रखे। सावन के महीने में लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। लोग कई कई मील पैदल चलकर गंगोत्री से गंगा जल लेकर आते हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत रखकर भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हैं। लोग सुबह नहा धोकर शिव जी भगवान को जल अभिषेक करते हैं और पूरे दिन निराहार रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव धरती पर प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, उनको वरदान देते हैं। इस पर्व का बहुत महत्व है। लोगों में असीम भक्ति देखने को मिलती है। घर में युवा बड़े औरतें कई कई मील पैदल चलकर गंगा जल भर कर लाती है और शिव जी भगवान को चढ़ाते हैं। जिस घर में कावड़ लाई जाती है वहां तो एक समारोह का आयोजन किया जाता है। घर में रिश्तेदार बहन बेटियां आमंत्रित की जाती है। बहन बेटियां आकर कावड़ की पूजा करती है, तत्पश्चात जल शिव जी पर चढ़ाया जाता है। सावन मास में त्योहारों का आना लगा रहता है, लेकिन भाई बहनों के पर्व रक्षाबंधन की अपनी अलग ही विशेषता है। रक्षाबंधन का पर्व सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई भेंट स्वरूप उन्हें पैसे देते हैं। भाई बहन का यह पर्व सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। बहनें शादी के बाद सावन मास की पूर्णिमा को बड़ी सज धज कर अपने भाई के घर आती है और राखी उसकी कलाई पर बांधकर उससे रक्षा का वचन लेती है। राखी के रूप में वह अपने भाई के हाथ पर रक्षा का धागा बांधती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके भाई की आयु चांद तारों से भी ज्यादा हो। इस प्रकार सावन के महीने में जहाँ अनेक त्योहार आते हैं, वहीं स्त्रियां जब सज धज कर इस त्योहार को मनाती है तो त्योहारों में चार चांद लग जाते हैं। वास्तव में यह त्योहार हमारी सांस्कृतिक परंपरा को संजोए हुए है। जब हम हमारे धार्मिक ग्रंथ विष्णु पुराण को पढ़ते हैं तो उसमें भी रक्षाबंधन का वर्णन मिलता है। ऐसी धार्मिक कथा का वर्णन हमारे पूर्वजों से सुनने को मिला है कि राखी का महत्व तो देवी देवताओं ने भी जाना है। प्राचीन समय में भगवान विष्णु के पाताल लोक चले जाने से माता लक्ष्मी और सभी देवता बहुत चिंतित हुए। तब माँ लक्ष्मी ने गरीब स्त्री के वेश में पाताल लोक जाकर बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु से वो वहां से वापस ले जाने का वचन मांगा, तो बलि ने विष्णु भगवान को छोड़ दिया, क्योंकि माता लक्ष्मी अब उनकी बहन बन चुकी थी और बहन की खुशी के लिए भाई कुछ भी कर सकता है। वास्तव में देखा जाए तो रक्षाबंधन के समय बहनें जो भाई की कलाई पर धागा बांधती है उसमें एक अद्भुत शक्ति छिपी रहती है। उसमें एक ऐसा विश्वास, ऐसी ताकत होती है कि ऐसा लगता है कि बहन अपनी पूरी भावना को उसमें समेट देती है और मन में यह दृढ़ विश्वास करके अपने भाई के हाथ पर धागा बांधती है कि अब मेरे भाई का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भारत में जितने भी रिश्ते होते हैं उनका अपना एक विशेष अर्थ होता है। कोई भी रिश्ता अर्थहीन नहीं है और भाई बहन का रिश्ता तो पूरी तरह से भावनात्मक रिश्ता होता है। भाई का तो अर्थ ही होता है कि जो हमारे मन को भा जाए और बहन का अर्थ होता है जो भावनाओं में बह जाए। इस प्रकार संसार का सबसे पवित्र और भावनात्मक रिश्ता भाई बहन का होता है। कोई ना कोई त्योहार अपने पीछे कोई ना कोई कथा, कोई ना कोई उसका महत्व रखे हुए होता है। सावन का महीना

ये एक ऐसा ही महीना है जिसमें त्योहार आते हैं और प्रत्येक त्योहार कोई ना कोई अपने पीछे कथा लाता है। सावन के महीने में जहाँ बहनें पत्नी अपने पति की अपने भाई की लंबी आयु के लिए भक्ति में डूब जाती है और भगवान से बस यही कामना करती है कि गोरी

बन जाए, ओ ऐसी जोड़ी बन जाए। प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए। हाँ।

0: हो जाए, अमर ये रीत हो जाए, तोड़े से न टूटे, छोड़े से ना टूटे, ऐसे बंध जाए पिया का प्यार मिल जाए, पिया का प्यार मिल जाए।
1: सावन की लोक पर्व और ग्रामीण महिलाओं की सांस्कृतिक परंपराएं, इस विषय पर जानकारी दे रही थी सुमन वर्मा, जो कि बतौर शिक्षिका कार्यरत हैं गुरुग्राम में। और बहुत ही तरीके से इन्होंने बताया कि हमारा जो ये सावन है, ये सावन का क्या महत्व है और लोक परंपराओं में कैसे लेकर के हम चलते हैं। लेकिन कुछ गीत संगीत की जब बात आती है कमलेश, तो हमारा भी मन करता है
2: हम
1: गुनगुनाने
2: भी
1: को।
2: गाएं, गुनगुनाएं, अपने बहनों को बताएं कि हमें भी थोड़ा थोड़ा गाना आता है।

0: और जब चल रही है बात सावन माह की, तो सावन में कुछ जो बहनें खाली सोमवार के व्रत रखती हैं, और कुछ ऐसी बहनें जो पूरा महीना व्रत रखती हैं,
1: क्या
0: कुछ
1: बात
0: ऐसी
1: है।
0: बहनें जो केवल एक समय पर खाना खाती हैं। ये तीनों मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं ये अपने अड़ोस पड़ोस में देखती हुई आ रही हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि भाई आपका शरीर आपको क्या कहता है। हमने तो बता दिया, दूसरी बहनों ने भी हमें बता दिया, लेकिन जितने हमारे शरीर की कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही हमें काम करना है ना।
1: एक बात कही गई है ना कमलेश, यथाशक्ति तथा भक्ति।
0: बिल्कुल
1: तो जितना शरीर साथ दे उतना ही करना है। मन के भाव अच्छे हों, मानवता की सेवा करने के अपने मन में भाव हो, तो सारी पूजा फलित हो जाते हैं।
0: बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यही बोलते हैं कि भैया हम तो जो है पूजा पाठ अपने घर पर बैठकर ही करते हैं, और इस समय जो है घेवर की जब बात करें तो बिना घेवर तो सावन का महीना लगता है कि है ही नहीं, मतलब अधूरा ही है। क्योंकि इस समय में जो घेवर हम खाते हैं ना, उसका एक और भी महत्व है, और उसका ये महत्व है कि जब मीठे का कुछ दिल करता है और घेवर इस समय पे खाया जाता है, तो हमारी जो है पाचन शक्ति है ना, उसको वो सुधारता है। भाई ये मैं नहीं कह रही, हमारे बुजुर्गों ने बताया तो मैंने बता दिया।
1: मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस माह में खाने चाहिए, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस माह में नहीं।

0: खाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जैसे सावन में साग और भादो में
1: दही
0: दही
1: नहीं खाना
0: नहीं
1: चाहिए,
0: खाना चाहिए,
1: और
0: कढ़ी नहीं खाना चाहिए,
1: यही है कढ़ी भी नहीं बनती
0: पस्ता नहीं है, वो थोड़ा सा सुपाच्य नहीं हो पाता है, तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए।
1: और जो बहनें जैसे व्रत रखती हैं तो साबुदाने की खिचड़ी बना लेती हैं, या भाई और मखाना जो है मखाने की खीर बन जाती है, या मखाना जो है वो पूरा भून कर बच्चों को भी खिलाती हैं, खुद भी खाती हैं, तो इससे क्या होता है मखाना हमारी हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा, इस समय भी एक और चीज़ हमारे गाँव में बनती है, वो होती है सुहाली, जिसमें आटा होता है, गुड़ और तेल में ये बनाई जाती है, और बड़ी ही ये पौष्टिक होती है। और जब हमारे सीधे आते हैं तो उसमें बताशे जो हैं, बड़े बड़े बताशे होते हैं, वो जरूर आते हैं। बिना बताशे के लगता है कि हमारी सिंधारा कोथली आई नहीं है,
0: आई नहीं है। तो ऐसे ही देखा जाए सावन मास में थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए अपने आप को, खास करके जब साग की बात होती है तो उसमें कीड़े होते हैं बरसात में, तो उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और कहते हैं ना जब ये बरसात होती है तो थोड़ा बहुत फलों में कीड़े आ जाते हैं, तो विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए खाते वक्त कि क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है, और क्या हमारे शरीर के लिए ज़्यादा बेहतर है।
1: बिल्कुल, तो हल्का सुपाच्य और सात्विक भोजन लें और हमेशा स्वस्थ रहें,
0: स्वस्थ रहें और सावन का आनंद उठाएं।

और जब हम योजना की बात करते हैं अपनी बहनों के लिए, जब ये सब जानकारी लेकर आते हैं, तो आज हम बता रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो कि एक वार्षिक ब्याज योजना होती है बच्चियों के लिए है, और इसमें 8% से अधिक जो है वो ब्याज मिलता है। ये सरकारी बचत योजना है यमुना, और न्यूनतम

0: में 250 रुपये और अधिकतम जो है 1.5 लाख तक जो है वो साल के हम जमा करा सकते हैं।
1: बच्ची जैसे जन्म लेती है कमलेश, तैसे ही इसका ध्यान कर लेना चाहिए कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो है खाता खुलवा दें उसका हम, और 10 वर्ष तक की बच्ची हो जाती है तो तभी आप कर सकते हैं 1 से 10 वर्ष तक की बच्ची का। और जो इसका प्रीमियम होता है वो आप 250 रुपये न्यूनतम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सालाना 1.5 लाख रुपये आप जमा कर सकते हैं। और ब्याज दर की जैसे आपने बात की तो सबसे ज़्यादा ब्याज दर इस पर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है इस खाता खोलने का कि इसमें जो बच्ची होती है जब वो पढ़ाई कर रही होती है और 10वीं क्लास में होती है तो उसे शिक्षा आगे प्राप्त करने के लिए 50% का आप पैसा निकाल भी सकते हैं। 18 वर्ष की हो गई तो वो निकाल सकती है, वैसे भी ये दोनों चांस होते हैं उसके पास।
0: और जब हम बात करें भारत की वीरांगना क्रम में तो आज हम बात करेंगे रानी वेलु नाचियार के बारे में। ये भारत की पहली ऐसी रानी थी जिन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध संगठित होकर युद्ध किया था और अपने राज्य को प्राप्त किया था। उनको वीर बंगई यानी बहादुर महिला के नाम से जाना जाता है।
1: और उन्होंने, सच कहें तो उन्होंने बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी सब कुछ सीखा था और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए बहुत ही आगे बढ़ी और हैदर अली की सहायता से सेना तैयार की और अपना राज्य वापस लिया और 10 वर्षों तक बेहतरीन शासन भी किया। तो ऐसी वीरांगनाओं को नमन है, हमारे भारत की आन बान शान है वो।

और जो हम अपने कार्यक्रम में जब बात करते हैं हम ना, तो हर बार यही बताते हैं अपनी बहनों को, अपना ईमेल भी बताते हैं और अपना पता भी बताते हैं।

0: हैं, तो पहले मैं बता देती हूँ अपनी बहनों को ईमेल, हमारे कार्यक्रम का ईमेल है feedback@gmail.com।
1: और जो हमारा पता है वो नोट कर ले, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली, पिन कोड है 110001।
0: और हमेशा यही कहेंगे कि आप अपने विचार उस पर जरूर भेजें ताकि हमें भी पता चल जाए। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर
1: और कार्यक्रम के संयोजक हैं

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
1: कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल रहे। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अन्य 8 लापता हैं। प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों में फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदियों के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के चलते मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह भी दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरैस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक लेख में श्री क्वात्रा ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री की आलोचना की। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत को दोषी ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को अपनी जल उत्पादकता बढ़ानी चाहिए।

0: by Open Super Women's Singles title today. The 17-year-old Tanvi became the youngest Taipei Open champion, surpassing Taiwan's Tai Tzu Ying. She is also the first Indian woman to win the title since Saina Nehwal in 2008. At the Glasgow Commonwealth Games, India's medal hunt enters the final day, with judo and track cycling offering the last opportunities to add to the tally. Avtar Singh in the men's 100kg, Yash Ghangas in the men's plus 100kg, and Ishroop Narang in the women's 78kg category will lead India's judo challenge. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर. दोपहर के 1:10:17 हुए हैं. आइए सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से. नमस्कार दोस्तों, इंद्रप्रस्थ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है. मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से. इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह सुनाते हैं एक ऐसी फिल्म की कहानी जिसने भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई. फिल्म की दिलचस्प बातें, कलाकारों के अनसुने किस्से और फिल्म के यादगार गीत, सब कुछ एक ही प्रोग्राम में. आज की हमारी फिल्म है आज़ाद, जो साल 1955 में रिलीज हुई थी. ये फिल्म अपने दौर की सबसे सफल फिल्मों में गिनी जाती है. इसमें रोमांच है, हास्य है, प्रेम है, संगीत है और दिलीप कुमार की शानदार अदाकारी भी. इस फिल्म का निर्देशन किया था एसएम श्रीरामुलु नायडू ने. मुख्य भूमिकाओं में थे दिलीप कुमार, मीना कुमारी, प्राण, ओम प्रकाश तथा इनके साथ अन्य कलाकारों ने अपने अभिनय से फिल्म को यादगार बनाया. इस फिल्म का संगीत दिया था मशहूर संगीतकार सी रामचंद्र ने और गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने. इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इसने गंभीर अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले दिलीप कुमार का नया चुलबुला और हास्यपूर्ण रूप दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया. दर्शकों ने इस अंदाज को इतना पसंद किया कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. तो दोस्तों, अब सुनते हैं इस फिल्म का सदाबहार गीत. जिसे गाया है लता मंगेशकर ने.

इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं इस फिल्म की कहानी शॉर्ट में। कहानी एक ऐसे रहस्यमयी और बहादुर व्यक्ति की है जिसे लोग आज़ाद के नाम से जानते हैं। वो गरीबों का मददगार है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और अत्याचारी लोगों को सबक सिखाता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर ये आज़ाद कौन है, उसका असली नाम क्या है, कहाँ से आया है। यही रहस्य फिल्म को शुरू से अंत तक रोमांचक बनाए रखता है। दूसरी ओर कहानी में प्रवेश होता है एक चंचल, सुंदर और अमीर जमींदार की बेटी का, जिसकी भूमिका निभाई है मीना कुमारी ने। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि उसकी मुलाकात आज़ाद से होती है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। आगे क्या होता है ये जानेंगे इस खूबसूरत से गीत के बाद, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सी रामचंद्रन ने।

इस प्यारे से गीत के बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि मीना कुमारी, जो एक अमीर जमींदार की बेटी शोभा है, उसकी मुलाकात आज़ाद यानी दिलीप कुमार से होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। दूसरी ओर लालची और षड्यंत्रकारी लोग जमींदार की संपत्ति हड़पना चाहते हैं और आज़ाद उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। अपनी बुद्धिमानी, साहस और चतुराई से आज़ाद षड्यंत्रकारियों की हर चाल नाकाम कर देता है। अंत में उसकी असली पहचान सामने आती है, अपराधियों को सजा मिलती है और प्रेम की जीत होती है। फिल्म का समापन सुखद होता है, जिसमें न्याय और सच्चाई की विजय दिखाई जाती है। ये थी फिल्म की कहानी शॉर्ट में। तो आइए सुनते हैं फिल्म आज़ाद का अगला खूबसूरत गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की फिल्म है आज़ाद, और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर। प्रोग्राम जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए अपने पसंदीदा इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।
1: Hey girls! Hey, आज तो पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी।
5: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं फिल्म आज़ाद की, और आप इस फिल्म के प्यारे प्यारे गीतों का आनंद उठा रहे हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ip.radio.delhi@gmail.com। तो इस पर हमें मेल कर अपने प्रतिक्रिया हमको बता सकते हैं। हमें आपके मेल्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब चर्चा करते हैं इस फिल्म के कलाकारों के अभिनय की, उनकी अदाकारी की, जिसने इस फिल्म को अमर बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के हीरो दिलीप कुमार के अभिनय की। दिलीप कुमार को हिंदी सिनेमा का ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। उनकी गंभीर भूमिकाएं दर्शकों के दिलों को छू जाती थी। फिल्म आज़ाद में उन्होंने पहली बार अपने अभिनय का एक बिल्कुल अलग रूप दिखाया। उनकी चंचल मुस्कान, हल्का फुल्का हास्य, तेज संवाद, अदायगी और बेहतरीन स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को हैरान भी किया और खुश भी। यही वजह है कि ये फिल्म उनके करियर का एक अहम पड़ाव मानी जाती रही। और अब बात करते हैं फिल्म की नायिका मीना कुमारी की। मीना कुमारी अपनी भावपूर्ण आँखों और शानदार अभिनय के लिए जानी जाती थी। इस फिल्म में उन्होंने मासूमियत, शरारत और भावनाओं का ऐसा सुंदर संगम प्रस्तुत किया कि दर्शक उनके अभिनय के कायल हो गए। दोनों कलाकारों की जोड़ी ने पर्दे पर ऐसा जादू बिखेरा कि फिल्म आज भी याद की जाती है। तो आइए सुनते हैं फिल्म का अगला एक मधुर गीत, सिगाया है लता मंगेशकर ने।

इस मधुर गीत के बाद हम अपने श्रोताओं के कुछ संदेश शामिल कर लेते हैं जिनका उन्हें बेसब्री से इंतजार है। तो पहला संदेश हम लेना चाहेंगे, ये संदेश हमें मिला है सुर संगम रेडियो श्रोता संघ की तरफ से। इन्होंने लिखा है, प्रिय आरजे नंदा जी नमस्कार, फिल्म आज़ाद के सभी गाने लाजवाब हैं। तो इनको गाने बहुत पसंद आ रहे हैं इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है संदीप मक्कर जी का। इन्होंने भी हमें ये लिखकर सूचित किया है कि आज की फिल्म और उसके गाने इनको बहुत पसंद आ रहे हैं। और एक और संदेश हमें मिला है असलाम खान जी का। इन्होंने लिखा है, नमस्कार आदाब, आपको भी नमस्कार। और इनको भी हमारा प्रोग्राम आज पसंद आ रहा है और प्रोग्राम में सुनाए गए फिल्म के सभी गीत इनको बहुत पसंद आ रहे हैं। एक संदेश हमें मिला है धर्मेंद्र चिंपा जी का। फिल्म आज़ाद के बारे में बेहतरीन बातें बता रहे हैं, रोचक किस्से कहानी नगमे सुनवा रहे हैं, बेहतरीन प्रस्तुति, हम प्रोग्राम का आनंद उठा रहे हैं। ये मेल हमें भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से। और धर्मेंद्र चिप्पा जी के सभी परिवार ने हमें ये संदेश भेजा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल हम शामिल करते हैं नैना लमसे जी का, और इनके परिवार के सभी सदस्य ने हमें ये मेल भेजा है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी से। और इनको भी हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। और एक और मेल मैं शामिल करना चाहूँगी स्वरण सिंह जी का। और इनके सभी परिवार के सभी सदस्यों ने हमें ये मेल भेजा है गांव लोहागढ़ ठांकुरा वाला से। इनको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आ रहा है। एक दो मेल और मैं शामिल करना चाहूँगी, रोजी डे कैस्ट्रो ने भी हमें मेल भेजा है। ये इनके परिवार के और भी सदस्यों ने हमें ये मेल भेजा है, रोजी पर्ल जॉन और विलीस डी कैस्ट्रो। ये इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, नाइस सॉन्ग नाइस प्रोग्राम, थैंक यू, धन्यवाद आपका तहे दिल से, शुक्रिया। अगला मेल हमें मिला है निसार अली जी का। इनको भी हमारा आज की फिल्म आज़ाद और उससे उसके सभी गीत इन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं। ये मेल हमें मिला है घनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। तो हमें ये संदेश भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्रेम हमें दर्शाते रहिए अपने संदेशों के जरिए, हमें आपके संदेशों का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो अब चर्चा करते हैं फिल्म आज़ाद से जुड़े रोचक किस्सों की। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म आज़ाद 1954 की तमिल सुपरहिट फिल्म मलई कक्कलन का हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म के सभी गीत अपने समय में बहुत हिट रहे। संगीतकार सी रामचंद्र ने फिल्म को यादगार संगीत दिया। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही एक यादगार गीत।

मैं कुछ मेल शामिल करना चाहूँगी, कुछ संदेश शामिल करना चाहूँगी। ये संदेश हमें अभी मिला है राजकुमार डूडी जी का, गांव फरासी जिला हिसार से। राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी, इनको भी आज की फिल्म आज़ाद बहुत पसंद आ रही है और बहुत बढ़िया लग रहे हैं इनको गीत, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल हमें मिला है स्वरण सिंह जी का और इनके परिवार के सभी सदस्य। और एक और मेल हमें अभी अभी मिला है नैना लमसे जी का और इनके परिवार के सभी सदस्यों को भी ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। और एक और मेल मैं शामिल करना चाहूँगी प्रकाश वर्मा जी का, मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और शानदार प्रस्तुति के लिए इन्होंने बधाई दी है, आपका बधाई हम स्वीकार करते हैं, धन्यवाद। ये मेल हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने हमें ये मेल भेजा है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।

आज़ाद एक ऐसी ही अमर फिल्म है जिसका जिसको लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्रेम दिया। तो दोस्तों, आज का ये सुनहरा फिल्मी कारवां यहीं ठहरता है, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात। फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो हमें अपने दौर से मिलवाती हैं, उन कलाकारों से मिलवाती हैं जिन्होंने अपने हुनर से लाखों दिलों में जगह बनाई, और उन गीतों से मिलवाती हैं जो समय की धूल झाड़कर आज भी हमारी यादों में गुनगुनाते रहते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अपनी दोस्त नंदा इस्सर को अनुमति दीजिए। नमस्कार, और अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली विच विकसित भारत लई नशा मुक्त युवा संकल्प मुहिम की शुरुआत की है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि नौजवानों को नशे तो दूर रहना चाहिए ते एक सेहतमंद जीवन शैली अपनानी चाहिए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सवेरे राष्ट्रपति भवन विखे एक समारोह विच प्रेजिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर थन दिल्ली 2026 नूं हरी झंडी विखा के रवाना किया। अमरीका विच भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि जेकर पाकिस्तान आपसी मुद्दों से भारत का सहयोग चाहता है तो उस नूं पहला अपने दहशतगर्दी ढांचे नूं तबाह करना होगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान खिलाफ तजवीजशुदा फौजी हमले नूं मुलतवी करने का फैसला किया है। बैडमिंटन च भारत की तन्वी शर्मा ने ताइपी ओपन सुपर खिताब जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली विच विकसित भारत लई नशा मुक्त नौजवान संकल्प मुहिम की शुरुआत की। वर्चुअली संबोधन करदिआं उन्हां जोर देकर कहा कि विकसित भारत लई नौजवानां लई शरीरक तौर ते सेहतमंद, मानसिक तौर ते मजबूत अते आत्म विश्वास नाल भरपूर होना चाहिए है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि नौजवानों को नशे तो दूर रहना चाहिए ते एक सेहतमंद जीवन शैली अपनानी चाहिए है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि नशा मुक्ति लई 100 हफ्तों की जन भागीदारी मुहिम शुरू की जाएगी, जिस तहत देश भर में हर एतवार को हफ्तावारी प्रोग्राम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशा लोगों को उनके उद्देश्यों से भटकाता है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। यह देश की ताकत को भी कमजोर करता है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नौजवानों को नशे की लत के गंभीर नतीजे को समझना चाहिए है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: उन्हें जोर देकर कहा कि नशे की लत को दूर करने लिए समय सिर माहिरां की मदद और इलाज लिया जाना चाहिए है। श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को चेतावनी के संकेतों को छेती पछाणना चाहिए और खुली गलबात को उत्साहित करना चाहिए है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इकल्लापन, असाधारण व्यवहार, गलबात तो बचना, देर रात तक बाहर रहना या वार वार पैसे मंगने वर्गियां आदतां नशे की लत के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के अध्यापकों को विद्यार्थियों नाल नशे की लत के खतरों बारे नियमित तौर पर चर्चा करने की अपील भी की। इस समारोह च 28,000 थावां तो 1 करोड़ तो वध नौजवानों ने हिस्सा लिया। पंजाब विच सूबे के 7 विद्यक अदारों के हजारा विद्यार्थियों ने अज नशा मुक्त युवा भारत संकल्प अभियान विच हिस्सा लिया। पंजाब दी यूनिवर्सिटियां दे ज्यादातर विद्यार्थी, जिन्हां विचों बहुत सारे NSS वलंटियर भी सन, इस राय दे सन कि नशा मुक्त भारत दी दिशा विच वध तो वध अते सकारात्मक नतीजे प्राप्त करने लई अजिहियां मुहिमां नूं उत्साहित करना समाज दी समूहक जिम्मेवारी है।
3: मेरा नाम सुनंदा शर्मा है और मैं डीएवी यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, साथ ही में मैं NSS की वॉलंटियर भी हूँ। आज का जो अभियान नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया है, युवा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जब भी सरकार कोई अभियान चलाती है तो ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है उसको आगे बढ़ाना। नशा एक ऐसी चीज है जो सिर्फ हमारे अपने शरीर को नहीं, हमारी सेहत को नहीं, बल्कि हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे रिश्तों को, सबको बर्बाद करता है। तो हमें समाज के तौर पे और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना चाहिए कि नशे से दूर रहें।
1: फगवाड़ा स्थित

0: ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੋਲਜਰ ਥਨ ਦਿੱਲੀ 2026 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੇ ਮੋਹਨ ਕੁਆਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਾਈਪੀ ਓਪਨ ਸੁਪਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत के मकसद के हुसूल की समत आगे बढ़ते हुए तंदुरुस्त जहनी एतबार से मजबूत और खुद एतमादी से भरपूर रहें। वजीर आजम ने नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज करते हुए कहा कि नौजवानों को मनुष्यात से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करनी चाहिए। केरलम में मूसलाधार बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। 8 अफराद की मौत होने की इत्तला मिली है। हजारों लोगों को इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुमकिना समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय का दावा करते हुए ईरान पर फौजी हमले फिलहाल रोक दिए हैं। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन में पहली बार BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। और ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों का आज आखिरी दिन है और भारत ने सोने के 13 तमगों समेत 39 तमगों के साथ चौथे मुकाम पर है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क विकसित भारत बनने की समत आगे बढ़ रहा है और मुल्क के नौजवानों को तंदुरुस्त जहनी एतबार से मजबूत और खुद एतमादी से सरशार होना चाहिए। आज नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के आगाज के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि नौजवानों को मनुष्यात से हमेशा दूर रहना चाहिए और एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसके आगाज़ के साथ साथ मनुष्यात की लानत के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में जन भागीदारी मुहिम भी शुरू हो रही है जो 100 हफ्ते तक जारी रहेगी। जनाब मोदी ने कहा कि मुआशरे से मनुष्यात के खात्मे के लिए बेदारी को फ़रोग़ देने और अवामी शमूलियत की हौसला अफजाई के लिए पूरे मुल्क में हर इतवार को हफ्तावार सरगर्मियों का एहतमाम किया जाएगा।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप।
1: जनाब मोदी ने कहा कि मनुष्यत की लत से लोग अपने मकासिद और अपने ख्वाब पूरे करने के रास्ते से दूर हो जाते हैं। इस लानत से न सिर्फ कुंभे बर्बाद होते हैं बल्कि मुल्क की ताकत भी कमज़ोर होती है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को मनुष्यत की लानत से महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि नौजवानों को इस लानत के संगीन मुजमरात को समझना चाहिए क्योंकि इससे आखिरकार करियर तबाह हो जाते हैं और मुस्तकबिल भी बर्बाद होता है।
2: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए।
1: वजीर आजम ने कुंभों पर जोर दिया कि वो मुआशरे में बदनामी के डर से मनुष्यात के इस्तेमाल के केसों को पोशीदा न रखें। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के कुंभों को बरवक्त मदद के लिए आगे बढ़कर खुलकर बात करनी चाहिए और माहिरीन से सलाह लेनी चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि कुंभों को इब्तदाई मरहले में ही तंबीह की अलामतों का पता लगाने की खातिर

0: खुली बातचीत का माहौल कायम करना चाहिए और बच्चों को बरवक्त मदद फराहम करनी चाहिए। जनाब मोदी ने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा और प्रोफेसर साहिबान से भी अपील की कि वो तलबा के साथ गुफ्तगु में मुनशियात की लानत के खतरात के बारे में बाकायदगी से बात करते रहें और कैंपस में बेदारी की मुहिम का एहतमाम करें। इस प्रोग्राम में मुल्क भर में 28,000 मुकामात से 1 करोड़ से ज़्यादा नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम के शुरका में स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, यूथ क्लब, गैर सरकारी तंजीमों और रूहानी तंजीमों के शुरका के साथ साथ माय भारत और नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकार भी शामिल हैं। अमेरिका में भारत के सफीर विनय मोहन क्वात्रा ने जोर देकर कहा है कि अगर पाकिस्तान दो तरफा मामलात पर भारत के साथ इश्तराक चाहता है तो उसे दहशतगर्दी के उस बुनियादी ढांचे को पहले ख़त्म करना होगा जो उसने बना रखा है। पाकिस्तान ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे को मुअत्तल रखने के भारत के फैसले पर एहतजाज के लिए हाल ही में इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस तलब की थी। जनाब विनय मोहन क्वात्रा ने एक न्यूज़ मैगजीन में शाये होने वाले मजमून में पाकिस्तान के एक साबिक वजीर खारजा के उस बयान पर नुक्ताचीनी की है जिसमें उन्होंने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के बारे में पाकिस्तान के मुतालबात पूरे न होने की सूरत में भारत के खिलाफ जंग की धमकी दी थी। भारतीय सफीर ने कहा कि अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भारत के खिलाफ जंग लड़ने की धमकी देना पाकिस्तान की एक पॉलिसी बन गई है। जनाब क्वात्रा ने यह भी कहा कि कॉन्फ्रेंसें तलब करके भारत को मौरिदे इल्ज़ाम ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को पानी की अपनी कमज़ोर सलाहियत को दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी हर अंदरूनी नाकामी के लिए भारत पर इल्ज़ाम लगाना पाकिस्तान की पुरानी रविश है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। केरलम में मूसलाधार बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। बारिश से वाबस्ता वाकयात में 8 अफराद की मौत होने की इत्तला मिली है जबकि 8 दिगर अफराद लापता बताए गए हैं। कल के मुकाबले आज बारिश का जोर कम होने से लोगों को कुछ राहत मिली है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: मुतासरा इलाकों में 5,700 से ज्यादा अफराद को 209 इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। रियासती सरकार के मुताबिक 27 मकान पूरी तरह तहस नहस हो गए हैं जबकि 196 मकानों को जुज़्वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ ज़िलों से फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचने की इत्तला मिली है। पहाड़ी इलाकों और दरिया के किनारे के नज़दीक रहने वालों को सलाह दी गई है कि वो चौकस रहें। इधर भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत के 12 ज़िलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के साहली इलाकों में माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो आज समुद्र में ना जाएँ। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालाकृष्णन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ने ईरान पर फौजी हमला फिलहाल न करने से इत्तफाक कर लिया है। इससे कबल ईरान और मगरबी एशिया के कई मुल्कों ने हमले रोकने की अपील की थी। सदर ट्रंप ने यह दावा किया है कि एक मुमकिन समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका फौजी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है लेकिन सिफारतकारी के लिए मौका फराहम करने की खातिर हमलों को मुअत्तल करने का फैसला किया है। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ख्वातीन के ताइपे ओपन सुपर सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में वियतनाम की 6 नंबर की खिलाड़ी गुइन थुई लिन को 21-16, 21-16 से हरा दिया। इस तरह 17 साल की तन्वी शर्मा ने पहली बार BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है और वो ताइपे ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों का आज आखिरी दिन है और भारत सोने के 13 तमगों समेत 39 तमगों के साथ चौथे मुकाम पर है। भारत ने अब तक चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगे भी जीते हैं। इससे कबल भारत ने मुक्केबाजी में सोने के 7 तमगे जीते जो कि एक रिकॉर्ड है। भारतीय मुक्केबाजों ने दौलत मुश्तरका खेलों में अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सोने के 7 तमगों के साथ साथ मुक्केबाजी में चांदी के 3 तमगे भी मिले। इधर जूडो में भी भारतीय खिलाड़ियों ने 4 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमगे जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। अहमदाबाद को ग्लासगो में जारी 2026 के दौलत मुश्तरका खेलों की अख्तितामी तकरीब के दौरान दौलत मुश्तरका खेलों का परचम और मेज़बान शहर के बैटन बाज़ाब्ता तौर पर सौंपी जाएगी। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत के मकसद के हुसूल की क्षमता आगे बढ़ते हुए तंदुरुस्त ज़हनी एतबार से मजबूत और

खुद एतमादी से भरपूर रहें। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज करते हुए कहा कि नौजवानों को मुनशियात से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करनी चाहिए। केरलम में मूसलाधार बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। 8 अफराद की मौत होने की इत्तला मिली है। हजारों लोगों को इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुमकिन

0: Good afternoon. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continue to wreak havoc in Keralam. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. US President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with 4th place in medal tally, including 13 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
1: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा दूर हो।
0: He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप।
0: Mr. Modi said drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of a nation. Stressing the need to protect the youth from the menace of drugs, he said young people must understand the serious consequences of addiction. Mr. Modi reminded that the drugs ultimately ruin careers, disrupt family life and destroy the future of individuals.
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: The Prime Minister urged the families not to hide cases of substance abuse due to social stigma. He said they should seek timely help, communicate openly, consult experts and make use of medical support to help affected family members recover. He stressed that families must foster a culture of open dialogue to identify warning signs at an early stage and provide timely support to children.
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए।
0: More than 1 crore youth from 28th

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाए नहीं।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
0: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़

0: से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के

0: राजदूत विक्रम दुरैस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बूरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉटपुट में स्वर्ण जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहु खेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और NCC के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन। भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। दोपहर के 2:30 और 17 सेकंड्स हुए हैं। आइए सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, हिंदी फिल्म संगीत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, कुछ नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेंगे। ऐसे ही एक शायर थे जिनके अल्फाज सिर्फ गीत नहीं थे बल्कि दिल की धड़कन बनकर करोड़ों लोगों की जुबान पर बन गए, बस गए। आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है महान गीतकार, उर्दू शायर और फिल्मी गीतों के बेमिसाल रचनाकार शकील बदायूनी जी को। दोस्तों, शकील बदायूनी का जन्म 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ। बचपन से ही उन्हें उर्दू, फारसी, अरबी और हिंदी का अच्छा ज्ञान मिला। शकील बदायूनी का असली नाम शकील अहमद था। बदायूं शहर से गहरा लगाव होने के कारण उन्होंने अपने नाम के साथ बदायूनी जोड़ लिया और आगे चलकर उर्दू शायरी और हिंदी संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान बना ली। और भी बातें करेंगे शकील साहब की, लेकिन पहले सुन लेते हैं शकील साहब का लिखा गीत। दोस्तों, आपको बता दें, जब ये गीत रिलीज हुआ तो इसकी भव्यता, बोल और संगीत ने इतिहास रच दिया। तो आइए सुनते हैं इसी भव्य गीत को।

दोस्तों, 1940 के दशक में शकील बदायूनी मुंबई पहुंचे। कवि सम्मेलनों में उनकी शायरी सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। यहीं उनकी मुलाकात संगीतकार नौशाद से हुई। ये जोड़ी हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास की सबसे सफल जोड़ियों में गिनी जाती है। दोनों ने मिलकर सैकड़ों अमर गीत गाए। तो आइए सुनते हैं शकील साहब का लिखा अगला गीत, अगला मंत्रमुग्ध करने वाला गीत फिल्म लीडर से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

दोस्तों, शकील बदायूनी ने नौशाद के साथ लगभग 30 फिल्मों में काम किया और उनके लिए करीब 300 गीत लिखे। इनकी जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को दुलारी, बेजू बावरा, आन, मदर इंडिया, मुगले आजम, कोहिनूर, गंगा जमुना, मेरे महबूब, लीडर और संघर्ष जैसी यादगार फिल्मों के सदाबहार गीत दिए। कहना गलत नहीं होगा कि नौशाद की धुनों और शकील बदायूनी के अल्फाज ने मिलकर हिंदी फिल्म संगीत का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय लिखा जिसे आज भी संगीत प्रेमी पूरे सम्मान और मोहब्बत के साथ याद करते हैं। शकील बदायूनी केवल प्रेम गीत ही नहीं, भजन, कव्वाली, गजल, देशभक्ति गीत हर विधा में समान रूप से सफल रहे। शकील बदायूनी ने कभी शब्दों को धर्म की दीवारों में नहीं बांधा। यही तो भारत की गंगा जमुनी तहजीब है। एक मुस्लिम शायर होते हुए उन्होंने इतना दिव्य भजन गाया, क्या कमाल की बात है। आइए सुनते हैं इसी भजन को फिल्म बेजू बावरा से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार और हमारे आज के कलाकार हैं महान रचनाकार शकील बदायूनी और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर आपके साथ। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं मत जाइएगा।
1: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार, और हमारे आज के कलाकार हैं शकील बदायूनी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ip.radiodelhi@gmail.com। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, ip.radiodelhi@gmail.com। आप हमें इस पते पर अपने संदेश भेज सकते हैं, हमें आपके संदेशों का इंतज़ार रहेगा। हम बात कर रहे हैं शकील साहब की। शकील साहब के शब्दों की सबसे बड़ी खूबी थी सादगी, कठिन उर्दू नहीं बल्कि ऐसे शब्द जो सीधे दिल में उतर जाएं। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही गीत जो सीधे दिल में उतर गया और सीधे दिल में उतर जाता है, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने और फिल्म का नाम है मेरे महबूब।

0: वाह, क्या खूबसूरत गीत। इस खूबसूरत गीत के बाद हम अपने दोस्तों के, अपने श्रोताओं के मेल शामिल करना चाहेंगे। तो पहला मेल हम शामिल कर रहे हैं, फागुराम यादव जी ने लिखा है हमें संबलपुर कांकेर से। और अगला संदेश हमें मिला है राजकुमार डूडी जी का। एक ही कलाकार में आप गीतकार शकील बदायूनी के बारे में जानकारी दे रही हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इसके लिए आप हमारा प्रोग्राम ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है धर्मेंद्र छिप्पा जी का। आदरणीय मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप अपने दौर के मशहूर गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गीत, नगमे, सदाबहार गीत हमें सुनवा रहे हैं। बेहतरीन रोचक बातें और किस्से सुनवा रहे हैं आप, हम प्रोग्राम का आनंद उठा रहे हैं। धन्यवाद धर्मेंद्र छिप्पा जी। ये हमें संदेश मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से। अगला संदेश हमें मिला है फारूक अली खान का। इनको भी हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है और प्रोग्राम में सुनवाए गए सारे गीत इनको पसंद आ रहे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगला मेल हमें मिला है स्वरण सिंह जी का और इनके परिवार के सभी सदस्यों का। इनको भी प्रोग्राम हमारा पसंद आ रहा है। एक और मेल मैं शामिल करना चाहूँगी सोम दत्त जी का। ये है हमें संदेश मिला है नाभा जिला पटियाला पंजाब से, और इनके परिवार के अन्य सदस्यों ने भी हमें ये संदेश भेजा है। इनको भी हमारा प्रोग्राम एक ही कलाकार बहुत पसंद आ रहा है और उसमें सुनवाए गीत भी पसंद आ रहे हैं। एक और मेल मैं शामिल करना चाहूँगी हीरा मणि वर्मा जी का। इन्होंने लिखा है एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज गीतकार शकील बदायूनी जी पर केंद्रित कार्यक्रम और फिल्मी सफ़रनामा दिलचस्प जानकारी के साथ बेहतरीन गीत सुनने को मिले। तो तहे दिल से धन्यवाद हमारा प्रोग्राम इतने ध्यान से सुनने के लिए। ये मेल हमें भेजा है हीरा मणि वर्मा ने दंत रेगी भाटापारा से। तो इसी तरह से दोस्तों हमें मेल भेजते रहिए और हम आपके मेल का बेसब्री से, आपके संदेशों का बेसब्री से इंतज़ार करते रहेंगे। तो प्रोग्राम आगे जारी करते हैं और बताते हैं कि दोस्तों किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार श्रोताओं का और दर्शकों के प्यार का होता है। शकील बदायूनी को ये प्यार भरपूर मिला। उनके शानदार लेखन को फिल्म जगत ने भी समय-समय पर सम्मानित किया। 1961 में फिल्म 14वीं का चांद के लिए के अमर गीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड। सन 1964 में फिल्म मेरे महबूब के शीर्षक गीत के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड। 3 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार उनको मिला। और जाते जाते शकील बदायूनी के लिए एक खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है। मैं कहना चाहूंगी, मैं शकील दिल का हूं, आवाज की दुनिया में मेरे अल्फाज ही मेरी पहचान रहेंगे। बिल्कुल, आपकी पहचान आपके अल्फाज रहेंगे। और इसी के साथ चलते चलते सुनते जाइए एक और प्यारा सा गीत उन्हीं का लिखा हुआ, हेमंत कुमार की आवाज में।
1: करके हमें यू न जाइए, आपको हमारे पसंद लौट आई।
0: इकरार करके हम आपको जाना, हम आपको छोड़कर जाना तो नहीं चाहते, मगर घड़ी की सुइयां हमें अनुमति नहीं दे रही हैं। ना चाहते हुए भी हमें जाना ही पड़ेगा।

लौट आए हैं हम एक और गीत के साथ। चलते चलते सुनते जाइए शकील साहब का लिखा हुआ एक और प्यारा सा गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो झूला मेलान की बात तो या सावन के महीना में है ही, पर हम एक बात अपने श्रोता भैया बहनान को बता में, जो ये सावन को महीना है ना, ये भोलेनाथ शिव को भी ना समर्पित है।
1: जी हाँ चंपा जी, जब जब सावन की बात चले तो शिव जी को तो अपने आप स्वयं ही वहाँ पे आगमन है जाए है। और आप जाने हैं कि सावन के सोमवार जलाभिषेक, बेलपत्र, आक, ढाक, धतूरो, ये सब प्रकृति के जो उपादान हैं, वे मिलके शिव भक्ति को एक अनूठो स्वरूप पैदा करते हैं।
0: देखो ना कितनी बढ़िया बात है कि जो प्रकृति प्रदत्त चीज है तो शिव को अर्पित करी जा रही है। और हम सब देखे हैं कि शिवरात्रि के आसपास ना कांवड़ यात्रान को चलन इतना बढ़ जावे है कि हर कोई श्रद्धालु की आस्था कांवड़ के काजे हो जावे है कि हर कोई यो प्रयास करे कि मैं कांवड़ लेके आऊं और भोलेनाथ पे शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाऊं। और यही क्रम में हम देखे हैं कि हमारे सामाजिक जीवन को तानो वानो ऐसो है, बम बम बोले हर हर महादेव को जो उद्घोष है वो वातावरण में ना गुंजायमान हो गए है कि हमारे इष्ट तो इतने भोले हैं कि जल चढ़ा दो, आग ढाक धतूरो ही चढ़ा दो, बिल्व पत्र ही चढ़ा दो। तो या के काजे देखो कितनी विलक्षण बात हमारे काऊ रचनाकार ने कही है, मोमन मेरी बुद्धि ले करी हर को अनुकूल, ले त्रिलोक की साही भी दे धतूर को फूल। सरल स्वभाव है,
1: सरल स्वभाव है और यही सुप्रसन्न है जाए। देखो चंपा, लोक में हम बेलपत्र को चढ़ामे और लामे तोड़ के आपने तनिक देखो, एक भारतीय जो ज्ञान परंपरा है ना
0: जी,
1: वहां में तो याकिताई बहुत सुंदर सो श्लोक है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक विल्वम शिवार्पणम। चंपा जी पर एक बात बताओ हमें
0: जी, पूछो।
1: आप कछु सोमवार को व्रत उपवास करो हो का?
0: हाँ हाँ करें ना,
1: हम तो वैसे आपसे पूछ रहे हैं, कछु ऐसा तो ना है कि 2-4-5 किलो फल चाहिए कि जूस चाहिए, कोई ऐसा व्रत तो ना है ना?
0: अरे नृत्य गोपाल जी, हमें पता है आप काई को पूछ रहे हो, बस हम पे हमारी भूख सहन हो जाए इतनो ही बस सूक्ष्म आहार हम ले में, पर व्रत जरूर हम करे हैं।
1: चंपा जी ये जो शिव को समर्पित जो पूरा सावन मास है, आप तनिक देखो कि हमारे यहाँ बालक बालक हो शिव की या स्तुति को मग्न है के समर्पण के संग दोहरावे है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये भक्ति रचना सुन रहे हते तो नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो हास परिहास है, भक्ति है और सामाजिक सरोकार है ना, सबको जो तालमेल है, ये सब वानगी ना हमें यह सावन के महीना में देखने को मिले हैं।
1: जी हाँ चंपा जी, यही सो तो सावन को जो पूरो को पूरो तानो बानो सामाजिक रूप से जब जब बुनो जाए ना,
0: हाँ
1: वह समाज को इतनो समृद्ध करे है।
0: तो नृत्य गोपाल जी, जब आप लोक मन की बात कर रहे हो तो कछु ऐसी चर्चा की ओर अपने भैया बहनान को ले चले।
1: और ले श्रोता भैया बहनाओं, आपको सुनवा में भेंट वार्ता लोक जीवन में सावन का उल्लास। आज हमारे संग विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित हैं डॉक्टर तेजवीर सिंह और उनसे बातचीत कर रही हैं चंपा जी।
0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में तेजवीर सिंह जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
2: राधे राधे चंपा जी।
0: तेजवीर जी, वैसे ऐसा है कि यहाँ में सावन के लोक उल्लास की बात है, ब्रज के लोक मन की बात है और सावन को महीना तो देखो चल ही रहे हो है। तो तेजवीर जी, यही क्रम में हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे ब्रज में सावन कहाँ रूप में महत्ता रखे है।
2: बहुत बढ़िया प्रश्न पूछो आपने चंपा जी। आप तो ये समझो ब्रज को मतलब मेहनत है सीधो सीधो। अब जैसे आजकल लोग ना समझ पाएंगे, बरसा कहेंगे,
0: हाँ
2: पर ये ब्रज को जो मूल रूप है वो मेहनत है।

0: जी
1: बिना मेहे ब्रज में कछु ना, क्योंकि ब्रज की तो छटा अट्टा पट्टा तभी देखी जाए जब सावन ब्रज के मेहन में लग जाए।
0: तो तेजवीर जी आपकी बातन को मतलब तो यही है कि मेहे और सावन है ना एक दूसरे के पूरक हैं। सावन आयो तो मेहे आयो, मेहे आयो तो सावन आयो
1: बिल्कुल जी, यहाँ में
0: हैं।
1: ऐसी हरियाली आ जाए कि यहाँ में तो बैयर ते लेके, आदमी ते लेके, बच्चा ते लेके, किसान ते लेके,
0: जी
1: बाजार ते लेके, रिश्तेदारन ते लेके, सब पे हरो ही हरो छा जाए, तुम नहीं कह
0: रौनक छा
1: सको।
0: जाए क्योंकि हमारा लोक जीवन है तो सबके मन में उमंग रहे ना कि चलो घेवर फैनी चल के खाएं, कछु खरीदारी करें। आपने बता दी कि सावन आयो है तो जाते हम पहली वर्षा के, जाते हम रिमझिम फुहार के, पर हमारे ब्रज में उमहे के रूप में देखो जाए तो यही क्रम में है। तेजवीर जी हमारे भैया बहनान को ये बताओ, काऊ के घर में बालक को ब्याह भयो है, काऊ के छोरा छोरी को भयो है और उनको पहलो सावन है ब्याह को, तो बाकी हमारे लोक जीवन में कहाँ ऐसी परंपराएं।
1: चंपा जी, यहाँ में जो हमारी ब्रज की प्रचलित परंपराएं, बिन में एक तो देखो सिंगाड़ो जावे, सिधारे को मतलब ये है कि यहाँ में जो नई नवेली दुल्हन या नववाहित दुल्हन जाए बोले,
0: जी जी
1: अब दुल्हन
0: जी
1: तो हम यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि हमारी ब्रज की भाषा ही है।
0: देखो तेजवीर जी, सिंधारो जावे सिंधारो आवे, ये तो हो गए हो तीज को त्योहार। अगर हम करेंगे कि सलोने इन पे जा रो है कोई तो बापे होएगो बूरो खाएवे को त्योहार यो
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत बहुत बढ़िया बता दे आपने तो, क्योंकि क्या है कि ये दोनों अलग अलग चीज हैं, पर
0: जी
1: आपने देखा होगा पहले एक एक साल पहले तैयारी है मैं कि बूरो
0: जी
1: खाएवे कगाजे चलेंगे।
0: तैयारी यो होंगी ना तेजवीर जी की, क्योंकि जब मेहमान पाहुने आएंगे तो देखो उनको विदा जो दई जाए, यानी कि उनके जो व्यंजन बने उनके काजे जो खातिर करी जाए वो तो बात अलग रही, पर जो विदा दई जाए वहां में ये देखो कि जो चावल है हाथ से बनी वही सेवई है, अब भी तो बारीक काम है। आजकल तो चलो युग परिवर्तन को दौर है तो मशीन चल रही है, पर पहले जमाने में तो, और अब वो हम कहीं कहीं देखें कि आंचलिक जो हमारे सुदूर गांव है उनमें हाथ से जवा जो तोड़े हैं, तो या के कहा जाए तो एक एक साल से तैयारी चलेंगी ही।
1: बिल्कुल चंपा जी, आपने सही बताया, और यहाँ में मैं आपके काजे ऐसा ना है कि या त्योहार के काजे एक ही बैयर ही बैयर सम्मिलित हो, यहाँ के मर्दों सम्मिलित है पर हैं, वो पूछो अब कैसे, क्योंकि जब सोगी आमे तो पहले जमाने में खाटन की जरूरत पड़े, तो
0: जी
1: बागे काजे सन बटे, सन बट के खाट बनावे, खाटन की तैयारी करे,
0: जी
1: दूसरे बैयर बीजना बनावे ही जाते कि वो विदा में जामे, जैसे आपने विदा की बात करी,
0: जी
1: एड़े ही बनावे ही जो कुआन
0: हाँ
1: पे पनिहारी पनघट्टे लामे, कहीं
0: हाँ
1: जामे हंसी ठट्टे मजाक हुए करे काये।
0: जी
1: बाके बाद क्या है जो आपने एक सबसे बड़ी बताई कि हाथन ते बनावे, क्योंकि या में तो सावन प्यार मोहब्बत को है,
0: हाँ
1: या में तो ठाकुर जी बाट देखे के ब्रज के त्योहारन की, कि
0: जी
1: हाथन ते सेमे ही बनावे, ठाकुर जी को भोग लगे और बिन्ने विदा में दे में।
0: और देखो अब तेजवीर जी सबसे बड़ी महती परंपरा या हरियाले सावन की ये भी है कि ब्रज नारीन के जो हाथ हैं वो लाल लाल मेहंदी ते रचे वसे लगे हैं, बड़ी रचनी मेहंदी लगाई जाए, तो हमारी जो बुजुर्ग अम्माएं भी या बात को बड़ो ध्यान रख के लाली बाबा रे खेत पे जइयो वो जो मेहंदी को पेड़ है बा में ते मेहंदी की पत्ती तोड़ के लइयो, बाकी मेहंदी बड़ी रचनी है।
1: बिल्कुल सही बात कह दी आपने तो, ये के जो ये जो सावन है ये एक तरीका ते सिंगार को महीना है।
0: तो तेजवीर जी बात यही है कि ये नारी जीवन के ना उल्लास को प्रतीक है सावन को महीना, और हम देखे हैं भैया तेजवीर कि आप ये देखो कि हरियाली तीज को जो उत्सव है बाकी वानगी ऐसी होवे कि अपने आप ही तो हरे हरे लहरिया फरिया हमारी जो ब्रजनार है लावे लग जाएंगी, और जो हमारे भैया हैं कि जो बाहर को काम देखे हैं वो पहले ते पहले 2 दिन पहले जो सिंधारा दोज बातें कह में हरियाली तीज ते 1 दिन पहले तो बे यो कह में के घेवर फैनी आएगो हैं मंदिर देवाले इनमें जाएगो, फिर हमारे घरन में वाको खावे पीवे में या जो हमारी लोक की परंपरा है ना एक दूसरे के घर दे में
1: बिल्कुल
0: व्योहार
1: बिल्कुल,
0: जाते के
1: हाँ व्यवहार जाते
0: हैं।
1: हैं मैं, और खाली घेवर ही घेवर ना है, मालपुआ हुआ आवे, फैनी हुआ आवे।
0: भैया तेजवीर आप एक बड़ी बात देखो कि जैसे ही सावन के उल्लास की बात हम कर रहे हैं जैसे ही अषाढ़ को महीना लगे हमारे ब्रज के लोक जीवन में इतना उल्लास छा जाए, सास तो तैयारी करें कि बहू पियर भेजनी है और पियर में छोरी की मैया यो तैयारी करे कि बेटी घर बुलानी है।
1: बिल्कुल सही बात कह रही हैं, और आपने जब अषाढ़ की बात करी तो यहाँ में क्या है कि जैसे ही गुरु पूनो खत्म हुए, हमारे ब्रज को बहुत बड़ा उत्सव है
0: लक्की
1: गुरु
0: मेलो है
1: लक्की मेलो गुरु, तो
0: जी
1: बाकी दूसरे दिन ते ही सामान की तैयारी लग जाए, क्योंकि पीहर तो पीहर जावे काजे और वो बहु बेटी है बुलावे के काजे, पूरी तैयारी में यार तरीका ते बात देखें।
0: हाँ मतलब कहवे को यही है कि जैसे महीना वर्ष है तो सब मेकी सी बात चाट देखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे प्यासी धरती पानी माई देखती रहे ना, कि मेरे पर तो बात तरीका की हलियारी।

0: हरियाली आ जाए, ऐसे ही बहू बेटी के घर में आवे थे ऐसी ही हरियाली आ जाए।
1: तो देखो तेजवीर जी, एक बात याद आ रही है, हमारे ब्रज के लोग जीवन में ना तो बहुत अच्छी कहन है, बहुत दिना है गए भेज दो, सावन सगुन मनाऊंगी, भैया आयो मोए लवावे, मैं पीहर को जाऊंगी।
0: जाऊंगी
1: तो ये हमारी ब्रज की ना बड़ी अनूठी परंपरा है, जो हमारे सामाजिक सरोकार हैं, जो हमारे जीवन को सामाजिक तानो बानो है, वो है ही ऐसो ना।
0: चंपा जी, आपने सही बात बताई, हमारे ब्रज के सामाजिक जीवन को तानो बानो ऐसा ही है कि जो बहू बेटी है बाकी दो ही घर माने जाएं, एक बाप घर और एक आप घर।
1: हाँ, तो यानी कि नारी के काजे यही कहो गए हो, कैसी भी परिस्थिति हो, नारी हर हाल में अपने जो दो घर हैं, दो कुल हैं, उनकी लाज को संग लेके चले और उनके संग रिश्ते ने जीवंत करके चले।
0: बिल्कुल सही है। और चंपा जी हम बात बता दूं, जैसे आज के समय में कह रहे हैं कि हमको कुटुम्ब प्रबोधन कर रहे हैं, वो भी ब्रज की रीत है, जहां में बहन बेटी घर आवे, सब घरन में जावे, सब अंते बोले बतरावे, कोई छोटी मोटो दुखो बाहुए खत्म कराई और आप सार लेके बेचारी फिर चली जावे। तो
1: चली जावे
0: यही
1: हैं।
0: थे कुटुम्ब प्रबोधन है व्यव। और दूसरी और एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा विषय जो ऐसा है, मैं डॉक्टरी ते संबंधित रखू, तो
1: जी
0: बामे आप जो सावन के सप्ते बड़े, तो बहन बेटी झूला पा रही, आपने वो खूब
1: अंगू
0: पारे होंगे।
1: अंगू पंगू
0: हाँ,
1: जोड़ के
0: अंगू पंगू
1: पींग
0: जोड़ के हैं, अंगू पंगू जोड़ के
1: बढ़ाएंगे।
0: हैं, अंगू पंगू पा रहे हैं, बात है क्या,
1: हाँ
0: पूरे तो
1: ते
0: शरीर की कसरत है भाई और शरीर में उमंग आ जा भाई।
1: हाँ तेजवीर जी, अंगू पंगू जोड़नो तो ये है कि जो झोटान की पीग है ना वो बढ़ानी है, तो अंगू पंगू तो न्यो। और आपकी जो बात है तो ये कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जा को भी प्रतीक है, ये व्यायाम को भी प्रतीक है। तो हम देखे हैं कि आज भी हमारी ब्रज धरा में ना, जो हमारा आंचलिक परिवेश है, वहां पे चाहे आप शीशम के पेड़ हुए, आम को हुओ, नीम को हुओ, इनकी डाल झूला के काजे ना बड़ी मजबूत मानी गई है।
0: और यहां में तो जो हमारी बुआई ना, जिनते फूफी कह रहे हम बिन
1: हाँ
0: की बात देखे के लेज मिल जाए बिन पे, और जो सोगी जावे का है बिन में आप ध्यान हो तो पटरी और मिले ही विदा में।
1: तो तेजवीर जी देखो, अब आप झूला पटरी की बात कर रहे हो, सोगी की बात कर रहे हो, चलें कि आपके पसंद गीत की ओर बढ़ें।
0: हाँ जी जरूर, कोई बूरो खावे को या हम कोई गीत हो तो भाई सुनवा दे, बड़ो आनंद आ जावे को।

0: तो प्यारे भैया बहनाओ, तेजवीर जी के संग या लोकगीत को सुन के है ना, तो आपने वो तैयारी कर ली होगी, बुरो खाएंगे और मौज उड़ाएंगे।
1: नहीं
0: तो भैया तेजवीर, तो कोई आपके भी जीवन को ऐसा अनुभव है का कि कभी आप अपने कोई परिजनन के संग, इष्ट मित्रन के संग बुरो खावे गए हुए?
1: हाँ जी बिल्कुल, हमारा तो खुद का ही अनुभव है। हम खुद ही बूरो खावे गए, क्योंकि हमारे जो
0: अच्छा
1: ससुराल है वो मथुरा में ही है।
0: हाँ
1: और मैं आज आपके काजे बात जीवन तो धारणे बता रहा हूँ। जो आप कह रही हो ना, सिंधारो लेगे और सोगिन को सामान लेगे, वो ऐसा
0: जी
1: ना है भाई, घर घर को लेगे, बाकी आस पड़ोस चाचा ताऊ सबन के
0: हाँ
1: काजे वहां में सामान लेके गए, ऐसी हमें याद है। और
0: हाँ
1: बामे हम 3 दिन आ तक रुके, हमने 3 दिन आ तक बूरो खायो,
0: खाली बूरो के मैम घी भी हो
1: घी कहीं संग बूरो खायो जावे को आप ना, वहां में घी भी है तो और आनंद हुआ तो हमने तो सभी खाए हो वहां में।
0: और फिर वे मेहमान पाउने इनको जो गीत गारी पड़े बे सुने के ना
1: अरे वे तो
0: सुने
1: गारी दे पूरी
0: ये तो ब्रज की शान है लोकगीतन की। आप इकले दुकले गए, दो चार सखान ने ले गए,
1: नहीं जी, हम तो कोई 10 लोग गए।
0: तो आपने बूरे में तो घी डरवा लियो, पर हमारे ब्रज में तो देखो मेहमान पाउने इनको खीर में घी डार हो जाए।
1: हाँ बिल्कुल डार हो जाए। और साहब वो जो रिश्तेदार है हमें यमुना जी ले गए, मां नहा के आए, और जो रिश्तेदारनी बहु भैया नहीं बनने गाड़ी उदही, और जो हाथन पे लगा के हल्दी ते पीठो पे वो खूब ठोके।
0: तो जब आपने सबरी परंपरान को निर्वाह करो, आप यमुना मैया की बात कह रहे हो कि वहां गए, तो यमुना रेती मैंने कहा कुश्ती दंगल की कोई
1: हाँ बिल्कुल, कुश्ती दंगल करी, मां अखाड़ो वहां पे गए। और क्योंकि वे बता रहे कि सावन की बहुत जोर की परंपरा है, यहाँ में कई ऐसी चीजें जो आज धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। जैसे बताऊं
0: हाँ
1: चंपा जी,
0: बत
1: वृक्षारोपण को, पक्षी के काजे डारनो डारवे को, तुलसी मैया लगावे को, ये हमने वहां पे धारावाहिक कार्यक्रमों करे और ये
0: अच्छा
1: सब देखे हुए।
0: भैया तेजवीर के, ये हमारी जो ब्रज की अपनी जो आंचलिक और स्थानीय परंपराएं हैं ना, तो हम देखें कि सावन के महीना में कुश्ती दंगल और खो खो की और कबड्डी की प्रतियोगिता आपस में जब मेहमान पाहुने इकट्ठे हो जामे ना, तो उनको बड़ो बढ़िया प्रदर्शन होवे।
1: और आपने देखे होंगे अब कह भी लगे मेलो लगे नहीं, पहले कह भाई मेलो भरे, तो
0: हाँ
1: मेलो भरवे को मतलब है यो हास उल्लास आनंद, रिश्तेदार ये सब आमे और बामे अपनो आनंद लें। जय
0: बिल्कुल, और ब्रज में तो कही गई है ना, मेले को मतलब है मेल होए वो। तो देखो तेजवीर जी, आपने अपनो अनुभव भी साझा करो है, तो असली आनंद ये को और भाई क्यों ना बताए रे।
1: जी, बताओ पूछो
0: देखो
1: हमसे।
0: आपको विदा मिली होगी
1: हाँ बिल्कुल
0: हैं,
1: मिली जी
0: आपको
1: विदा,
0: मन दो मन चावल मिले होंगे हैं, और जवा सेमई मिले होंगे हैं, तो इन वातन ने क्यों ना
1: हाँ
0: बता
1: नहीं
0: रहे
1: बिल्कुल बताएंगे जी, हम तो हम कह ही रहे हैं कि आनंदो मिलो, और ये विदा में रुपये नगदो मिले, कपड़ा
0: हाँ
1: मिले, और हम वही हमको ना है हमारे माता पिता को मिले, और जो साथ गए बिनकू मिले।
0: तो आपने तो फिर यही बात करी कि अपने ससुराल ते आप 1-8 साल को राशन पानी बांध लाए होंगे
1: हाँ बिल्कुल और सबसे बड़ा तो साहब यहाँ में दुख ये हो, जब हम माते आ रे काए तो ये माना
0: विदा
1: जैसे
0: होवे में जी
1: हाँ
0: टूटो।
1: जी टूटो।
0: हाँ
1: और दूसरों सबसे बड़ी बात ये कि जैसे ठाकुर जी के संग आनंद आवे ना भक्ति में, ऐसे ही
0: हाँ
1: मां रस

0: उसको आनंद आ रहा होता ना। अब तो जी ऐसा मन है कि हर बेर हमें सामने ही लगवे लगो है।
1: हाँ क्यों ना, आप भेज देते होंगे कि जाओ तुम अपने पियरन को चली जाओ, अपने भैयान को राखी ले जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे हम चले आएंगे।
0: हाँ क्योंकि हमें भक्ति रस प्रेम रस सबको भाव है, और मैं तो यूं कहूँ ठाकुर जी ऐसी हम पे पूरे ब्रज पे ऐसी कृपा रखे कि ऐसे ही खुशहाली से आनंद लेते रहें और सावन के त्योहारन में बनाते रहें।
1: देखो आपने जो सावन के महीना में लोक जीवन को उल्लास है या विषय पे कितनी सुंदर चर्चा विस्तार से हमारे श्रोता भैया बहनान को बताई है, आपने ब्रज क्षेत्र की जो आंचलिक परंपराएं उनके बारे में बतायो है, ब्रज के जीवन की सावन के महीना में जो सहजता है बाके बारे में आपने बतायो है। तो तेजवीर सिंह जी आप हमारे ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में पधारे, या के काजे आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
0: जी चंपा जी आभार, सब श्रोतान को राधे राधे नमस्कार।
2: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे ये भेंट वार्ता जाको विषय हो लोक जीवन में सावन का उल्लास, या मैं विशेषज्ञ के रूप आमंत्रित रहे डॉक्टर तेजवीर सिंह जिनते बात कर रहे चंपा जी। चंपा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डॉक्टर तेजवीर सिंह जी ते लोक की ऐसी छोटी छोटी बात पूछ ले कि हमारे श्रोता अपने आप अपने लोक जीवन में आनंदित है भी लग गए होंगे।
1: हाँ देखो नृत्य गोपाल जी, आनंदित भी हमारे श्रोता भैया बहना हुए हैं, और श्रोता भैया बहना ने ना जो आगामी त्योहार हैं उनकी भी अब उनके मन मस्तिष्क में ना बात चल गई होगी कि हमें भी कहाँ का तैयारी करनी है, कहाँ चीज लानी है, कहाँ चीज बनानी है, कहाँ जानो है और कौन को बुलानो है।
2: जी हाँ चंपा जी, देखो ये जो भक्ति को जो स्वरूप है सावन में और लोक को जो समागम है, जब हम भक्ति की बात करें तो हम देखें कि हमारे कन्हैया के या ब्रज में अनेक ऐसे भक्त भये हैं जो अपने आप ही या भक्ति के सागर को और ज्यादा प्रवाह देते रहे हैं।
1: नृत्य गोपाल जी, या वानगी में तो यकरंग भक्त कवि को नाम बहुत ऊपर आवे।
2: जी हाँ चंपा जी, आपको बिल्कुल ठीक स्मरण भयो है कि खान जहां लोधी के वंशज मुस्तफा कुली खान जिनको नाम हो, जिनको साहित्य के क्षेत्र में यकरंग के नाम ते जाने जाए है
1: जी।
2: और ये शासक मोहम्मद शाह के समय में बहुत प्रसिद्ध अमीरन में इनकी गिनती रही और दिल्ली के उर्दू शायरन में इनको बड़ो स्थान है, पर जब ये हिंदी में लिखे और भक्ति की जो रचना इनने करी वह में कृष्ण के प्रति इनको समर्पण अद्भुत है। अगर आप इनको एक छंद देखो कितनी सुंदर भावनान के संग इनने अपनी बात कही है। सांवलिया मन भाया रे, सोहनी सूरत मोहनी मूरत हृदय बीच समाया रे, देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा अंत को अंत न पाया रे, काहू में अहमद काहू में ईसा काहू में राम कहाया रे, सोच विचार कहे यक रंग पिया जिन ढूंढा तिन पाया रे।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी, देखो ये तो एक भक्ति को उपादान रहे हो, पर वही इतर अगर हम लोक की बात करें, एक नीति की बात करें, एक लोकमानस के काज सीख की बात करें, तो उनको एक दोहा बड़ो द्रष्टव्य है। संपत्त तो हम के कटे विपत कटे ना रोए, यक रंग आशा राख ये हरी चाहे सो होए। तो देखो कितनी आशाजनक कितनी आशावादी विचारधारा मन के काज एक दिशा देवे वारो उनने संदेश या दोहा के माध्यम से दियो है। तो हम अपने श्रोता भैया बहनान ते यही कह मैं प्यारे भैया बहनाओं के ऐसे ही आप हमारे ब्रज माधुरी कार्यक्रम पसंद करते रहो।
2: श्रोतान को तो बहुत पसंद आवे है, और चंपा जी बोले तो बात अलग है। आप तो जाने हैं कि जो केला के पात में पात, पात में पात, और क्यों चतुरन की बात में बात, बात में बात, और चंपा जी की बातें ही खत्म ना होए।
1: अरे नृत्य गोपाल जी, अब तो बात खत्म करनी पड़ेगी, देखो समय को अपनो इशारो हो रो है, अब तो हमें आए हैं तो चलना ही पड़ेगा। तो इन्हीं प्यार भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यही संपन्न होवे है। मोए अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
2: और मोर नृत्य गोपाल को कार्यक्रम प्रस्तुत करता वी के तोमर के संग जायवी की अनुमति प्रदान करें।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोताओं का कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है
1: रेडियो किड्स।
0: और इस कार्यक्रम में आज मैं जुड़ी हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सुहानी। चलता फिरता बातों का पिटारा है, एक दोस्त है मेरा जो मुझे बहुत प्यारा है, दिल के बहुत करीब है, जिसे खोना मुझे किसी हाल में ना गवारा है। एक दोस्त है मेरा जो मुझे बहुत प्यारा है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ है हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। तो आइए जानते हैं इनसे इनका नाम।
2: मेरा नाम सोनल है और मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम पवित्रा है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम कृतिका यादव है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ।
5: मेरा नाम प्रज्ञान है, मैं केजी ग्रेड में पढ़ता हूँ।
0: तो दोस्तों आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो चलिए, अभी हमने सुना एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और मुझे उससे याद आया कि आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्ती पर। और दोस्ती एक ऐसा विषय है जिससे हम सभी जुड़ सकते हैं, जिसके बारे में हम सभी बहुत बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो एक एक करके बताओ कि आपके भाई स्कूल में कौन कौन से दोस्त हैं, और अपने कुछ दोस्ती के किस्से बताओ। तो आइए पहले सुनते हैं हम सोनल से। हेलो सोनल।
1: हेलो।
0: तो आपके स्कूल में कौन कौन से दोस्त हैं?
1: मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं।
0: अच्छा, तो क्या ये आपके बचपन के दोस्त हैं या हमेशा आप अपने नए नए दोस्त बनाते रहते हैं?
1: कुछ बचपन के भी दोस्त हैं और नए नए दोस्त भी बनाती हूँ मैं।
0: तो कैसे दोस्त हैं आपके? पढ़ाकू दोस्त है, शैतान दोस्त है, कैसे हैं?
1: हर तरह के दोस्त, पढ़ाकू भी है, शैतान भी है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई करनी हो तो भी दोस्त है, शैतानी करनी हो तो उनके लिए भी दोस्त है ना?
1: बिल्कुल सही।
0: अच्छा, तो चलो पवित्रा से पूछते हैं। तो पवित्रा, आप कौन सी क्लास में हो?
2: मैं कक्षा 4 में हूँ।
0: तो आपको दोस्त बनाना पसंद है?
2: हाँ, बहुत पसंद है।
0: अच्छा, तो क्या आपने कभी अपने दोस्तों के साथ शैतानी वगैरह की है? कभी टीचर से डांट पड़ी है आपको?
2: बीच बीच में पढ़ती है।
0: अच्छा, बीच बीच में पढ़ती रहती है। अच्छा पवित्रा, तो आपके दोस्त कहाँ कहाँ है? स्कूल में है, ट्यूशन में है, आप जहाँ खेलने जाते हो वहाँ है?
2: मेरे दोस्त तो हर जगह है।
0: अरे वाह पवित्रा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए जानते हैं कृतिका से। हेलो कृतिका।
3: हेलो।
0: तो आप बताइए कि आपको अपने दोस्त कैसे लगते हैं और आपका दोस्ती पर क्या कहना है?
3: मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं और मैं उनके साथ शैतानी भी करती हूँ, लेकिन टीचर से फिर थोड़ी सी पिटाई भी खाती हूँ।
0: ये तो हम सभी के बचपन के किस्से हैं, हम सभी को डांट पड़ी है कभी ना कभी स्कूल में। तो देखो दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बहुत ही नन्हे मुन्ने प्यारे चुनमुन से दोस्त भी जुड़ चुके हैं, और वो इतने छोटे हैं कि मैं तो यही सोच रही हूँ कि वो आखिर क्या हमें सुनाने जा रहे हैं। लेकिन चलो उससे पहले करते हैं उनसे बात। हेलो प्रज्ञान।
4: हेलो।
0: अच्छा प्रज्ञान, जैसे कि आज हम दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आपके भी स्कूल में दोस्त है?
4: स्कूल में भी, ट्यूशन में भी है।
0: अरे वाह, तो आपको दोस्त बनाना बहुत पसंद है?
4: हाँ।
0: अच्छा प्रज्ञान, वैसे हमारी जो दोस्ती होती है ना, वो तो हमारे मम्मी पापा से भी होती है, हमारे भाई बहन से भी होती है। तो क्या आपको अपने मम्मा और पापा में से कौन ज्यादा पसंद है, ये बताओ मुझे।
4: पापा मेरे दोस्त बनते हैं।
0: अच्छा, पापा आपके साथ दोस्तों की तरह खेल भी खेलते हैं?
4: जब पापा की ऑफिस की छुट्टी होती है तब तब वो मेरे साथ खेलते हैं।
0: अरे वाह, तो प्रज्ञान से तो हम बहुत सारी बातें करेंगे ही, लेकिन चलो उससे पहले जान लेते हैं कि प्रज्ञान आज आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनाने वाले हो, आज आप हम सभी के लिए क्या लाए हो?
4: मेरे दोस्तों, मैं वो कविता कह रहा था चुन्नू मुन्नू की। चुन्नू मुन्नू दे तो भाई, रसगुल्ले में हुई लड़ाई, झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों को टाट लगाई, आधा तुम लोग मुन्नू बेटा, आधा तुम लोग चुन्नू बेटा, कभी भी नहीं चलना आप में के रहना है।
0: चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, ये कविता तो हम सब ने बचपन में गा रखी है, याद कर रखी है, स्कूल में गा रखी है। और इससे हमें एक बात तो पता चलती है कि हमारे दोस्त बस स्कूल में ही नहीं बनते, हमारे दोस्त तो हमारे भाई बहन भी होते हैं, हमारे दोस्त तो हमारे माता पिता भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, जिनके साथ हम कंफर्टेबल फील करें, जिनके साथ हम अपनी दिल की बातें कर सकें, जो हमें समझे, वही तो होते हैं हमारे दोस्त, है ना रेडियो किड्स?
5: हाँ।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रज्ञान का मन पसंदीदा गाना, जो कि है

0: अच्छा, अब मैं देख रही हूँ कि काफी देर से मैं ही बोले जा रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, ये माइक आप सबको सौंप देती हूँ। आप एक एक करके आना और बताना कि आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या लाए हो।
1: सुहानी दीदी, क्या मैं आपको सुनाऊँ?
0: बिल्कुल पवित्रा, मैं तो इंतजार कर रही हूँ।
1: मेरी कविता का नाम हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जनन की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। अपना पद कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। हम हिमगिरी पे चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। हम भय से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। जनन की जय जय बोलेंगे, अपना सिर बाट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे।
0: अरे वाह पवित्रा। तो दोस्तों, अभी बात हो रही थी दोस्ती की, तो आइए सोनल से सुनते हैं हम एक कहानी, वो भी दोस्ती के ऊपर।
2: जब दोस्ती की बात हो ही रही हो और कृष्णा सुदामा की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्त वो है जो बिना कहे अपने दोस्त की हर मुश्किल आसान कर दे। कुछ ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने किया था। उन्होंने अपने गरीब मित्र की मित्रता का भी मान रखा और उनकी गरीबी को भी हर लिया था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्र

आज भी एक मिसाल के रूप में देखी जाती है। श्री कृष्ण एक राज परिवार के राजकुमार थे और सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता अटूट थी। शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण राजा बन गए और सुदामा का विवाह हो गया और वे गांव में ही धर्म कर्म के कार्य करके अपना जीवन यापन करने लगे। विवाह के पश्चात उनके जीवन में कई सारी परेशानियां आने लगी। जब सुदामा की पत्नी को पता चला कि राजा कृष्ण सुदामा के मित्र है, तो उन्होंने श्री कृष्ण से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कहा, मदद मांगने को कहा और सुदामा को श्री कृष्ण से मिलने भेजा। अपनी पत्नी की जिद के आगे सुदामा की एक ना चली और वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका को देख वे हैरान रह गए। वह सभी लोग सुखी और संपन्न थे। सुदामा किसी तरह कृष्ण जी के बारे में पूछते हुए उनके महल तक पहुंचे और जब पहरेदारों ने उनसे पूछा कि श्री कृष्ण से क्या काम है, तो उन्होंने बताया कि कृष्ण मेरे मित्र है। ये जानकारी द्वारपालों ने जब श्री कृष्ण को दी कि कोई सुदामा नामक ब्राह्मण उनसे मिलने आया है, तब राजा कृष्ण अपने मित्र के आने की खबर पाकर स्वयं ही नंगे पैर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। उनके पैरों को अपने हाथों से धोने लगे। नंगे पैर होने के कारण सुदामा के पैरों में कांटे चुभे थे। भगवान श्री कृष्ण ये देख रोने लगे। फिर कन्हैया ने अपने बाल सखा से पूछा कि मेरे लिए क्या भेंट लाए हो, तो पहले सुदामा ने संकोच किया, फिर एक पोटली श्री कृष्ण को दी जिसमें सूखे चावल थे। श्री कृष्ण ने उन चावलों को बड़े शौक से खाया। इसीलिए जब भी दोस्त की बात होती है तो श्री कृष्ण और सुदामा की मिसाल दी जाती है।

0: मेरे खामोशी को पहचान लेता है, बिना कुछ कहे सब कुछ जान लेता है, मेरे गमों को भी बांट लेता है और कभी कभी बेवजह डांट लेता है। जीवन के हर पड़ाव में मेरा मजबूत सहारा है, एक दोस्त है मेरा जो मुझे बहुत प्यारा है। तो रेडियो किड्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों की, अपने दोस्तों के। तो मैं आपसे एक एक करके पूछना चाहती हूँ कि आप बताओ कि आप एक अच्छा दोस्त कैसे बन सकते हो, एक अच्छे दोस्त की क्या क्या निशानी होती है। तो चलो शुरू करते हैं कृतिका से।
1: अच्छे दोस्त की निशानी होती है कि वो अपने दोस्तों की मदद करें और उन्हें खुशहाल रख।
0: अरे वाह, मदद करना और अपने दोस्तों को सदैव ही खुश रखना, ये तो बहुत अच्छी बात बोली। तो चलो पवित्रा से जानते हैं। पवित्रा, आप बताओ कि आप खुद एक अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हो।
2: मैं अपने दोस्तों को खुश रख सकती हूँ।
0: और आप वो उन्हें खुश कैसे रखोगी?
2: अच्छे काम करके और उनकी मदद करके।
0: बिल्कुल सही पवित्रा। तो चलो अब चलते हैं सोनल के पास।
3: मेरा भी यही कहना है कि हम अपने दोस्तों की मदद करें, जब वो कोई होमवर्क या कुछ भी मदद मांगे तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उनका साथ भी देना चाहिए किसी बात पर।
0: अभी सोनल ने बात की कि हमें अपने दोस्तों का साथ भी देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं तुमसे पूछती हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त कोई गलत काम कर रहा होगा तो क्या आप उसका साथ दोगे?
3: नहीं, जब वो गलत काम करेगा तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि नहीं ये गलत है और उसको सही राह पर ले जाना पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही पवित्रा, आपका क्या कहना है इस पर?
2: हमें उसको गलत काम करने से रोकना होगा और उसको अच्छे काम बताने होंगे।
0: और कृतिका, आप?
1: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हमें उसे बुरे काम करने से रोकना चाहिए और अच्छे काम करने के लिए बोलना चाहिए।
0: अरे वाह, तो हमारे रेडियो किड्स तो बहुत ही ज्यादा समझदार है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने इन शब्दों पर हमेशा खड़े रहेंगे और जो यहाँ आप माइक के सामने बोल रहे हो, माइक के पीछे भी वो सब करोगे। और मेरे छोटे प्रज्ञान दोस्त, आप बताओ कि आप अपने दोस्तों को कैसे खुश रखोगे?
2: उनके साथ लड़ाई नहीं करूंगा, पास प्यार से लाऊंगा।
0: मैं उनके साथ लड़ाई नहीं करूंगा और मैं उनके साथ प्यार से रहूंगा। अरे वाह प्रज्ञान दोस्त, आपने ये बहुत अच्छी बात करी है। तो मुझे आप यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हो कि आप अपने दोस्तों के साथ प्यार से रहोगे?
2: हाँ।
0: अरे अरे अरे, मेरे सारे दोस्त कुछ ना कुछ कहानी कविता गीत बोल के चले गए, लेकिन इतनी देर से कृतिका कुछ बोल ही नहीं रही। कृतिका, आप भी बताओ कि आज आप अपने श्रोताओं के लिए क्या लाई हो।
1: मैं एक कविता लाई हूँ।
0: एक कविता लाई हो, उस कविता का नाम क्या है?
1: दोस्त पर कविता है।
0: दोस्त पर कविता है, तो चलो सुनाओ।
1: जात पात ना देखे दोस्ती, ऊंच नीच ना माने दोस्ती, सब रिश्तों से प्यारा रिश्ता, दोस्ती का ये न्यारा रिश्ता। जब मैं हंसता दोस्त भी हंसता, जब मैं रोता दोस्त भी रोता, सुख दुख में हम साथ ही रहते, वादा हमेशा पूरा करते, दोस्ती का हम पाठ है पढ़ते, जीवन पथ पर आगे बढ़ते, हम आपस में कभी न लड़ते, दोस्ती में हम प्यार से रहते।
0: तो आइए सुनते हैं कृतिका का फेवरेट सॉन्ग जो है
1: इतनी सी।

तो दोस्तों, जैसे कि आप सुन सकते हैं कि हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हर सप्ताह आते हैं हमारे लिए और आप सभी श्रोताओं के लिए कहानी, कविता, गीत लाते हैं और बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाते हैं और बहुत सारा ज्ञान बटोर के जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी रेडियो किड्स का हिस्सा बने, या आपके जानकार में कोई है जो हमारे साथ आकर रेडियो किड्स में शामिल होना चाहता है, तो आप अपनी जानकारी हमें fmgradiokids@gmail.com पे भेज सकते हैं और आप भी रेडियो किड्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज हमने बात करी दोस्ती पर और हमने जाने अपने दोस्तों से उनकी दोस्ती के किस्से और सुनी बहुत सारी कविताएं और बहुत सारे गाने। तो मुझे तो ये कार्यक्रम आज का बहुत पसंद आया और अगले सप्ताह भी हम फिर मिलेंगे।

अभी हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोता सुन रहे थे उनका मनपसंद कार्यक्रम रेडियो किड्स, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: 都这里广播电台，这是普通话节目，播送到这里，谢谢大家收听，再会。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना जी हाँ नमस्कार, मैं हूं हेमंत और मेरे साथ हैं अभिनव झा। अभिनव, किसी ने खूब कहा है कि ख्वाहिशें से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना पड़ता है, कुछ नहीं मिलता बिना कोशिश के, हुकूमत अपना वजूद खुद ही बनाना पड़ता है। जैसा कि कल भारत का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बॉक्सिंग के अंदर भारत ने काबिले तारीफ परफॉर्मेंस दिखाई, जबरदस्त खेल देखने को मिला भारत के खिलाड़ियों की तरफ से, और क्या कहेंगे कल के मैचों के ऊपर अभिनव?
2: बिल्कुल, सबसे पहले तो नमस्कार श्रोताओं, और कल जो कॉमनवेल्थ मुकाबले हुए, जहां पे बॉक्सिंग की खासतौर पे बात करें, भारत के 10 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे थे और उसमें से 7 गोल्ड आए हेमंत, जो कि एक खुद में ही एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था, ऐतिहासिक पल था भारतीय खेल प्रेमियों के लिए। इन सब पे बात करेंगे, सारी खेल जानकारियां देंगे, और साथ ही बात होगी कॉमनवेल्थ गेम्स की, साथ ही बात होगी कॉमनवेल्थ गेम्स टेबल टेनिस की जो दिल्ली में हो रही है,
1: बात करेंगे बैडमिंटन 2026 की, ताइपी में चल रही ओपन बैडमिंटन पे बात करेंगे, अंडर 17 वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप पे बात होगी, ड्यूरेंट कप की, और बात होगी फिटनेस पर आधारित कार्यक्रम संडे ऑन साइकिल की।
3: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: बिल्कुल अभिनव, आप चलते हैं इसके बाद

0: सीधा कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट पर और सुनते हैं ये जानकारी।
1: The Commonwealth Games।
2: जब सपनों को मेहनत का साथ मिलता है तो उपलब्धियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। खेल केवल प्रतिस्पर्धा का नाम नहीं बल्कि निरंतर बेहतर बनने की एक सतत यात्रा है। ये धैर्य, अनुशासन और उस विश्वास का उत्सव है जो हर खिलाड़ी को एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। इसी यात्रा में कभी नए कीर्तिमान बनते हैं, कभी नई प्रतिभाएं उभरती हैं और कभी ऐसे क्षण जन्म लेते हैं जिन्हें खेल इतिहास लंबे समय तक याद रखता है। इन्हीं भावना और उपलब्धियों का साक्षी बना हुआ है स्कॉटलैंड का ग्लासगो, जहां जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी अपनी तैयारियों, प्रतिभा और संकल्प की परीक्षा दे रहे हैं। हर दिन नए मुकाबले, नए परिणाम और नई कहानियां इस महाकुंभ को और यादगार बना रहे हैं। भारत के लिए भी प्रतियोगिता का 10वां दिन कई मायनों में विशेष रहा।
3: राष्ट्रमंडल खेलों का आज अंतिम दिन है। कल बॉक्सिंग और एथलेटिक्स दोनों के अंतिम दिन थे और बॉक्सिंग में करिश्मा ही था कि 14 में से 10 फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाज थे और उन्होंने इतिहास रच दिया, अब तक का सबसे उम्दा प्रदर्शन। एथलेटिक्स के अंतिम दिन भारतीय कुल मिलाकर 7 स्पर्धाओं में थे, पदकों की उम्मीद थी और पदक आए भी और सारे रंगों के, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। इसके अलावा जूडो में भी भारतीय दमखम दिखा, ट्रैक साइकिलिंग और बोल्स में भी भारतीय चुनौती थी। राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2026 का 10वां दिन और पूरा लेखा जोखा लेकर उपस्थित हैं हम। खेलों का 10वां दिन और भारतीय बॉक्सर्स ने दिखाया 10 का दम। सिलसिले का आगाज किया 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति पवार ने, सामने स्कॉटलैंड की स्कारलेट सवाना। प्रीति की रिंग कवरेज, फुर्ती और सधे हुए मुक्कों ने सवाना को बाउट से रवाना कर दिया। एक मत से निर्णय प्रीति पवार के पक्ष में रहा 5-0 और दिन की सुनहरी शुरुआत हो गई बॉक्सिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक।
4: मैं बहुत खुश हूँ, मैंने एक अच्छा स्टार्ट किया इंडिया के लिए, आज गोल्ड जीता है, सो मेडल मैं सभी इंडियंस को डेडिकेट करूंगी।
3: 57 किलोग्राम में जैस्मिन लंबोरिया के पास लंबा अनुभव है, विश्व कप की स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी हैं। उनके सामने ब्लू कॉर्नर में थी नॉर्दर्न आयरलैंड की मिशेला वॉल्श। जैस्मिन ने अनुभव का पूरा फायदा उठाया, अपना गार्ड हमेशा ऊंचा रखा, जब जरा भी मौका मिला तो जबरदस्त प्रहार कर दिए। जज सर्वसम्मत थे 5-0 का निर्णय उनके पक्ष में सुनाने को। दूसरी बाउट और दिन का दूसरा स्वर्ण पदक। साक्षी चौधरी अलग ही जीवट वाली बॉक्सर हैं। ट्रायल्स में निखत जरीन और मीनाक्षी हुड्डा को हराकर उन्होंने सनसनी फैला दी थी। उनके मुक्कों की धार कल सही इंग्लैंड की रूबी व्हाइट ने, पूरा स्टेडियम साक्षी बना साक्षी के सनसनाते प्रहारों का। साक्षी ने 5-0 से बाउट जीती और एक बार फिर स्टेडियम में भारतीय राष्ट्रगान की धुन सुनिश्चित कर दी।
5: We Indians are doing very well. From now onwards, we want all the gold medals because we have a strong team and we have trained so hard to win gold medals.
3: भारतीय फौज में एंट्री पाने वाली पहली महिला बॉक्सर राजस्थान की अरुंधति चौधरी के विरुद्ध थी इंग्लैंड की शांटेल रीड 70 किलोग्राम में। लगा वही कहानी एक बार फिर कॉपी पेस्ट की जा रही है जो पहले 4 बार कही जा चुकी थी। 5-0 का निर्णय, भारत की जीत और दिन का 5वां स्वर्ण पदक।
6: गोल्ड मेडलिस्ट एंड कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन रिप्रेजेंटिंग इंडिया अरुंधति चौधरी।
3: इसके बाद 75 किलोग्राम वर्ग में वर्तमान में भारत की सबसे मशहूर बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन रिंग में उतरी। अभी तक बहुत विश्वास के साथ उन्होंने अपनी पिछली सारी लड़ाइयां जीती थी, लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया की एमा सू ग्रीन ट्री उन पर 20 साबित हुई। दूसरे राउंड के बाद निर्णायकों के दिए अंकों को देखें तो दोनों के बराबर थे, यानी तीसरा राउंड निर्णायक होना था। यहां पर एक बार फिर एमा ने बाजी मार ली। लवलीना 1-4 से मुकाबला हार बैठी और उन्हें रजत पदक पर संतोष करना पड़ा।
6: सिल्वर मेडलिस्ट रिप्रेजेंटिंग इंडिया लवलीना बोरगोहेन।
2: अगर किसी मुकाबले ने आखिरी पल तक दर्शकों की धड़कनें बढ़ाए रखी तो वो थे सचिन सिवाच। दोनों मुक्केबाजों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और जीत हार का फैसला आखिरी क्षणों तक टला रहा, लेकिन मुकाबले के अंतिम सेकंड में सचिन के एक जोरदार पंच ने विरोधी को लड़खड़ा दिया और उन्हें स्टैंडिंग काउंट लेना पड़ा। यही पल मुकाबले का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से सचिन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और भारत के स्वर्णिम अभियान में एक

0: और चमकदार अध्याय जोड़ दिया।
1: The Commonwealth Games champion in the red corner from India, Sachin.
2: अभी तो हमारा एम तो अभी एशियन गेम तो नहीं पे ये रहेगा दादा, तो मैं यही चाहूंगा कि आगे आईडिया के खिलाड़ी और अच्छा करें।
0: अगली बारी थी अंकुश पंघाल की। शुरुआती दबाव के बाद अंकुश ने अपने काउंटर पंच और मजबूत डिफेंस के दम पर मुकाबले की तस्वीर बदल दी। उनके प्रतिद्वंदी शीतू पर एक अंक की कटौती भी हुई, जिसका अंकुश ने पूरा फायदा उठाया। आखिरी क्षणों तक उन्होंने बढ़त बनाए रखी और 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से मुकाबला जीतकर भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।
1: And now Commonwealth Games champion in the red corner for India,
0: मणिपुर के चपल बॉक्सर जादूमणि ने एक तिलिस्म मचा रखा था पिछले दिनों, लेकिन कल 55 किलोग्राम में उनका जादू नहीं चला। कुछ तो वो ऑफ कलर रहे तो कुछ हाथ रहा ऑस्ट्रेलिया के जे डिक्सन का। जादूमणि ने अपनी ओर से संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन वो काफी नहीं था। 0-5 से वो ये बाउट हार बैठे, लेकिन सिल्वर मेडल तो उनके गले में आया ही।
3: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश हूँ। टफ फाइट था, इस कंपटीशन में जो मेरा गलती है उसको मैं सुधारने के लिए कोशिश करूँगा।
0: दिन का आखिरी भारतीय फाइनल था सुपर हैवीवेट वर्ग का, जहां सभी की निगाहें नरेंद्र बरवाल पर थी। फाइनल में इंग्लैंड के डोमिनिक थॉमस ने उनकी लय को शुरुआत से ही पढ़ लिया। मुकाबले के आखिरी राउंड में नरेंद्र ने वापसी की पूरी कोशिश की, लगातार हमले भी किए, लेकिन थॉमस हर बार का जवाब देने में सफल रहे। आखिरकार जजों ने सर्वसम्मति से मुकाबला इंग्लैंड के पक्ष में दिया।
4: इससे पहले सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था 2018 गोल्ड कोस्ट में, 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक। यहां पर रहे कुल 10 पदक, लेकिन उनमें से 7 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक। सुनहरे अक्षरों में इतिहास के सीने पर लिखी हुई नई इबारत। ट्रिपल जंप यानी तिहरी कूद में दोहरी सफलता भारत के हिस्से में आई। तमिलनाडु से आने वाले 26 साल के प्रवीण चित्रावेल की खास बात है उनका खुद पर विश्वास। इसके पहले 2022 बर्मिंघम खेलों में वे कांस्य पदक से चूक गए थे, लेकिन कल का स्टेज तो बस उनके लिए ही था। अपने चौथे प्रयास में 16.58 मीटर की कूद उन्हें ले आई दूसरे स्थान पर और भारत के लिए रजत पदक पक्का किया उन्होंने।
5: You know, I'm waiting for this medal 4 years. Last Commonwealth Games I lost medal in 2 centimeters, but this time silver and bronze with India. Hopefully I'll do again next Commonwealth Games in India.
4: सेल्वा प्रभु थिरुमारन, उनकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। बचपन से ही भागने कूदने का जुनून था उनको। बच्चे की जिद देख पिता ने अपनी 4 एकड़ जमीन बेच दी और बेटे ने पिता के त्याग को जाया नहीं होने दिया। 15.52 मीटर अपने 5वें प्रयास में कूदे और भारत के लिए स्पर्धा में 2 पदक पक्के हो गए।
6: I could have jumped little far, but you know, it's all about I get the medal for the country. I'm so feel proud, you know.
4: अब बात पैरा शॉटपट F57 स्पर्धा की। गजब प्रदर्शन, एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक की आस पूरी की इस स्पर्धा ने, और ये आस पूरी की बिहार के लाल सोमन राणा ने। सोमन ने अपना गोला फेंका 13.40 मीटर तक, और एथलेटिक्स में भी भारतीय राष्ट्रगान की धुन पक्की करती। एक माइन विस्फोट में अपना पैर गवा दिया था सोमन ने, लेकिन अपनी हिम्मत और अपने संकल्प शक्ति को नहीं गंवाया। पिछले खेलों में वो रजत पदक लेकर आए थे और यहाँ पर सारी कमी दूर कर दी उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर।
7: बहुत खुश लग रहा है क्योंकि इतना बड़े मंच पर और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल और 2 गोल्ड एंड सिल्वर मेडल दोनों।
4: सोमन के साथी शुभम जुएल, उन्होंने अपने अंतिम प्रयास में अपना पूरा दम लगा दिया। हुंकार भरकर जो गोला फेंका वो गया 13.28 मीटर दूर, रजत पदक उनका हुआ। इत्तफाक है कि दोनों ही फौज में हैं और शुभम ने तो अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग भी फौज में आने के बाद बस 3 साल पहले ही शुरू की थी। इन दोनों पैरा एथलीटों को, उनके जज्बे, संकल्प और उनके जीवट को हमारा नमन है। 10,000 मीटर में गुलवीर सिंह ने रजत पदक पाया था और अब बारी थी 5,000 मीटर की। आखिरी लैप में जोर लगाया, लेकिन फिनिशिंग लाइन पार करने वाले तीसरे एथलीट बन पाए कांस्य पदक। समय रहा 13:24.35। एक और अनूठी बात, एक ही गेम्स में एथलेटिक्स में 2 पदक कमाने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए वो। पैरा 1500 मीटर में रमेश षणमुगम 7वें स्थान पर रहे। बदकिस्मत रही 10,000 मीटर रेस वॉक में प्रियंका कांस्य पदक से चूक गई, 4थे स्थान पर रही, तो इसी दौड़ में रवीना अपनी दौड़ पूरी नहीं कर सकी। वहीं पोल वॉल्ट में देव

0: कुमार मीणा और उनके साथ ही ट्रेनिंग करने वाले कुलदीप कुमार उनसे उम्मीदें थी। देव 5.30 मीटर की दूरी के ऊपर नहीं जा सके, चौथे स्थान पर रह गए, जबकि कुलदीप छठे स्थान पर आए। 4x400 मीटर मिश्रित रिले में भी भारतीय टीम कभी भी प्रतियोगिता में दिखी ही नहीं और छठे स्थान पर आई।
1: जूडो मैट पर कल भारत का अभियान उतार चढ़ाव से भरा रहा। महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में उन्नति शर्मा ने बेहतरीन मैट अवेयरनेस और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की कोना क्रिस्टी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। हालांकि अंतिम चार के मुकाबले में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की साया मिडिल्टन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कांस्य पदक मुकाबले में उन्नति ने शानदार वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की स्काई नोस्टर को एपों के जरिए मात दी और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया। वहीं पुरुषों के 81 किलोग्राम वर्ग में हर्ष तोकस का सफर भी रोमांच से भरपूर रहा। क्वार्टर फाइनल में हार के बाद उन्होंने रेपेचाज में समोआ के पेनियामिना परसिवल को एपों से हराकर शानदार वापसी की और कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई। हालांकि पदक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की केइशिन ओची ने उन्हें मात दी और हर्ष का अभियान चौथे स्थान के साथ समाप्त हुआ। इसके अलावा पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में करणजीत सिंह मान क्वार्टर फाइनल में कनाडा के गुयोम गोलिन से हार गए। महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में इनुगनबी ताखिलमांबम ने भी भरपूर संघर्ष किया। क्वार्टर फाइनल में कनाडा के चार्ली थिबॉल से हारने के बाद उन्हें रेपेचास के जरिए वापसी का मौका मिला, लेकिन इंग्लैंड की जेमिमा यीट्स ब्राउन के खिलाफ वो जीत दर्ज नहीं कर सकी। कुल मिलाकर जूडो मैट पर भारत के लिए ये दिन संघर्ष, वापसी और सीख तीनों का मिश्रण रहा। साइकिलिंग ट्रैक पर भारत की उम्मीदें तेज रफ्तार से आगे तो बढ़ी पर फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाई। स्प्रिंट से लेकर स्क्रैच रेस तक भारतीय खिलाड़ियों ने पूरा दम लगाया, लेकिन अगले दौर का टिकट हासिल नहीं हो सका। पुरुष स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में रोजित सिंह यांगलेम ने 10.297 सेकंड के समय के साथ 22वें स्थान पर रहते हुए अपनी टाइम ट्रायल पूरी की। वहीं रोनाल्डो सिंह लेतोंजाम 10.331 सेकंड के साथ 24वें और डेविड बेकहम 25वें स्थान पर रहे। इसके बाद 10 किलोमीटर स्क्रैच रेस में भी भारत की चुनौती आगे नहीं बढ़ सकी। हर्षवीर सिंह सेखो और दिनेश कुमार अपनी अपनी हीट पूरी नहीं कर सके। After rewriting history in Birmingham, India's lawn bowlers arrived in Glasgow carrying the hopes of building on that remarkable legacy. The sport that once delivered India's first ever Commonwealth Games gold and silver medals had once again raised expectations. This time, though, the decisive moments belonged to the oppositions. In the men's pairs, Navneet Singh and Dinesh Kumar looked in outstanding touch throughout the sectional stage. Four consecutive victories had put the Indian duo firmly on course for the knockout rounds, making their clash against England's Nick Bread and Jamie Walker a crucial one. The contest lived up to its billing, with neither side willing to give an inch before it was eventually decided in a tie break. England held its nerve in the decisive moments, bringing India's

0: राजेश भाई, ये दोस्ती के महत्व को बताता हुआ अभी ये
1: रागनी सुन रहे थे योगेश कुमार और साथी से।
0: और कहते हैं ना कि सच में दोस्ती के बिना क्या रहना, अच्छे दोस्तों के बिना क्या जीना। और इसीलिए आज हम ये मित्रता दिवस मना रहे हैं, तो हमारे सभी जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, उनको भी मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपके पास कुछ और भी संदेश आए हुए
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: बहुत सारे संदेश हैं और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने भाई बहन के जो आए हैं मैसेज वो लेने के शामिल करूँ, ताकि कोई नाम छूटे नहीं हो, कोई गिला शिकवाना किन्हीं का रह जाए। तो ये श्रीपाल मार्शल को सुनने के लिए गौहांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा का आया है। अगला मैसेज है पुरखुलूस आदाब कबूल करें, इन्होंने लिखा है। ये दादा बोबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा, हसन, बाबू, मिफरा, बेबी और सादिया। उसके अलावा अगला जो मैसेज है यह है भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल से विजेंद्र कुमार, जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल, वानी। इसके अलावा ये अगला मैसेज है और चंडीगढ़ से सतीश तनेजा और विमल अनेजा का।
0: इसके अलावा मेरे पास भी कुछ संदेश आए हैं। और ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा का इन्होंने लिखा है कि कोई भी रागिनी हमें सुनवा दें। और इसके अलावा कुछ और संदेश हैं मेरे पास जो कि आए हैं। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का। उत्तराखंड से भी मैसेज आया हुआ है। मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, रियाज, रिफाकत, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियासत हुसैन सिद्दीकी। और इसके अलावा बिहार से भी हमारे पास संदेश आए हैं। बक्सर से शरीफुद्दीन

0: अंसारी, फातिमा, असलम, अकरम, अल्ताफ और डुमराव बिहार से ही डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी का। इसके अलावा सारिमपुर बक्सर से ही राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, महताब अंसारी, इन सब का भी संदेश आया हुआ है।
1: और सिपल मार्शल को सुनने के लिए जो अगला मैसेज है, ये गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद, पुष्पेंद्र। उसके अलावा ये अगला है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और मेराज जहां। इसके अलावा अगला खत है गाज़ियाबाद के जटवारा से शीशपाल अकेला। अगला मैसेज है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, योगेश, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और इनका पूरे परिवार।
0: तो दोस्तों, आप सबकी पसंद पर हम जो है आपको श्रीपाल मार्शल की आवाज़ में सुनवाते हैं। और आप दोस्तों जानते ही हैं और राजेश भाई आप भी जानते हैं कि ये अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त के महीने में सावन तो आता ही है लेकिन साथ ही में हमारा 15 अगस्त भी तो आता है, स्वतंत्रता दिवस। और हमारा प्यारा झंडा तो सबसे निराला झंडा है। वो कहते हैं ना, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। तो अगस्त के महीने में हमें अपने देश के प्रति कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है और होना भी चाहिए, अगस्त में नहीं पूरे साल भर और हमेशा। तो इसी से जुड़ा एक लोकगीत है।
1: बिल्कुल, देशभक्ति को ओतप्रोत करने वाला हमारा सबसे प्यारा झंडा, हमारा भारत देश महान।

0: तो राजेश भाई, अभी हमारे श्रोताओं ने सुना श्रीपाल मार्शल की आवाज़ में ये देशभक्ति गीत कि सबसे प्यारा झंडा हमारा।
1: और काफ़ी सारे जो मैसेजेस हैं वो आए हैं तेजवीर भिदोरी को सुनने के लिए, तो उनसे हम सुनवाएंगे। लेकिन आपके जो मैसेजेस हैं, मैं कोशिश हमारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज लें, और इसीलिए अरुणेश भी लगातार एक एक मैसेज छांट के लगातार रख रहे हैं अपने पास। और ये आपका मैसेज है मेहर नगर उमखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गोवानकर, श्रीमती सरिता, प्रणीता, सिद्धांत और अर्जुन। अगला हरियाणा के गांव चौधरी वास से मांगे राम, सतोर, ऋतु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार ने लिखा है। ये सुनना चाह रहे हैं तेजवीर विधोड़ी को। ये अगला खत है रामगढ़ कैंट से महेंद्र सोढ़ी ठाकुर साहब। उसके अलावा ये अगला मैसेज है बटीडा रोड मंडी डब्वाली से राजन नारंग, अर्जुन, मोहित, तानिया। उसके अलावा ये अगला मैसेज है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और प्रकाश अरोड़ा का। उसके अलावा ये आगे बढ़े हैं हम तो बुलंदशहर चौखंटी ऊपरकोट मोहल्ला से है मोहम्मद सईद, निगहत, शाहनवाज, सरफराज, सुजीन, अरजान। उसके अलावा ये अगला है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष, डब्बू। और उसके अलावा ये अगला मैसेज है जैन मंदिर गली कुरावली से राशिद, नसरीन, नौरीन, आसना और मोहम्मद का।
0: इसके अलावा मेरे पास भी कुछ संदेश आए हैं। ये है घिसू दिलवारे जी, राजपुर मध्य प्रदेश से। इसके अलावा गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह गिल, राजदीप सिंह, गुरलाल, अविराज, गुरुनूर सिंह, शुभदीप सिंह। इसके अलावा एक और मैसेज आया है राजू अग्रवाल, केशव और विवेक का, चौधरी वास हिसार से। और कुछ और संदेश की अगर बात करें तो गाजीपुर से मैसेज आया है सुरेश उर्मिला दीपक स्वाति का। इसके अलावा जसपुर उत्तराखंड से एक संदेश आया है रियासत हुसैन, नाजमा रियाज, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा, नूर। और कुछ और मैसेज आए हैं ये भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। और इसके अलावा गांव गोविंदगढ़ माझी वाला, श्री करनूपुर राजस्थान से, राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला, गुड्डू, जीनू, मनु, शिव, करनपुरी, इस्माइल टुटेजा। और एक और संदेश ले लेते हैं जल्दी से, ये राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से, सिद्धार्थ, हीरामण, किशोर, संजय, हिम्मत राव, दीपक कुन्हाड़े और राजेंद्र गुप्ता का। तो ये सब क्या सुनना चाह रहे हैं?
1: तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं तेजवीर विधूड़ी से शिवशंकर भोले भंडारी को लेकर के ये भजन।

0: उपदेश सुन रहे थे तेज बीर विधुरी से, और इसी के साथ ग्राम संसार कार्यक्रम घड़ी घड़ी के संपन्न करने का वक्त अब हो गया है। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम
1: राम
0: राम,
1: राम।
0: और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिव नंदन लाल।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते

सकते। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक

0: 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, छात्र मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन समझौतों में से एक के अंतर्गत चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक प्रौद्योगिकी आधारित पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद और ऑस्ट्रेलिया के रीबाउंड संस्था के सहयोग से लागू की जाएगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर में प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। केरलम में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जर थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं की 78 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: सभी किसान भाई बहनों को अरुणेश कुमार और राजेश कुमार का राम राम। तो किसान भाई बहनों, आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत को लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं और आप सभी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आज अपने इस कार्यक्रम में हम आपको पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत तो सुनाएंगे ही, उपदेश भी सुनाएंगे और इसके साथ साथ आपके संदेश भी लेंगे और आपको एक योजना नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी बताएंगे और आपके जो सवाल आए हैं खेती किसानी से संबंधित जो आपकी समस्या है उसका समाधान भी करेंगे।
1: बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले में जो फरमाइश में कुछ नाम रह गए हैं वो पहले बताना चाहेंगे कि ये सुरेश चंद गोला को सुनने के लिए जो मानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति का मैसेज आया है। मध्य प्रदेश के राजपुर से घेसू दिलवारे का संदेश आया है। स्वर्ण सिंह गांव लोहरगढ़ ठाकुरवाला से दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज, गुरनूर और सुखदीप सिंह का मैसेज आया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा का मैसेज आया है। इसके अलावा इनको सुनने के लिए चौधरी वास हिसार से राजू अग्रवाल, केशव, विवेक काया है और ये अगला मैसेज है। सालेम महासमुंद छत्तीसगढ़ से जीतू ध्रुव, केवल, किरण, दिव्यांशी, खेमू और
0: का। इसके अलावा एक संदेश हमारे पास भी आया है जस जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का।
1: इसके अलावा जो है वो इनको सुनने के लिए जसपुर उत्तराखंड से रियासत, नाजमा, रियाज, मोहम्मद, समरीन और उसके अलावा जो अगला मैसेज है वो आया है गांव नलोई सिवान सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन, राजबाला, कार्तिक, कुसुम और दिव्यदान।

0: का, और हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान इरफान खान, और वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, और जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल विलेस, और मेरठ से कविता गौड़ और दिग्दर्शन का।
1: इसके अलावा राजस्थान के गोविंदगढ़ मांझी से राजू टुटेजा, खुशदिल उर्मिला टुटेजा। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं सुरेश चंद गुला से।

0: तो अभी हमारे किसान भाई बहनों ने ये उपदेश सुना, और सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोले का ये महीना कहा जाता है, और हम सभी भोले के भक्त हैं, और भगवान भोले सबका मंगल करें, यही हम जो है कामना करते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा कर लेते हैं राजेश भाई नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में।
1: बिल्कुल, ये वो योजना है जिसका उद्देश्य महिला स्व सहायता समूह को कृषि ड्रोन उपलब्ध कराकर उन्हें ड्रोन सेवा प्रदाता बनाना और किसानों को आधुनिक कृषि सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराना है।
0: बिल्कुल, और इस योजना के तहत 2024-25 में और 2025-26 की अवधि के दौरान लगभग 15,000 चयनित महिलाओं को स्वयं सहायता समूह यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उनको ड्रोन प्रदान किए गए, और इस वजह से उनको ये सुविधा दी गई कि वो किसानों को किराए पर कृषि संबंधित सेवाएं जैसे कि उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव करने वाली जो दवाइयां आती हैं ये सब दे सकें और ड्रोन की सरलता से उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि महिलाएं एक तरफ सशक्त होती हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमारे किसान भाई बहनों को भी काफ़ी इससे मदद मिल जाती है।
1: बिल्कुल अरुणेश, और नमो ड्रोन दीदी योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय सेंट्रल सेक्टर योजना है। और जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से जहां एक तरफ सशक्त बनाना है, वहीं खेतों में ड्रोन तकनीक का उपयोग बढ़ाना, किसानों की जो लागत है वो कम करना और कार्यकुशलता को बढ़ाना है। और इस योजना की जो प्रमुख विशेषताएँ वो ये है कि 15,000 चयनित महिलाएँ SHG को ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। ड्रोन पैकेज पर 80% तक केंद्रीय वित्तीय सहायता, अधिकतम 8 लाख तक देने का प्रावधान है। शेष राशि के लिए ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। और एक सदस्य को 15 दिन का ड्रोन पायलट प्रशिक्षण, दूसरे सदस्य को परिजन को 5 दिन का ड्रोन सहायक प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसके लिए जो पात्रता है वो ये है कि महिला स्व सहायता समूह का सदस्य होना चाहिए, SHG का संबंधित सरकारी मानदंडों के अनुसार चयनित होना चाहिए हो। योजना का लाभ व्यक्तिगत किसानों के बजाय चयनित महिला SHG को दिया जाता है। तो ये इस योजना की जो है वो खास बातें हैं और जो कई इसको लेकर के जो पहल है वो लगातार सरकार की तरफ से, आप अगर देखें तो जितनी भी योजनाएं हैं, सिर्फ नमो ड्रोन दीदी योजना ही नहीं, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आम जनता है, जो लोग हैं, उनको उसका बेनिफिट मिले। और कई ऐसी योजनाएं हैं जो खासकर किसान भाई और बहनों को लक्ष्य कर वो योजनाएं लाई गई।
0: बिल्कुल, और इस योजना की एक और अच्छी बात यह है कि जो भी महिलाएं इस योजना के से जुड़ना चाहती हैं उनका अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG यानी स्वयं सहायता समूह है वो बना सकती हैं, और उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, टेक्निकल रूप से उनको दक्ष बनाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, और महिला स्व सहायता समूहों द्वारा ड्रोन स्प्रे सेवा किराए पर किसानों को प्रदान करने के लिए उन्हें वार्षिक 1 लाख रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित करने का मौका भी मिलेगा। तो ये बेहद अच्छी योजना है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हैं और अपने किसान भाई बहनों का मनोरंजन करते हैं।
1: बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं।

0: ये सुन रहे थे सूरज सिंह अधाना से। और अब मैं देख रहा हूँ कि अवनेश भाई, काफ़ी देर से आप जो है वो लेटर जो है संदेश, उसमें से सवाल निकाल रहे थे आप और पढ़ रहे थे लगातार, तो क्या है
1: हाँ
0: वो?
1: जी बिल्कुल, हमारे पास एक जो है मैसेज आया है और बहुत ही अच्छा सवाल दरअसल इन्होंने किया है। और जैसा कि आप जानते ही हैं राजेश भाई, कि आजकल का जो मौसम है वो बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम की वजह से क्या होता है ना कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो अपना खेती किसानी से संबंधित जो भी कार्य करते हैं तो उसमें वो अतिरिक्त सावधानी रखते हैं। इसीलिए हमारे पास जो एक संदेश आया है, और ये दरअसल सवाल के रूप में इन आया है कि क्या जो है हम आजकल का जो मौसम है यानी जो बारिश का मौसम है इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जैसे जो किसान भाई हैं उनको कौन कौन से खेती किसानी से संबंधित कार्य करना चाहिए। और ये मैसेज आया है हनुमानगढ़ फाजिल्का से रमन वर्मा, अमन दिव्यांश का और मदन लाल वर्मा जी का। तो आप क्या कहेंगे कि भाई हाँ ये तो बात सही है, कहीं कहीं हमारे देश के कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, असम में तो बाढ़ आई हुई है, तो कहीं पर जितनी उम्मीद है उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। मौसम विभाग लगातार बारिश को लेकर के एक अपना भविष्यवाणी करता है। तो ऐसे में जो हमारे किसान भाई बहन हैं, जो हमारे श्रोता हैं, जो अभी इस हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो खेती और किसानी से संबंधित कौन कौन से कार्य कर सकते हैं इसके बारे में बताइए।
0: बिल्कुल, तो वर्मा जी का बड़ा अच्छा सवाल है, और इनके सवाल के लिए जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि जो वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वो किसी प्रकार का छिड़काव ना करें, खड़ी फसल और सब्जी नर्सरियों में उचित प्रबंधन रखें, दलहन फसलें और सब्जी नर्सरी में जल निकासी की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त रखें। धान की फसल में यदि पौध का रंग पीला पड़ रहा हो, पौधे की ऊपरी पत्तियां पीली और नीचे की हरी हो, तो इसके लिए जिंक सल्फाइड का इस्तेमाल करें और उसको हेप्टाहाइड्रेट 21% को 6 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से 300 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। इसके अलावा कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से किसानों को ये भी सलाह दी गई है कि बाजरा, मक्का, सोयाबीन और सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का कार्य जो है वो अगर मौसम साफ हो तो शीघ्र करें, और सभी फसलों में सफ़ेद मक्खी चूसक कीटों को नियमित निगरानी करें। ये वो समय है जब चारे के लिए ज्वार की बुवाई के लिए उपयुक्त समय है, और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि किसान भाई पूसाचरी 9, पूसाचरी 6 और अन्य संकर किस्मों की बुवाई करें और बीज की मात्रा 40 किलोग्राम हेक्टेयर रखें। जिन किसानों के टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन, अगेती, फूलगोभी की पौध तैयार है वे मौसम को मद्देनज़र रखते हुए रोपाई मैंडों पर करें और जल निकासी की उचित प्रबंधन रखें। इसके अलावा कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से भी सलाह दी गई है किसानों को कि इस मौसम में किसान ग्वार यानी पूसा नवबहार, दुर्गा बहार, मूली पूसा चितकी, लोबिया पूसा कमल, भिंडी पूसा A4 सेम और पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, पालक पूसा भारती, चौलाई जो कि पूसा लाल चौलाई, पूसा किरण आदि फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार हो तो बुआई ऊंची मेड़ों पर कर सकते हैं। बीज किसी प्रमाणित जगह से खरीदें, जल निकासी का उचित प्रबंधन हो। किसान वर्षाकालीन प्याज की पौध की रोपाई इस समय कर सकते हैं, जल निकासी का उचित प्रबंधन रख

0: इस मौसम में किसान स्वीट कॉर्न यानी माधुरी और वीन ऑरेंज, साथ ही बेबी कॉर्न HM4 की बुवाई कर सकते हैं। जल निकास का उचित प्रबंध करें। कद्दू वर्गीय और अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है क्योंकि वे परागण में सहायता करती है, इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें। कीड़ों और बीमारियों की निरंतर निगरानी करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें और सही जानकारी लेने के बाद ही दवाइयों का प्रयोग करें। और आखिर में ये कि किसान प्रकाश पंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी लाइट ट्रैप। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बड़े बर्तन में पानी और थोड़ा कीटनाशक दवाई मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच रख दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल में गिरकर मर जाएंगे। इस प्रपंच से आप अनेक प्रकार के जो हानिकारक कीटों का नाश हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल राजेश भाई, आपने तो काफ़ी विस्तार से हमारे किसान भाई बहनों को बता दिया है कि आजकल के मौसम को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ करना चाहिए। और ये जो आपने उनको जानकारी दी है, ये जो है जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे जो आपकी बातचीत होती रहती है उसके आधार पर आपने ये हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अपने किसान भाइयों का मनोरंजन कराते हैं
0: और सुनते हैं माटी के लिए लाल मेरा वो क्या कह रहे हैं योगेश कुमार और उनके पूरे साथी।

0: और इसी के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम कृषि जगत का समय समाप्त हो रहा है। तो हम अपने सभी किसान भाइयों को कहते हैं
1: विदा। तो
0: और
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार परासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7:35 हुए हैं। प्रस्तुत है गजल।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे गज़ल। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन को मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की। दिल्ली पुलिस ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। उत्तरी रेलवे के दिल्ली मंडल ने नई दिल्ली और दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को झंडी दिखाकर रवाना किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
5: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको

0: ये संकल्प लेना है हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन और वैधानिक उत्तराधिकारियों को मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार 5,00,000 रुपए से 7,50,000 रुपए तक की मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित यह योजना पीड़ित परिवारों को निर्धारित परिस्थितियों में समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के साथ प्रशासनिक उत्तरदायित्व को और अधिक मजबूत करेगी। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना दिल्ली जेलों में कैदियों की मृत्यु होने पर मुआवजा भुगतान योजना 2025 के नाम से लागू होंगी। योजना केवल उन मामलों पर लागू होंगी जिनमें इस योजना की अधिसूचना की तिथि और उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। अधिसूचना के अनुसार कैदियों के बीच आपसी झगड़े अथवा जेल कर्मियों द्वारा कथित यातना या मारपीट के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 7,50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, चिकित्सा और पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में 5,00,000 रुपए का मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक मृत्यु अथवा बीमारी से हुई मृत्यु के मामले में मुआवजा देय नहीं होगा। इसके अलावा जेल से फरार होने अथवा वैध अभिरक्षा से भागने के दौरान हुई मृत्यु और आपदा या विपदा के कारण हुई मृत्यु भी इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होंगी। योजना के तहत संबंधित जेल अधिकारी को प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के अंतिम कारण, कैदी के चिकित्सा इतिहास तथा मृत्यु से पूर्व उपलब्ध कराए गए उपचार का विवरण महानिदेशक दिल्ली को भेजना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार कानून के शासन, मानवीय गरिमा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मयूर विहार फेज 2 में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल की साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सा सेवाओं का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की तथा उनके अनुभव, सुझाव और अपेक्षाएं सुनी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हर मरीज का विश्वास सर्वोपरि है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा है कि किसी भी शिक्षण संस्थान की असल पहचान केवल उसकी रैंकिंग या अच्छी आधारभूत संरचना से नहीं, बल्कि उन जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों से होती है जिन्हें वो पीढ़ी दर पीढ़ी तैयार करता है। उपराज्यपाल ने यह बात दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित किरोड़ी मल कॉलेज के ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उपराज्यपाल ने कहा कि किरोड़ी मल कॉलेज 7 दशकों से अधिक समय से दिल्ली विश्वविद्यालय के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सभी 6 विदेशी नागरिक अपनी यात्रा के दौरान तय 15 दिन की समय सीमा से ज्यादा समय तक राजधानी के होटल में रुके पाए गए। पुलिस ने कहा कि विदेशी नागरिक के पास से पासपोर्ट, वीजा और यात्रा से जुड़े दस्तावेजों की जांच की मांग की गई, साथ ही विदेशी पंजीकरण कार्यालय के जरिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा विदेशी पंजीकरण कार्यालय ने उनके आने जाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं और देश से वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी 6 लोगों को हिरासत केंद्र में भेज दिया गया है। उत्तरी रेलवे के दिल्ली मंडल ने रेलगाड़ियों में बिना टिकट की यात्रा की समस्या को रोकने के लिए नई दिल्ली और दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि यात्री वैध

0: टिकट के साथ यात्रा करे और रेलगाड़ियों में अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके। इन अभियानों के परिणाम स्वरूप कई लोगों को पकड़ा गया और जुर्माना भी वसूला गया। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि जांच के दौरान बिना टिकट और अनियमित टिकट वाले कुल 101 यात्रियों का पता चला और 92,000 रुपए से अधिक का रेलवे राजस्व वसूला गया। दिल्ली सरकार ने राजधानी की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक सक्षम, आधुनिक और पेशेवर बनाने की दिशा में दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DSDMA के अंतर्गत कार्यरत स्टाफ के मानदेय में 100% तक की वृद्धि करने की घोषणा की है।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय उन कर्मियों को न्याय दिलाने की दिशा में उठाया गया है जिन्होंने वर्ष 2009 से लगातार दिल्ली की आपदा प्रबंधन व्यवस्था की रीढ़ बनकर कार्य किया, लेकिन पिछले 16 वर्षों में उनके मानदेय में एक बार भी संशोधन नहीं हुआ। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये संशोधन किसी प्रकार की अनुग्रह राशि नहीं बल्कि जिम्मेदारियों, अनुभव, तकनीकी विशेषज्ञता और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप एक न्याय संगत तथा वेतन संरचना सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य में इस संवर्ग को और अधिक मजबूत तथा पेशेवर बनाने के उद्देश्य से प्रदर्शन आधारित वार्षिक वेतन वृद्धि करने पर विचार करेगी। साथ ही कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुरक्षा तथा प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और क्षमता निर्माण जैसे कल्याणकारी उपायों पर भी योजना लाएगी। आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी सेक्टर 15 के श्री अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी में एरोबिन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि एरोबिन की सहायता से एक बार में एक बिन में 10 किलो गीले कूड़े को बायोकल्चर की सहायता से 40 दिनों के अंदर कंपोस्ट खाद में बदला जा सकेगा।
2: महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण और निस्तारण करने में सहायता मिलेगी। श्री वाही ने कहा कि इस प्रकार की छोटी छोटी पहलों को अपनाकर हम कूड़े को लैंडफिल साइट पर जाने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान दिल्ली नगर निगम के स्वच्छता बेड़े में अनेक आधुनिक मशीनों को भी शामिल किया गया है जिससे पूरे शहर में स्वच्छता के स्तर को और बेहतर बनाने में मदद मिल सके। महापौर ने दिल्ली वासियों से भी अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने में दिल्ली नगर निगम का सहयोग करें तथा राजधानी को स्वच्छ और हरित बनाने के इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। महापौर ने स्वास्थ्य जांच शिविर का भी शुभारंभ किया। आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज रोहिणी सेक्टर 10 के JMD टेंट में लक्ष्मी तरु फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रक्त की एक एक बूंद किसी के जीवन में नई उम्मीद बनकर पहुंचती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जर थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। भारत की स्वतंत्रता के 79 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC साइक्लोथॉन एक्सपीडिशन 2026 का भव्य फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और मुक्केबाज तथा ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम विशेष रूप से मौजूद रहीं। साइक्लोथॉन को झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत की आजादी के 79 साल पूरे होने के जश्न के तहत इस साइक्लोथॉन में 79 NCC कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। NCC फिटनेस अनुशासन और समाज सेवा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ भी करवा रहे हैं।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति

0: के सामने माय भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: श्री मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग केवल फिटनेस नहीं है बल्कि प्रदूषण का सॉल्यूशन भी है। इस अवसर पर ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम ने युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नेवर गिव अप की बात ध्यान में रखनी चाहिए।
2: मुझे बहुत अच्छा लगा आज रोकी में मुझे भी बुलाया गया है और ये साइक्लोथोन 2026 दिल्ली में हुआ है। युवाओं लोग के लिए बहुत बहुत जरूरी है और मैं आ रही हूँ कि उन लोग सपोर्ट करने के लिए।
1: राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के प्रतीक तिरंगे के अभिकल्पक यानी डिजाइनर और महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी की जयंती पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी श्री वेंकैया को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज निर्माता पिंगली वेंकैया ने भारत की विविधता को एक राष्ट्र भाव में बांधा। राजधानी दिल्ली में आज दिन भर मौसम सामान्य रहा। हालांकि राजधानी के कई क्षेत्रों में दोपहर में वर्षा हुई। आज का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि दिल्ली में कल हल्की बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन को मुआवजा देने की अधिसूचित की। उत्तरी रेलवे ने दिल्ली मंडल ने नई दिल्ली और दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। रात्रि के 8 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कवि गोष्ठी।
4: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं डॉक्टर अलका मिश्रा, श्री प्रदीप मिश्रा और डॉक्टर ज्योति उपाध्याय। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं डॉक्टर अलका मिश्रा।

0: तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं सरस्वती वंदना से। हमारे साथ डॉक्टर ज्योति उपाध्याय हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप सरस्वती वंदना करके इस कार्यक्रम का आगाज करें।
1: बहुत आभार आपका। माँ चरणों में तू स्थान दे, माँ चरणों में तू स्थान दे, शब्दों का मुझको ज्ञान दे, आहत ना मेरे भाव करें, माँ लेखन को वरदान दे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं शारदे के चरणों में अपनी वंदना प्रस्तुत करते हुए कहती हूँ। जिस कलम का तुझसे माँ श्रृंगार हो जाए,

0: बहुत सुंदर वंदना। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे साथ उपस्थित हैं बहुत उम्दा रचनाकार, श्रेष्ठ कवि, मंचों पर अक्सर छाए रहते हैं, आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी सर। तो मैं उनको एक मुक्तक के साथ बुलाती हूँ, सुनिएगा। कि नेमत खुदा की जो आपने दिल खूबसूरत सपाया है, नेमत खुदा की आपने दिल खूबसूरत सपाया है, तभी तो हर कोई आपको बेहतरीन नजर आया है।
1: क्या बात,
0: यूं ही बांटते और पाते रहिए जमाने भर की खुशियां, यूं ही बांटते और पाते रहिए जमाने भर की खुशियां। ये मांगा है खुदा से मैंने और दुआओं में सर झुकाया है, ये मांगा है खुदा से मैंने और दुआओं में सर झुकाया है।
1: क्या
0: बहुत स्वागत
1: बात है,
0: आपका सर।
1: क्या बात है। तहे दिल से शुक्रिया इतनी खूबसूरत कते के लिए। और अपनी बात शुरू करते हैं। हम अमूमन गीत और गजल लिखते हैं, तो आज की महफिल में एक कते से शुरू करते हैं और फिर एक गजल रखेंगे आपके सामने। कि
0: स्वागत है।
1: हमें रब ने तबीयत इस कदर नायाब बख्शी है, हमें रब ने तबीयत इस कदर नायाब बख्शी है, अदा हर एक बख्शी है जो वो पुरआब बख्शी है। तुम्हें जिसने वफा का कत्ल करने का हुनर बख्शा, तुम्हें जिसने वफा का कत्ल करने का हुनर बख्शा, जफा बर्दाश्त करने की उसी ने ताब बख्शी है, जफा बर्दाश्त करने की उसी ने ताब बख्शी
0: बहुत
1: है।
0: खूब।
1: और एक और कथा रख के गजल रखते हैं आपके सामने। कि मुस्तकबिल में राह बनाना मुश्किल होता है, मुस्तकबिल में राह बनाना मुश्किल होता है, और माजी के अक्स छुपाना मुश्किल होता है। दिल को तो समझा लेते हैं किसी बहाने से, दिल को तो समझा लेते हैं किसी बहाने से, लेकिन आंखों को समझाना मुश्किल होता है,
0: वाह
1: लेकिन आंखों को समझाना मुश्किल होता है। तो देखिए एक गजल रखते हैं आपके सामने, गौर फरमाइए मतले
0: इरशाद।
1: से। कारवां के साथ में रह करके भी तन्हा मिला, कारवां के साथ में रह करके भी तन्हा मिला, पर आदमी तन्हा मिला। और शेर देखें कि दिल में हसरत दोस्ती करने की लेकर चांद से, दिल में हसरत दोस्ती करने की लेकर चांद से, बाम पर कल शब सितारों को कोई तन्हा मिला,
0: बहुत खूब।
1: बाम पर कल शब सितारों को कोई तन्हा मिला। एक और शेर देखें। खामशी लब पर निगाहों में लिए संजीदगी, खामशी लब पर निगाहों में लिए संजीदगी, एक मुसाफिर रास्ते पर बाखुशी तन्हा मिला,
0: बहुत
1: एक
0: खूब।
1: मुसाफिर रास्ते पर बाखुशी तन्हा मिला। और तबसरा देखिए मौजूदा माहौल के ऊपर, कि सिर्फ दिल रखने की या मतलब की बातें कीजिए, सिर्फ दिल रखने की या मतलब की बातें कीजिए, दोस्तों अक्सर मोहब्बत का वली तन्हा मिला, दोस्तों अक्सर मोहब्बत का वली तन्हा मिला। और जिसने रिश्तों को निभाया और वफा की बेसबब, जिसने रिश्तों को निभाया और वफा की बेसबब, वो अमूमन दहर में ताजिंदगी।

0: ता जिंदगी तन्हा मिला। और मक्का देखें कि था वहम उसको मोहब्बत है खुदा की बंदगी, था वहम उसको मोहब्बत है खुदा की बंदगी, बज्म यारा में हमें कल अजनबी तन्हा मिला।
1: वाह वाह,
0: बज्म यारा में हमें कल अजनबी तन्हा मिला। हमने
1: बहुत ही उम्दा गजल।
0: कहा था गीत और गजल लिखते हैं, तो गजलों के अंदाज में ही गीतिकाएं लिखते हैं द्विपदीय बंद। एक गीतिका देखें, आपके सामने रखते हैं, अलग अंदाज अलग तरीका। अगर मगर और काश हूं मैं, जिंदगी का यही तरीका है, हम कभी भी पक्का नहीं कर पाते, अमूमन ऐसा होता है। अगर मगर और काश हूं मैं, अपनी स्वयं तलाश हूं मैं, अपनी स्वयं तलाश हूं मैं, अगर मगर और काश हूं मैं। और जीवन के झंझावातों में, जीवन के झंझावातों में उलझा हूं अनकाश हूं मैं, उलझा हूं अनकाश हूं मैं, अपनी स्वयं तलाश हूं मैं।
1: वाह वाह,
0: और एक अंदाज देखिए कि मन का तेरे था गुलाब कल, मन का तेरे था गुलाब कल, अब जल रहा पलाश हूं मैं,
1: वाह,
0: अब जल रहा पलाश हूं मैं। और पहले सदृश नहीं है कुछ भी, पहले सदृश नहीं है कुछ भी, कब अपने संग काश हूं मैं, अपने जैसा, पहले जैसा नहीं हूं पर फिर भी आज अपने जैसा हूं, अपने ही संग काश हूं मैं। आसक्ति के बंधन में था, आसक्ति के बंधन में था, लेकिन अब आकाश हूं मैं,
1: वाह
0: लेकिन अब आकाश हूं मैं। सरल प्रवाहित सरी जैसा था, जीवन में जो परिवर्तन आए वक्त के साथ, सरल प्रवाहित सरी जैसा था, अब दुर्गम कैलाश हूं मैं, अब दुर्गम कैलाश हूं मैं, अपनी स्वयं तलाश हूं मैं। और अंतिम बंद के प्रेम मोह अजनबी भस्म सब, प्रेम मोह अजनबी भस्म, अब एक सतत अवकाश हूं मैं, एक सतत अवकाश हूं मैं, अगर मगर और काश हूं मैं, अगर
1: वाह, बहुत
0: मगर और काश हूं मैं।
1: बढ़िया, बहुत ही उम्दा गजल। और आपने गीतिका सुनाई, बहुत ही सुंदर शब्दों का संयोजन और सुंदर अशार, आनंद आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं अब बुलाती हूँ डॉक्टर ज्योति को, और एक मुक्तक इन्हें सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि छेड़ जाते हैं दिल का तार कुछ नगमे सुहाने, छेड़ जाते हैं दिल का तार कुछ नगमे सुहाने, कि पाए हैं किसी ने नेह के कोई खजाने, नहीं चाहत बहुत की जो मिला वो है अनोखा, चलो इन प्यार रिश्तों को कहीं दिल में सजा लें, चलो
0: वाह,
1: इन प्यार रिश्तों को कहीं दिल में सजा लें।
0: बहुत
1: और ऐसा
0: अच्छा।
1: ही मेरा रिश्ता ज्योति जी से है, आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आए और अपनी कुछ रचनाओं से बहुत
0: मुखरित
1: आभार आपका
0: करें।
1: दीदी। देखिए दीदी ने बोला नेह के बहुत सारे खजाने होते हैं, तो सच में नेह के हमारे नैनों में बहुत खजाने होते हैं, आशाएं होती हैं, उत्साह होता है, विश्वास होता है, प्रेम होता है, और कहीं ना कहीं ऐसे भाव होते हैं जो आंखें कहीं ना कहीं कह जाती हैं। प्रेम लिखती हूँ, प्रेम गाती हूँ, प्रेम पढ़ती हूँ और प्रेम ही सुनाती हूँ, तो अपना काव्य पाठ में प्रेम से ही प्रारंभ करना चाहूंगी। प्रेम के
0: बढ़िया,
1: भावों
0: स्वागत।
1: को कुछ माइयों के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि प्रेम रहता तो सदैव दिल में है, परंतु वो दिखता हमारी आंखों में है। तो क्या कहती हूँ सुनिएगा।

देखिए, जब प्रेम की बात होती है तो प्रेम को परिभाषित तो करना नामुमकिन है, क्योंकि प्रेम ऐसा भाव है जो अपरिभाषित होता है। परंतु फिर भी एक पुस्तक के माध्यम से प्रेम क्या है, अपने लेखन के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ।

हाँ, प्यार ना हार है ना जीत है, क्योंकि प्यार एक ईश्वरीय मार्ग है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रेम का अर्थ किसी को पा लेना नहीं, किसी में खो जाना होता है। तो अपने प्रभु श्री श्याम के चरणों में अपने भावों को समर्पित करती हुई राधिका क्या कहती है, सुनिएगा।

जैसे कि मैं प्रारंभ से ही प्रेम की बात कर रही हूँ, तो प्रेम जो कि सृष्टि का आधार है, निराकार है और जिसका सभी पर पूर्ण रूप से अधिकार है। जब प्रेम की बात आती है तो मैं प्रेम संबंधों की बात करती हूँ। प्रेम संबंधों में हर प्रकार के संबंध सम्मिलित होते हैं, जिसमें कि माता पिता का उनके बच्चों से, भाई बहनों का आपस में प्रेम, दोस्तों का, पति पत्नी का, माँ बेटे का। तो ऐसा ही ये गीत आप सभी से जोड़ने जा रही हूँ, जिसमें एक बेटी जब विदा होती है तो अपने बाबुल के घर से लेकर अपने पिया के घर तक उसके मन के जो भाव होते हैं, किस प्रकार से उन भावों को अपने बाबुल से, अपने पिया से साझा करने का प्रयास कर रही है, या फिर अपने मन में उन भावों को किस प्रकार से महसूस करने का प्रयास कर रही है, इस गीत के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। चुटकी भर सिंदूर से तूने मांग सजा।

0: सजना, प्रीत में तेरी रीझी छोड़ा बाबुल का घर अंगना। बहुत आभार आपका।
1: बहुत ही सुंदर गीत और माया से आपने हम सबको जोड़ा, आनंद आ गया।
2: और अब मंच की संचालिका महोदय को आवाहन करते हैं सुश्री अलका श्री मिश्रा कि वो भी अपने गीतों से, अपने बंदों से मंच को अवगत कराएं। और बेहतर बातें करो मोहब्बत रहने दो, बेहतर बातें करो मोहब्बत रहने दो, सुनो जिंदगी को कुछ फुर्सत रहने दो, और जाने कितने लोग जरूरतमंद हैं यहाँ आपको सुनने के लिए बैठे हैं, खुद को थोड़ा उनकी बाबत रहने दो। संचालन के साथ कुछ सुनाइए, स्वागत है।
1: बहुत धन्यवाद। मैं भी अपने काव्य पाठ का आगाज जो है एक दोहे से करूंगी, राम जी के चरणों में सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि नित्य सवेरे सुमिर ले रघुनंदन का नाम, नित्य सवेरे सुमिर ले रघुनंदन का नाम, मुक्ति मिले दुख दर्द से बन जाए सब काम, मुक्ति मिले दुख दर्द से बन जाए सब काम। और एक मुक्तक संपूर्ण नारियों को सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि

0: और कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग कहते हैं कि आप बड़े हो रहे हैं, ये मत कीजिए, ये बंदिशें, तो उस पर चार लाइनें और एक अपनी नज्म कहती हूँ, सुनिएगा। कि उम्र का वह दौर भी गुजर गया, उम्र का वह दौर भी गुजर गया, धड़कते दिल का शोर भी किधर गया, बेपता मंजिलों की तलाश में, बेपता मंजिलों की तलाश में, धूप का वो टुकड़ा अजी किधर गया, धूप का वो
1: बढ़िया
0: टुकड़ा अजी किधर गया।
1: बढ़िया
0: और एक नज्म कहती हूँ, सुनिएगा। कि उम्र की बात ना कीजिए हमसे, उम्र की बात ना कीजिए हमसे, अभी तो हमने सच में जीना शुरू किया है, अभी तो हमने सच में जीना शुरू किया है, अभी तो ख्वाहिशें नया जन्म ले रही हैं, अभी तो ख्वाहिशें नया जन्म ले रही हैं, अभी तो मुस्कानों को नया आकार दिया है, अभी तो मुस्कानों को नया आकार दिया है, अभी तो सुबहों में उगाया है नया सूरज, अभी तो सुबहों में उगाया है नया सूरज, रातों को चांदनी से अभी गुलजार किया है, रातों को चांदनी से अभी गुलजार किया है, अभी तो मेरी

नज़में आकार गढ़ रही हैं, अभी तो मेरी नज़में आकार गढ़ रही हैं, इन्हें अभी लफ्ज़ों से बस तराश दिया है, इन्हें अभी लफ्ज़ों से बस तराश दिया है, और अभी तो पंख उगाए हैं हसरतों ने मेरी, अभी तो नए पंख उगाए हैं हसरतों ने मेरी, और लो यहीं से आसमां को हमने नाप लिया है। उम्र की बात ना कीजिए हमसे, अभी तो हमने सच में जीना शुरू किया है। और एक गज़ल कहती हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है, सुनिएगा। क्यों

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे डॉक्टर अलका मिश्रा, श्री प्रदीप मिश्रा और डॉक्टर ज्योति उपाध्याय। गोष्ठी का संचालन कर रही थी डॉक्टर अलका मिश्रा। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कवि गोष्ठी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव

0: 66.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स।
1: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूँ मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदें ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूँ, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स। रात्रि के 8:30 हुए हैं। समय हो गया है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अमित कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसे हमने लिया है फिल्म मोहब्बतें से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया, कहा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। एसबीआई रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार, केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
3: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
2: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के

0: युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: युवाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
1: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जनभागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में AI दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
5: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
1: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
6: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितम्बर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे।

0: जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता है। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
3: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य

0: समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi river recedes. Rainfall intensity decreases in Keralam, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the centenary 2030 edition. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
3: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families, but also weakens the strength of the nation. The Prime Minister also urged families not to hide cases of substance abuse due to social stigma.
3: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है, तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें।
2: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event, including My Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandaviya, Today's set

0: 700-week nationwide anti-drug campaign asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India's GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi River recedes. Rainfall intensity decreases in Kerala, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the centenary 2030 edition. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है. जमीर रजवी से खबरें सुनिए. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नशीले मादों की रोकथाम की 100 हफ्ते की मुल्कगीर मुहिम का आगाज किया. वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के लिए नशीले मादों से पाक नौजवान जरूरी हैं. SBI की तहकीक में रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान भारत की GDP की शरह तरक्की के मुतालिक अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% कर दिया गया है. दिल्ली सरकार ने जेल में गैर फितरी तरीके से मौत हो जाने पर कैदियों के कुंभों के लिए 7.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है. ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है क्योंकि महानदी दरिया के पानी की सतह में कमी आ गई है. केरलम में बारिश की शिद्दत कम हुई है जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली है. इंडोनेशिया के मदुरा जजीरे से कुछ दूर एक छोटे जहाज में आग लग जाने के हादसे में 5 अफराद हलाक और 41 लापता हो गए. और 2026 के दौलत मुश्तरका मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब आज रात मुनाकिद होगी जिसमें 2030 के इस सदी के खेल मुकाबलों के मेज़बान के तौर पर भारत को बाकायदा मेज़बानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. अब खबरें तफसील से. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि चूंकि भारत एक विकसित भारत बनने की जानिब गामजन है लिहाजा मुल्क के नौजवानों को जिस्मानी तौर पर चुस्त दुरुस्त दिमागी तौर पर मजबूत और पुरएतमाद होना चाहिए. नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम का वर्चुअल वसीले से आगाज करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि नौजवानों को हमेशा नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनानी चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि इससे नशीले मादों की रोकथाम से मुतालिक 100 हफ्ते की मुल्कगीर जन भागीदारी मुहिम का आगाज हो रहा है.
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है. क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो. यही इस अभियान का उद्देश्य है.
1: जनाब मोदी ने कहा कि नशे की लत की वजह से लोग अपने मकासिद से भटक जाते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाते. वज़ीर आज़म ने कहा कि नशे की लत न सिर्फ कुंभों को तबाह कर देती है बल्कि मुल्क की ताकत को भी कम करती है. वज़ीर आज़म ने कुंभों से जोर देकर कहा कि वो बदनामी के सबब नशीले मादों के गलत इस्तेमाल के केसेस को छुपा कर न रखें.
2: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें.
1: मुल्क भर के 28,000 मकामात के 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने इस तकरीब में शिरकत की जिनमें माय भारत और नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकारों, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, यूथ क्लब्स, गैर सरकारी तंजीमों और रूहानियत से मुतालिक तंजीमों से वाबस्ता शख्सियतें शामिल हैं. उम्मीद है कि भारतीय मईशत में रवां माली बरस की पहली सहमाही में तकरीबन 7% का इजाफा होगा जो पहले के अंदाजे से ज्यादा है. ये अंदाजा मजबूत तरीन इकतसादी इंदियों, बेहतर सनती सरगर्मियों और बरामदात में बहाली से होता है. SBI की एक रिसर्च के मुताबिक माली पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट से पहले कल जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है

0: की किल्लत हो गई है, ट्यूबवेल आलूदा हो गए हैं और पानी में डूबे गांव में सांप और मगरमच्छ दाखिल हो गए हैं, जिससे मुकामी बाशिंदों में शदीद खौफ हरास फैल गया है। फसलों को हुए शदीद नुकसान से किसान दिल बर्दाश्ता हैं और मकानात को हुए नुकसान की वजह से कुंबे अब भी खाना पकाने से कासिर हैं। रियासती हुकूमत ने राहत कार्रवाइयों को तेज़ कर दिया है और नुकसान भरपाई की जल्द अदायगी के लिए ज़िला कलेक्टरों से फौरी तौर पर पंचनामे दाखिल करने को कहा है। इंतजामिया का कहना है कि अगले सैलाब का फौरी तौर पर कोई खदशा नहीं है, ताहम भारतीय महकमे मौसमियात ने ज़्यादातर ज़िलों में अगले 3 दिन के दौरान तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश से मुतालिक येलो अलर्ट जारी किया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
1: इधर केरला में शदीद बारिश के एक दिन बाद बारिश की शिदत में कमी आने के सबब कई ज़िलों के लोगों को राहत मिली है। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरला के 12 ज़िलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जबकि 2 ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल के लिए अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा की रियासती हुकूमत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त युवा के लिए पूरी रियासत में अगले 100 हफ्ते के दौरान बहुत से प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी। सनखली में आज रविंद्र भवन में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए डॉक्टर सावंत ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के नज़रिए को हकीकत में बदलने के लिए मनुष्यात से पाक नौजवान ज़रूरी हैं। जनाब सावंत ने नौजवानों से नशीले मादों से दूर रहने, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने और मुल्क की तामीर में सरगर्मी से तआवुन करने की अपील की। इंडोनेशिया में आज मदुरा जजीरे के करीब समंदर में एक छोटे जहाज में आग लगने से 5 अफराद हलाक हो गए और 41 अफराद अब तक लापता हैं। इस जहाज में 271 मुसाफिर और अमले के लोग सवार थे। तलाश और बचाव के महकमे ने बताया कि इन मुसाफिरों में से अब तक 225 को बचाया जा चुका है। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव कार्रवाई अब भी जारी है। अमेरिका में वाशिंगटन के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने रियासत गीर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने तेज हवाओं की वजह से तेजी से फैलने वाली जंगल की आग की वजह से आग जलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। जंगल की आग की वजह से 3000 एकड़ का रकबा जलकर खाक हो गया है और हजारों लोगों को इनखला पर मजबूर होना पड़ा। साल 2026 के दौलत मुश्तरक खेल मुकाबले आज रात ग्लासगो में मशहूर हाइड्रो एरिना में शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। ये तकरीब भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे शुरू होगी, जिसमें 11 दिन तक जारी खेल कूद की महारत, दोस्ती और सकाफती तनवों का जश्न मनाया जाएगा। इस मौके पर अहमदाबाद को दौलत मुश्तरक खेलों का परचम और मेज़बान की छड़ी होस्ट बैटन सौंपी जाएगी, जो साल 2030 के खेल मुकाबलों की भारत की मेज़बानी की अलामत होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ग्लासगो में मुनक़द होने वाली इस तकरीब में 13,000 से ज़्यादा खेल शायकीन शिरकत करेंगे। ये तकरीब एथलीट्स की कारकर्दगी का एक जश्न है और बहुत से रजाकारों को शुक्रिया कहने का एक मौका। इस तकरीब के दौरान 2030 में अहमदाबाद में कराए जाने वाले 24वें दौलत मुश्तरक खेलों की मुंतकली की रस्म भी अंजाम दी जाएगी, जिसमें स्कॉटलैंड का रॉक बैंड सिंपल माइंड्स BEMZ, कैमी बार्नस और सैंडी थॉम अपने फन का मुजाहरा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के गुलकार डेल्टा गुडरम दौलत मुश्तरक खेल मुकाबलों की किसी तकरीब में तीसरी बार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन अपनी गुलकारी से लोगों को मसहूर करेंगे। दूरदर्शन से इस तकरीब को रवाना नशर किया जाएगा। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: इन खेल मुकाबलों में भारत की कारकर्दगी शानदार रही। मुक्केबाजी में रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली, जूडो में भी तारीखी कामयाबी रही और माजूर अफराद के खेलकूद मुकाबलों में भी संगमील की हैसियत रखने वाली हसूलियाबियाँ हुईं। एथलेटिक्स में बहुत से तमगे जीते गए, जिसकी वजह से मजमूई तौर पर तमगों की तादाद के एतबार से भारत चौथे नंबर पर रहा। भारत ने सोने के 13, चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगे जीते हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका में भारत के 2 टेस्ट मुकाबलों के दौरे में शामिल नहीं हो सकेंगे। वो अपने घुटने की चोट से असबर नहीं हो पाए हैं। श्रीलंका की ये सीरीज गाले में इस महीने की 15 तारीख से शुरू हो रही है। बुमराह के घुटने की चोट काफ़ी शदीद है, जिसका अंदाज़ा शुरू में नहीं हो पाया था। बेंगलुरु के महारत के मरकज़ में खेलकूद से मुतालिक साइंस की टीम के मुताबिक उन्हें अगले मैचों के पेश नज़र फ़िलहाल इस मैच में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और आखिर में ख़ास ख़ास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नशीले मादों की रोकथाम की 100 हफ्ते की मुल्कगीर मुहिम का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि तरक्की

भारत के लिए नशीले मादों से पाक नौजवान जरूरी हैं। एसबीआई की तहकीक में रवा माली बरस की पहली सहमाही के दौरान भारत की जीडीपी की शरह तरक्की से मुतालिक अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने जेल में गैर फितरी तरीके से मौत हो जाने पर कैदियों के कुंबों के लिए 7.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है क्योंकि महानदी दरिया के पानी की सतह में कमी आ गई है। केरलम में बारिश की शिद्दत कम हुई है जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली है। इंडोनेशिया के मदुरा जजीरे से कुछ दूर एक छोटे जहाज में आग लग जाने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए और 41 लापता हो गए हैं। और 2026 के दौलत मुश्तरक खेल मुकाबलों की अख्तितामी तकरीब आज रात मुनक्किद होगी, जिसमें 2030 के इस सदी के खेल मुकाबलों के मेजबान के तौर पर भारत को बाकायदा मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

दरअसल में कभी कभी मुकेश सदोय पुर एहसास खुद रा बे अशआर साहिर लुधियानवी कर्ज दाद व नतीजे आन यक तसनीफ आशिकाने जाविदाने बूद के कल्ब मिलियनहा नफर रा बे तपिश दर आवर्द। इजराय मुकेश बे तौर कामिल पीचीदगी इश्क रा बे तस्वीर कशीद व आन रा बे यकी अज यादमानदनी तरीन तराने हाय ओ तब्दील कर्द। मेरा नाम जोकर फिल्मी बूद के बे जिंदगी यक हुनरमंद सीर्क मी पर्दाख्त व आहंग जीना यहाँ मरना यहाँ अज मुकेश बास्ताबी तकान दहंदे अज मजमून फिल्म बूद। इजराय रूह नवाज मुकेश दर इन तराने बा मुखातिब तनिन अंदाज शुद व बे सुरूदी बराय फराज व नशीबहाय जिंदगी तब्दील शुद। इन तराने ये आशिकाने ये क्लासिक अज सरस्वती चंद्रा तवानाई मुकेश रा दर अफजूदन।

0: नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतदान आज सवेरे 8 बजे शुरू होगा। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने राज्य के सभी 14 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन की तुलना बांग्लादेश में 2024 के उस आंदोलन से की, जिसने शेख हसीना की आवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। उन्होंने कहा कि ढाका में हुए छात्र आंदोलन ने हमें धोखा दिया। कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत में प्रख्यात लेखिका ने कहा कि जंतर मंतर की घटनाओं पर उन्होंने नजर नहीं रखी, लेकिन विरोध प्रदर्शन के एक छोटे से वीडियो क्लिप ने उन्हें बांग्लादेश में जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन की याद दिला दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमें

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत। जी हाँ दोस्तों, और बढ़ते हैं एक और शानदार रचना के साथ। जन्म जन्म के फेरे फिल्म और टाइटल सॉन्ग है जन्म जन्म के फेरे ही। मोहम्मद रफ़ी साहब और कोरस की आवाज़ में सुंदर बेहतरीन रचना है ये जन्म जन्म के फेरे फिल्म। 1957 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत मुक्ति फिल्म्स आर्ट्स के हैं और संगीत से सजाया है SN त्रिपाठी ने। तो आइए सुनते हैं एक सुंदर खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचना अभी आप सुन रहे थे जन्म जन्म के फेरे फिल्म से टाइटल सॉन्ग। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत रचना की ओर। ये रचना है बहुत ही खूबसूरत, ये बरखा बहार, जी हाँ टाइटल सॉन्ग है और मयूर पंख फिल्म का नाम है। लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज़ में और साथ दे रही हैं आशा भोसले। 1954 प्रदर्शित फिल्म है और गीत आशा भोसले के और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत रचना।

ही सुंदर अभी गीत सुन रहे थे, बहुत ही प्यारा गीत। और एक और गीत आ रहा है दोस्तों, सावन में बरखा सताए, बीबी और मकान से सुंदर रचना, आवाज़ हेमंत कुमार की है। आइए सुनते हैं ये सुंदर खूबसूरत गीत।

बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे तेरे बगैर, बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही शानदार अनमोल रचना। और ये गीत आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की अंतिम प्रस्तुति आ रही है बहुत ही सुंदर गीत के साथ, फिल्म नूर महल से। टाइटल सॉन्ग है मेरे महबूब। सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ में शानदार रचना। नूर महल फिल्म सन 1965 रिलीज फिल्म रही है, गीत रतन प्रोडक्शन के हैं और संगीत से सजाया है जानी बाबू कव्वाल ने। तो ये सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे के अंतिम शानदार रचना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था

0: अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं की ओर संकेत देती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग में तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने राज्य के सभी 14 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में कल बड़ी संख्या में लोगों ने धरना दिया और मुजफ्फराबाद की ओर शांति मार्च निकालने की तैयारी की। संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि सुरक्षा बल रुक रुक कर भारी गोलाबारी कर रहे हैं। कमेटी ने कहा कि ट्रेक में महिलाएं और बच्चे धरने में शामिल हैं और मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें साझा करते हुए संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि रावलकोट चौक पर लोग धरना दे रहे हैं और मुजफ्फराबाद की ओर शांतिपूर्ण मार्च कभी भी शुरू हो सकता है। एक्शन ने बताया कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में पिछले 4 दिनों में पाकिस्तानी सेना के दमन कार्रवाई में 50 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi yesterday, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIRNIV न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत बहार। गीत बहार की अंतिम खूबसूरत रचना आ रही है, वही सुनते हैं गीत बहार कार्यक्रम की अंतिम खूबसूरत रचना।

जी हाँ साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। गीत बहार अब संपन्न हुआ और समय हुआ है 3 बजने को हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश के धार जिले का रूपखेड़ा गांव बागवानी विभाग के सहयोग और किसानों की मेहनत से आधुनिक कृषि का एक नया मॉडल बन गया है। फूलों की खेती के कारण यह गांव अब मध्य प्रदेश के मिनी हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। पहले यहां के किसान गेहूं, चना, मक्का और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसल पर निर्भर थे, पर अब संरक्षित कृषि से पॉली हाउसेज और शेड नेट हाउस में गुलाब, जरबेरा, लिली और अन्य फूलों के साथ ही उत्तम किस्मों की सब्जियां उगाते हैं। 11 दिनों की कड़ी खेल प्रतिस्पर्धा के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आज ग्लासगो में एक भव्य समारोह में समापन हो गया। समारोह में शताब्दी संस्करण की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। स्कॉटलैंड के अधिकारियों ने राष्ट्रमंडल खेल का ध्वज और कमान भारतीय प्रतिनिधियों, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संगठन के अध्यक्ष PT ऊषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को सौंपी। कार्यक्रम में भारत स्कॉटिश संस्कृतियों की जुगलबंदी भी देखने को मिली, जिसमें संगीतकारों और नर्तकों ने अपने कौशल का मनमोहक प्रदर्शन किया। भारत 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा और संतुष्ट प्रदर्शन के साथ ग्लासगो से विदा होगा। इसके साथ ही समाचार।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi yesterday, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो मन से स्वस्थ हो आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो यही इस अभियान का उद्देश्य है
2: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event, including My Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavia, said the dream of a drug-free India can be realized only through active public participation and the leadership of the youth. He was addressing a program at Amrita Hospital in Faridabad after the national launch of the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. Dr. Mandavia described the 100-week campaign as a nationwide people's movement aimed at mobilizing the youth for nation building.

0: Sì.
1: दोस्तों आपके खिदमत है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुजल, आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।

மனசின்னுள்ளே மகிமகள் வந்தால் மகேஸ்வரன் வருமன்ன மணிகள்.

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि का ये समय है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं सीर गाजी एस गोविंद राजन का गायन। आपने प्रस्तुत किया है रागम कल्याणी जो आदि ताल में निबद्ध है। संगीत दिया है श्री रंगम रंगा स्वामी पिल्लई ने। वल्लन प्रसाद दिया है थिरुपर काडुल एस वीरा राग रावण ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त 2026। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आओ योग।

5:20 का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का। 5:30 बजे सुनिएगा स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शहनाई वादन। कलाकार होंगे अशोक कुमार चौरसिया। 6:10 का समय रहेगा वंदना का। 6:40 पर सुनिएगा चिंतन। आज आप सुनेंगे मैथिली शरण गुप्त के विचार। 6:45 का समय रहेगा रामचरित मानस से पाठ का। 7:10 पर सुनिएगा संगीतिका। आज आप सुनेंगे अलीश मोहन के गाए शिव भजन। 7:30 का समय रहेगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। 8:45 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन। कलाकार होंगे शुभम कुमार। आप प्रस्तुत करेंगे राग नटभैरव। 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम आवर गेस्ट। 9:30 का समय रहेगा मिट्टी दी महक पंजाबी कार्यक्रम का।

0: 10:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:10 का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां का। फिर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सबरस और 11:30 सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। आज आप सुनेंगे राजपाल सिंह का गायन। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। और लीजिए आप सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे करने नहीं देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना आज सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15% और औद्योगिक ऋण में 19% की वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 7% से अधिक दर्ज हुआ। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल एक शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर हुए आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए और 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए।

स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के ठीक सामने हुई रैली के दौरान यह विस्फोट हुआ। फिलहाल हमले की जिम्मेदारी किसी भी समूह या व्यक्ति ने नहीं ली है। 11 दिनों की कड़ी खेल प्रतिस्पर्धा के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का ग्लासगो में एक भव्य समारोह के साथ समापन हो गया। समारोह में शताब्दी संस्करण की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। स्कॉटलैंड के अधिकारियों ने राष्ट्रमंडल खेल का ध्वज और कमान भारतीय प्रतिनिधियों, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संगठन के अध्यक्ष पीटी उषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को सौंपी। समापन समारोह की शुरुआत स्कॉटलैंड की सांस्कृतिक झलकियों से हुई और जल्द ही ये भारत की सांस्कृतिक विविधता और प्राचीन परंपरा के जीवंत प्रदर्शन में बदल गया। कार्यक्रम में भारत स्कॉटिश संस्कृतियों की जुगलबंदी भी देखने को मिली। भारत 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत राष्ट्रमंडल खेलों की एक से अधिक बार मेजबानी करने वाला दूसरा देश बन जाएगा। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनाव ग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम किस सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब ये ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती, तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं, अपने मुंह को बंद कर लें, पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर लें, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप

सर्वांगासन को भी कर सकते हैं। यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें, उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।